मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि तदनुसार 26 मई 2026 दिन मंगलवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन। स्वाभिमान, आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे का है।
1: स्वाभिमान और अभिमान दोनों एक ही तरह के उच्चरित शब्द हैं और इनके अर्थ भी लगभग समान ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द परस्पर एक दूसरे से भिन्न ही नहीं, एकदम उल्टे अर्थ वाले हैं। आत्मसम्मान, आत्मगौरव के लिए प्रयुक्त होता है स्वाभिमान। ये एक पौरुषवादी शब्द है जो हमें जगाता है, प्रेरित करता है, कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए ललकारता है। स्वाभिमान हमारे अपने विश्वास को जगाता है, हमारे आत्मबोध को पुष्ट करता है। और कितनी ही कठिन डगर हो, स्वाभिमान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें जीवन मूल्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति, समाज के प्रति स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। और जब हम अभिमान की बात करते हैं, ये हमें पूरी तरह से अहं के मकड़ जाल में फंसा लेता है और धीरे धीरे मीठे जहर की तरह हमारा सब कुछ निचोड़ कर समाप्त कर देता है और हम एक बेकार से प्राणी बनकर रह जाते हैं जिसके भीतर कोई संस्कार नहीं होता। मनुष्य तीन ऋणों को लेकर जन्म लेता है। पहला होता है पितृ ऋण। हमारे जन्मदाता ने हमें जो शरीर दिया है, हम अपने ही रूप स्वरूप की संतति देकर पितृ ऋण से मुक्त होते हैं और स्वाभिमान पूर्वक सामाजिक संरचना के चक्र को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऋण होता है सामाजिक ऋण। हम जिस समाज में हैं, उस समाज को अपने कौशल और विवेक बुद्धि से, समाज सेवा करने की भावना से आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह का स्वाभिमान होता है जो समाज के लिए काम आता है। हमारे ऊपर तीसरा ऋण होता है राष्ट्र ऋण। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिसके अन्न जल से पोषण प्राप्त करते हैं, अपना, अपने परिवार, अपने समाज के विकास में सहयोगी बनते हैं, उस राष्ट्र के अभिमान को जागृत रखना हमारा धर्म है, पुनीत कर्तव्य है। इस राष्ट्र पर यदि किसी प्रकार का संकट है तो राष्ट्र को संकट से मुक्त कराने के लिए कई राष्ट्रभक्तों ने राष्ट्र

0: राष्ट्र के स्वाभिमान के वशीभूत होकर अपने आप को उत्सर्ग कर दिया है, ऐसा स्वाभिमान जो हमारे विवेक को प्रकाशित करता है। ये स्वाभिमान ही है जो हमें कठिन परिस्थितियों में डिगने नहीं देता। स्वाभिमान हमारी आन बान और शान का प्रतीक होता है, जबकि अभिमान हमें अहंग से ग्रसित करता है। ये मिथ्या है, ये हमें घमंड, गर्व और अपने को श्रेष्ठ समझकर झूठा और दंभी बनाता है, अज्ञान के अंधेरे में ढकेल देता है। अभिमान न सिर्फ मानव का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी शत्रु है। इसीलिए अभिमान की ओर न जाकर हमें स्वाभिमान की ओर आगे बढ़ना होगा और विशेष करके अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान रखकर अपने देश को उन्नतशील बनाना और विवेकशील बनाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमें इस दिशा में सदैव विचार करना चाहिए कि हम कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: चिंतन, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि विज्ञान केंद्र एवं इसका महत्व, वाचन स्वर शंकर कुमार चौधरी का है।
2: स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जा। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा कैल गेल अछि, जे जिला स्तरीय कृषि के ज्ञान और एकर संसाधन से संबंधित ई एकटा केंद्र होइत अछि। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में भ रहल अनुसंधान के व्यवहारिक रूप द कऽ सीधे एकरा किसान भाई बहिन लोकनि धरि पहुँचायब अछि। नव नव तकनीक के जे विकास भ रहल अछि ओकर परीक्षण करब अछि। किसान भाई बहिन लोकनि के कृषि संबंधी कौशल के विकास करब अछि आ संग संग कृषि के क्षेत्र में भ रहल विकासक परिणाम के देखायब अछि। तो एहि प्रकारे हमरा लोकनि बुझैत छी जे कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि के क्षेत्र में बड़ बेसी योगदान अछि। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य उद्देश्य स्थापना के ई अछि जे किसान भाई बहिन लोकनि के तकनीकी परीक्षण कऽ कऽ बुझायब, देखायब जे की लाभ होइत अछि। जेना कृषि वैज्ञानिक लोकनि द्वारा नव तकनीकी के विकास, बीया के उन्नत प्रभेद प्रसंग में बुझायब, कृषि संबंधी आधुनिक उपकरण के बुझायब आ एकरा स्थानीय खेत पर परीक्षण कऽ कऽ देखायब होइत अछि, जाहिसँ कि ओ लोकनि बुझि सकैत जे एकर परिणाम की होइत अछि। अग्रिम पाँति के प्रदर्शन सेहो करब होइत अछि जे कृषि वैज्ञानिक लोकनिक देखरेख मे किसान लोकनि के खेत पर उन्नत बीया आ एकरा विधि के प्रदर्शन कऽ कऽ देखाओल जाइत अछि जे कोना एहि रूपे जो खेती करब तऽ एकर उपजा बढ़त आ लागत कम होयत। एकर संगहि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण के कार्यक्रम सेहो चलाओल जाइत अछि, जाहि में किसान, ग्रामीण युवा लोकनि, महिला लोकनि के खेती, पशुपालन, माछ पोसब, मधुमाछी पोसब जेहन अन्यान्य जे सरकारी योजना अंतर्गत लाभ सेहो बुझाओल जाइत छनि, जाहिसँ कि हिनका लोकनि के रोजगार भेट सकनि आ आय मे वृद्धि भ सकनि, जकर व्यवहारिक प्रशिक्षण सेहो देल जाइत अछि। एकर संग संग कृषि संबंधी परामर्श देल जाइत

0: अछि, जेना मौसम के जानकारी, कीट नियंत्रण, माइट जांच, पानिक जांच, अन्य प्रकारक सरकारी योजना के प्रसंग में बुझायब, ई सब काज होइत अछि। एकर संग संग कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किसान भाई बहिन लोकनि के इहो ध्यान देल जाइत छनि जे हिनका लोकनि के जे सामयिक रोजगार संबंधी प्रशिक्षण अछि ओ देल जाइनि, जेना मशरूम उत्पादन, बर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी के प्रशिक्षण इत्यादि, जाहिसँ ई लोकनि आत्मनिर्भर भऽ सकैत। एहि प्रकारे हमरा लोकनि देखैत छी जे कृषि विज्ञान केन्द्रसँ कतेको प्रकारक लाभ होइत अछि, जाहिसँ हमरा लोकनि के लाभ उठेबाक चाही। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि, चलबाक आज्ञा देल जाय।
1: आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का

0: पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina.
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। लकवा रोग विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनीष कुमार धीरज।
3: आज हम चर्चा करेंगे लकवा यानी पैरालिसिस के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। लकवा का क्या कारण है, किन कारणों से लकवा हो सकते हैं?
4: देखिए, लकवे के अनेकानेक कारण हैं, किंतु मुख्य रूप से आम तौर पर यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य जन में किसी को भी हो सकता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में जैसे कि उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर या अथवा डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया अर्थात चर्बी की मात्रा का शरीर में अधिक होना, धूम्रपान या तंबाकू की लत एवं अत्यधिक शराब का सेवन या किसी भी प्रकार के नशे की लत, विशेष रूप से भांग या कोकेन का सेवन, यह लकवे की संभावना को कई कई गुना जो है सो बढ़ा देता है। अतः इनका परित्याग करना चाहिए। और कुछ कारण अनुवांशिक भी होते हैं। यदि परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को पर्व में पहले लकवा हो चुका है तो उनकी संतान को यह होने की संभावना सामान्य से अधिक होती है।
3: और जिनमें हाइपरटेंशन है यानी उच्च रक्तचाप है?
4: जिनमें उच्च रक्तचाप है उनमें सबसे प्रमुख कारण उचित निदान न लेना और अपनी दवा की डोज को मिस कर जाना, यह सबसे सर्व प्रमुख कारण है लकवे का।
3: अच्छा, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लग जाए उस वजह से भी कई बार लकवा देखा जाता है?
4: रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लग जाती है, कई बार हमारे सुषुम्ना नाड़ी में या स्पाइनल कॉर्ड में खून का जमाव हो जाता है अथवा चोट लग जाती है, इस कारण से भी लकवा होता है। और इस स्थिति में यदि सर्वाइकल रीजन में अर्थात गर्दन के रीजन में ये चोट लगी हो तो हाथ और पैर दोनों का लकवा होता है। और यदि सर्वाइकल रीजन से नीचे अर्थात कंधे या कमर के रीजन में चोट लगी हो तो दोनों पैरों का लकवा होता है। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में सिर्फ एक हाथ अथवा सिर्फ एक पैर का भी लकवा हो सकता है।
3: लकवा यानी उस अंग का शिथिल पड़ जाना, सुन्न पड़ जाना, उसमें किसी भी तरह की हरकत नहीं होती।
4: लकवा एक आम अवधारणा के तहत यदि किसी अंग में ताकत की कमी हो रही हो तो उसको मानते हैं लोग, किंतु मेडिकल परिभाषा में हम लोग किसी भी अंग का सुन्न पड़ जाना, उसमें ताकत क्षीण हो जाना, इन सभी स्थितियों को हम लोग लकवे की श्रेणी में रखते हैं।
3: क्या कुछ लक्षण हैं जिससे ये पता चल सके कि ये जो मरीज है वो लकवे का मरीज है?
4: बिल्कुल है, जैसे कि आपको मुस्कुराने में दिक्कत हो रही हो, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही हो, चलने फिरने में संतुलन आपका गड़बड़ा रहा हो, तो आप एक सामान्य जन के नाते समझिए कि शायद कहीं आप लकवे के शिकार हो रहे हैं। ये प्रारंभिक लक्षण है।
3: बोलने में कभी कभी लड़खड़ाहट,
4: बोलने में लड़खड़ाहट, पानी पीने में दिक्कत, आप उचित उपचार समय पर लेने से आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं।
3: एक समय था जब एक जनधारणा थी कि लकवा का कोई निदान नहीं है, दैवी प्रकोप है, लेकिन आज मेडिकल साइंस का क्या कहना है?
4: आज के मेडिकल साइंस का कहना है कि

0: तकवे शुरू होने के 5.5 घंटे के भीतर यदि आप किसी एडवांस्ड मेडिकल सेंटर में पहुंच जाते हैं और सीटी स्कैन में हम लोग इसको सिद्ध कर देते हैं, तो कुछ दवाएं, कुछ इंजेक्शन हैं जिसको दे करके खून की नली में आई हुई ब्लॉकेट को हम लोग घुला सकते हैं और होने वाली क्षति को 80-90% या उससे भी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और यदि उससे विलंब से भी आप पहुंचते हैं, लकवा हो भी चुका है, तो भी उचित उपचार द्वारा 5-6 महीने में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आप पूर्ण रूप से सामान्य ना भी हो पाएं, किंतु 70-80% सामान्य स्थिति में आप जरूर पहुंच जाते हैं।
1: ऐसे कौन से परहेज हम रखें जिससे लकवा से हम बचे रह सकते हैं?
0: सबसे पहले अपनी जीवन शैली में नियमित व्यायाम को शामिल करें। 30 मिनट प्रतिदिन, कम से कम 5 दिन सप्ताह में धूम्रपान ना करें, मानसिक चिंता तनाव से बचें और अपनी जीवन शैली को प्रकृति के पास रखें। अधिक चर्बी तेल मसाले का प्रयोग खान पान में ना करें। उच्च रक्तचाप या डायबिटीज़ यदि है तो उसका उचित उपचार कराएं, तो आप लकवे से बच सकते हैं।
1: लकवा रोग के बारे में डॉक्टर मनीष कुमार धीरज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी दरभंगा से। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं आध्यात्म और शक्ति के मार्ग की भक्तिमय यात्रा वंदना। आध्यात्मिकता कोई प्रक्रिया नहीं जिसमें महत्व आपके विचारों या भावनाओं का हो। यह तो हमारे भीतर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।

रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं आध्यात्म और भक्ति के मार्ग की संगीत में यात्रा वंदना।
1: अतुलित बल धाम कृपा निधान श्री राम भक्त हनुमान मूर्तिमान भक्ति और सेवा मूर्ति है।

भक्त और सेवा का भाव उनके नाम में स्पष्ट दिखाई देता है। ह का अर्थ है शिव, आनंद, आकाश आदि। नु का अर्थ है पूजन, प्रशंसा। मां लक्ष्मी का द्योतक है। न बल, युद्ध, वीरता आदि का सूचक है। अहिल्या पुत्री अंजना के पुत्र हैं, इसलिए आंजनेय हैं। मरुत के अंश हैं, इसलिए मारुति हैं। कपिगोत्र में श्रेष्ठ होने से कपीश हैं। पवन के क्षित्रज पुत्र होने से पवन सुत हैं। इनके पिता का नाम केसरी था, इसलिए केसरी नंदन कहे जाते हैं। ऐसी विभूति के सामने इस जगत का कोई भी प्राणी श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता।

अहिल्या पुत्री अंजना के पुत्र हैं, इसलिए आंजनेय हैं। मरुत के अंश हैं, इसलिए मारुति हैं। कपिगोत्र में श्रेष्ठ होने से कपीश हैं। पवन के क्षेत्रज पुत्र होने से पवन सुत है। इनके पिता का नाम केसरी था, इसलिए केसरी नंदन कहे जाते हैं। ऐसी विभूति के सामने इस जगत का कोई भी प्राणी श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं आध्यात्म और भक्ति के मार्ग की संगीतमय यात्रा वंदना।
1: हनुमान जी को 11वें रुद्र का अवतार मानते हैं। रुद्रावतारः संजज्ञे वायुपुत्रः प्रतापवान। अधर्म का विनाश करके धर्म को पुनः स्थापित करना ही इस धरती पर भगवान के अवतार लेने का हेतु होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग के अंत में जब रावण जैसे असुरों का संहार करने तथा मानव समाज को सेवा धर्म का आदर्श सिखाने के लिए विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। भगवान के रूप से भी अधिक महिमा उनके नाम की है। नाम के आधार पर ही स्वरूप का ज्ञान होता है। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप बिसेख नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। जो व्यक्ति श्री हनुमान जी के 108 नामों से उनकी पूजा करता है या प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री हनुमान जी के 108 नामों का पाठ करता है, उसके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।
2: अथ श्री हनुमत अष्टोत्तर

దేవతా अभी आप सुन रहे थे आध्यात्म भक्ति के मार्ग की संगीतमय यात्रा वंदना।

अभी आपने वंदना के अंतर्गत भक्ति संगीत का आनंद लिया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, प्रमुख स्वर ए हरिहरण का है।

काकभुशुंडी ने संतों से जैसा और जो कुछ भी सुना था वो सारी कथा गरुड़ को कह सुनाई। प्रभु की महिमा के सागर की गहराई माप सकना असंभव है, अतः मद मान ममता सबका त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ पुलकित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। उन्हें जो भ्रम हुआ था उस पर पछतावा हुआ और हर्ष भी, क्योंकि वो भ्रम अब टूट चुका था। किंतु एक जिज्ञासा मन में अब भी बनी थी। काकभुशुंडी ने हजार योनियों में जन्म लिया, उन्होंने कठिन साधना की, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वरदान पाया, किंतु अपने लिए अंत में काक का शरीर ही क्यों चुना।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर के बाद यानी प्रातः 6:55 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत समाचार। हिंदी समाचार का प्रसारण प्रातः 7:00 किया जाएगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुन पाएंगे प्रातः 7:05 पर। समाचार प्रभात का समय होगा प्रातः 8:00। प्रातः 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। खबरनामा का प्रसारण करेंगे प्रातः 8:30 पर। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा प्रातः 8:48 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:10 पर। प्रातः 10:00 आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का।

हमारा साप्ताहिक बज्जी का कार्यक्रम अंगना सुन पाएंगे आप प्रातः 10:30 पर। आलेख संकलन एवं वाचन विजेता सिन्हा का और प्रस्तुतकर्ता होंगे मिथेश कुमार मिश्रा। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे शोभा बिल्टू के गायन। समय होगा प्रातः 11:00। NCERT यह प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनिएगा प्रातः 11:30 पर। फिल्म संगीत के अंतर्गत नए जमाने के तरानों का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर के 12:00। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा रविवार 24 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फुलेश्वर झा, संचालन श्वेता जी का होगा, प्रस्तुति असद दाऊद की। दोपहर 1:00 हिंदी समाचार का प्रसारण करेंगे। दोपहर के 1:10 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत फिल्म शहीद में मोहम्मद रफी को। दोपहर के 1:15 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। दोपहर 2:00 हमारे पटना केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, इलाकाई खबरें। समय होगा दोपहर 2:05 पर। रोजगार सूचना का समय होगा दोपहर 2:10 पर। दोपहर 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, बज्जी का लोकगीत, इसका प्रसारण करेंगे दोपहर के 3:00। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:00 सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम। चर्चा का विषय होगा मीडिया और रेडियो में करियर। संध्या 5:40 पर आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। विद्यापति गीत का समय होगा संध्या 6:10 पर। संध्या 6:25 पर सुनवाएंगे मैथिली संवाद। गांव घर के अंतर्गत आज सुनिएगा नव ऊर्जा। समय होगा संध्या 6:30 पर। खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7:00। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:47 पर जिले की हलचल।

संध्या के 7:52 पर प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत सिंगरहार। यह कार्यक्रम सुनिएगा 8:15 पर। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का। न्यूज एट 9 सुनिएगा 9:00 और उर्दू खबर 9:15 पर। विविधा सर्वभाषा यह कार्यक्रम सुनवाएंगे 9:30 पर। इंस्पायरिंग वॉइस इंग्लिश टॉक सुनिएगा आप 9:45 पर। एक फनकार यह कार्यक्रम सुनवाएंगे 10:00। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: स्वास्थ्यसेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुषमन्त्रालयस्य संसदीयपरामर्शदातृसमित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीजाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिकचिकित्सा च समग्रनिवारक स्वास्थ्यसेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिकचिकित्साक्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्यसंवर्धनसम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारम्परिकचिकित्सापद्धतीनां वैश्विकप्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई।

है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
1: और साथ ही साथ कयाम नैयर।
0: कयाम जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब सुविचार से करै छी।
1: हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा।
0: और सुविचार के बाद उनटाबै छी ऐतिहासिक पन्ना। ऐतिहासिक पन्ना में अजुका तिथि अर्थात 26 मई किया विशेष रूप से जानल जाइए, ताहि पर एक नज़र।
1: बात करें आज के दिन के इतिहास के बारे में, तो 1957 में बम्बई, जो अब मुंबई है, में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन 1906 में भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार राम किंकर बैज का जन्म हुआ था। 1969 में अपोलो K10 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा रूप से पृथ्वी पर वापस लौटे थे।
0: सुरक्षित वापस
1: लौटे। आज ही के दिन 1926 में लेबनान ने अपना संविधान को अपनाया। आज ही के दिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
0: तो इछल आजुक इतिहास, और इतिहास के बाद वर्तमान में आवे तो आए गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के अवसर पर विभिन्न ठाम कार्यक्रमक आयोजन भ रहा है। विभिन्न ठाम जो है से साफ सफाई नदी तीर पर सेहो कयल जा रहा है। देखू कयाम जी, जीवन में बहुत रास एहन समय अबै छै जै काल में लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ भ जाइए, या बहुत समय एहन होइ छै जे तनाव के स्थिति में चलि जाइए। छात्र जीवन में अगर अहाँ देखबै तऽ छात्र जीवन में सेहो तनाव के स्थिति आब बहुत बेसी देखल जा रहल है। किया तो एकटा सिलेबस रहै छै, ओहि सिलेबस के पूरा करक रहै छै, तकरा बाद उपलब्धि के ध्यान राखक के रहै छै, तै सब कारण के लअ कऽ छात्र जे छथि सेहो तनावक स्थिति में अबै छथि। तऽ ओकर कुशल प्रबंधन अपना हाथक छै। अहाँ केना अपन जीवन के, केना अपन दिनचर्या के व्यवस्थित बनाएब से अहाँक हाथ में, और ओकरा अपना हाथ में लअ कऽ अहाँ तनाव मुक्त भ सकै छी कि नहि?
1: जी हाँ, बिल्कुल। और तनाव की जहाँ तक बात है, तो आज के समय में इस भागदौड़ भरी जीवन में हर आदमी

0: हर चीज़ के लिए परेशान है, चाहे वो किसान की बात करें, उद्योगपति की बात करें, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को, जहाँ काम है वहाँ थकान है, और थकान जहाँ है वहाँ तनाव है, इसमें कोई शक नहीं है। बात छात्रों की अगर की जाए तो उनके पास भी सिलेबस ख़त्म करना है, या परीक्षा की जो टेंशन है उनको, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस परीक्षा से संबंधित उनको तनाव महसूस होता है, भविष्य की चिंता के कारण तनाव का सामना करते हैं वो। तनाव प्रबंधन के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि वे एक संतुलित दिनचर्या, जैसा कि मणिकांत जी ने कहा, कि आप बना लें, एक रूटीन बनाना ज़रूरी है। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना ज़रूरी है। अपनी शारीरिक सेहत, नींद, व्यायाम पर पूरा ध्यान रखें। अपने 24 घंटे की पढ़ाई को एक शेड्यूल, एक टाइमिंग के साथ, मतलब फिक्स कर लें कि इन 24 घंटे में, क्योंकि 24 घंटा ही सबको मिलता है, हर आदमी को, हर जीवित प्राणी जो 24 घंटे के लिए है, तो 24 घंटे में उन्हें सारा कुछ करना होता है। तो ध्यान इस बात का देना है कि 24 घंटे में हमें कितना अपने पढ़ाई के लिए देना है, कितना, क्योंकि सारी चीज़ें उसी में करनी है आपको।
1: समय तो सीमित छे ना, समय सीमित छे और काज असीमित छे, तो दुनू चीज के संतुलन बनेनाई जे छे से एकटा महत्वपूर्ण प्रबंधन छे। और ओकरा में अगर अहाँ छात्र छी तो छात्र के लेल हर चैलेंज जतेक अहाँ के सामने में सोझा में अहाँ के लेल चैलेंज है, ओकरा अहाँ स्वीकार करू और ओकरा रूबरू भ जाओ, ओकरा से नजर मिलाओ, ओकरा से समाधान ओकर केना हेतै तकरा में लागि जाओ। कतबो काज छै तऽ सब काज के संपादन अहाँ कऽ सकै छी अगर व्यवस्थित ढंग से करै छी, तहन पढ़ाई सेहो भ सकै छै। और पढ़ाइयो में की रहै छै तऽ ई विषय कने कड़गर है, ई विषय कने भारी है, कोनो विषय ककरो लेल भारी भ जाइ छै, कोनो विषय ककरो, हमरा अगर गणित पर मे बेसी कंट्रोल है तो भ सके अहाँ के विज्ञान पर मे बेसी कंट्रोल है, अहाँ के विज्ञान पर बेसी कंट्रोल है तो किनको कला में बेसी दक्षता छन, तो ई कोनो जरूरी नहीं छै जे कोनो विषय भारी होइ छै, सब विषय जे छै से अपना आप में हल्लुके छै और कोनो विषय ककरो लेल भारी भ जाइ छै। तो जे विषय अहाँ के लेल बेसी भरगर बुझाइए ओहि पर मे कने बेसी समय दऽ दियौ, ओकरा पर बेसी समय देबै तऽ ओ सहजता से अहाँ के जे छै से समाधान ओकर भ जायत, और जे विषय अहाँ के हल्लुक अछि ओकरा कने हल्को फल्को कने कमो समय दऽ कऽ, तऽ ई सब प्रबंधन जे छै से छोट छोट बात पर ध्यान दऽ कऽ अहाँ तनाव मुक्त भ सकै छी। अगर अहाँ के मानि लिअ इसकुल में पढ़ के एलहुँ हैं और इसकुल से अयला के बाद अहाँ के होमवर्क देल गेल है, टास्क घर पर बनबै लेल देल गेल है, ओकरा बनबै में दिक्कत भ रहल है, तो ओकरो लेल अहाँ के समय के निर्धारण केनाइ जरूरी है। आ मन में चिंता रहै छै जे नहि हमरा तऽ खेलै लए जाय के, हमर संगी सब आयल हैत खेलऽ के लेल तऽ ओहि में केना जायब, अगर टास्क बनबैत रहब तऽ फेर खेलै लए नहि जायब, तऽ एहि सब चिंता में नहि रहू, अहाँ टास्को बना लिअ, खेलाओ लए चलि जाउ। समय के प्रबंधन अगर अहाँ बुझि गेलियै तऽ जीवन में अहाँ के कखनो कोनो असुविधा नहि हैत, कि नहि?
0: जी बिल्कुल, और टाइम टेबल के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को, लक्ष्य को बांट कर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़ यह है कि किस समय कौन सा काम करना है, ये ज़रूरी है। हमें पढ़ने के समय में पढ़ना ही है, खेलने के समय खेलना ही है। बहुत सारे जो लोग होते हैं, विद्यार्थी हैं जो हमारे आसपास में हैं, उन्हें अलग अलग ढंग से जैसे तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जैसे 10 से 15 मिनट व्यायाम के लिए भी निकालें। अपने आप को उदास और परेशान महसूस कर रहे हैं तो थोड़े कहीं थोड़ी देर घूम लें, चाहे गांव के इलाके में है, जैसे अभी का मौसम होता है खेत की तरफ है, गाछी चले गए, कहीं भी चले गए। शहरों में अगर हम रह रहे हैं तो शहर में भी बहुत ऐसी जगह है जहां पर हम बैठकर आराम से, सुकून से बैठकर दो पल के लिए अपने आप में सोच सकते हैं। कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो प्यारे मित्र होते हैं उनसे बात करके उनके दिल को सुकून पहुँचता है, ये कर सकते हैं। कुछ लोगों को गाना सुनना, फिल्में देखना, ये अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर वापस आप कुछ ऐसे मनपसंद शिक्षक हैं आपके, जिनसे आप अपने मन की बात, दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जिससे मन हल्का होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जो आपका काम है, जो आपका सिलेबस है, उसी पर आपको लौटना है, उसी पर फोकस करना है, और ये कोशिश करना है कि हम किसी भी काम को बांट कर करें। मतलब बड़ा जो है, बड़ा सिलेबस है, बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम खंडित कर लें कि आज मुझे इतना ही करना है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है, ये सोच कर करना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर वो चीज़ आसान है इस दुनिया में, जो भी है वो दूसरा अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस कोशिश के लिए कि नहीं कि वो चीज़ बहुत टफ है, भारी है और वो कर रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं, ये सोच सोच कर हम अपने आप को परेशान और बीमार कर सकते हैं, ये सोच कर कि हम भी कर सकते हैं और हम

0: उसका तरीका खोजे, ये
1: दुनिया
0: जरूरी
1: में असंभव किछु नहीं छे, सब किछु संभव छे। तैं एहि चिंता में नहीं रही जी हमरा पुते नहीं हुआ वाला है, निश्चित रूप से भ जाए। और जे बात कहला है कयाम जी मनोरंजन के, तो हम तो कहब जे बहुत सस्ता और सुलभ मनोरंजन हम सब छी। अहाँ रेडियो सेट पर आओ और रेडियो सुनू, ओहिपर में रंग बिरंग के चीज अहाँ के सामग्री भेटत जे अहाँ के मनोरंजन करत। ओकरा संगे पढ़ाई में सेहो लाग जाओ और पढ़ाई अपन जे लक्ष्य है ओहि लक्ष्य के प्राप्त करू अहाँ। और समय के प्रबंधन जे छै से एकटा बहुत महत्वपूर्ण चीज छै, ओहि महत्वपूर्ण बात के ध्यान में रखैत अहाँ जे छै से आगा बढ़ू और आगा बढ़ के अपना जीवन में सफलता हासिल करू, यह हमर शुभकामना है। तनाव मुक्त रहू, यह हमरा सभक कामना है। और तकर शुरुआत एखन से करू सुंदर सनक ई भजन सुनकर।

0: उम्मीद करते हैं मैथिली सुगम संगीत बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, और तनाव से दूर रहकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने श्रोताओं को उनके तनाव को कम किया जाए और उनको गीत संगीत के माध्यम से हो या चर्चा हम लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में, बहुत सारी चीज़ों को समेट कर लेकर आते हैं। और वक्त के साथ हमें चलते रहना चाहिए, वक्त के साथ समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम सारी चीज़ों को अगर समय पर कर लें तो हम खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। और अब आकाशवाणी दरभंगा से वक्त हो चुका है हालचाल का। हालचाल प्रस्तुत करेंगे मणिकांत झा।
1: नमस्कार। राज्य के 10 लाख BPL परिवार के बिजली उपभोक्ता के घर में शीघ्र सोलर प्लेट लगाओल जाए, एक संग हुनक घर में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंच जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पदाधिकारी के कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ता के घर में सेहो सोलर संयंत्र लगेबाक योजना में तेजी अनबाक निर्देश देलन है। मुख्यमंत्री काल्हि लोक सेवक आवास में ऊर्जा विभाग के समीक्षा बैसार कैलन। बैसार में ओ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना पर तेजी से काज करबाक लेल एमे अधिक से अधिक घर के आच्छादित करबाक निर्देश देलन। संगे अधिकारी के कहलन जे उपभोक्ता के सोलर प्लेट लगेबाक लेल प्रेरित करैत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल्हि राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 66 हस्ती के वर्ष 2026 के लेल पद्म विभूषण, पद्म भूषण आ पद्मश्री पुरस्कार प्रदान कयलनि। पश्चिम एशिया संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनी 11 दिन में 4 बेर काल्हि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दलक। पटना में डीजल के कीमत 100 के करीब पहुंच गेले, जखनकि मुजफ्फरपुर, भागलपुर आ गया में ई 100 रुपया के पार पहुंच गेल। पटना में पेट्रोलक दाम 2.61 रुपया आ डीजल में 2.71 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी कयल गेल। दरभंगा में डीजल के दाम 97.15 रुपया से बढ़ाकर आब 99.58 रुपया प्रति लीटर भ गेल। ओते पेट्रोल के दाम 111.01 रुपया से बढ़कर 114.02 रुपया प्रति किलोमीटर पर पहुँच गेले। बिहार में मदरसा के बच्चा सेहो स्मार्ट क्लास में पढ़ता। राज्य सरकार मदरसा में स्मार्ट क्लास के व्यवस्था करत। शिक्षा विभाग एहि दिशा में नमहर पहल कऽ रहल है। एकरा अंतर्गत सरकारी अनुदान प्राप्त सब मदरसा में ई सुविधा प्राप्त भ जायत। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय रोजगार मेला के शुभारम्भ काल्हि पटना के ज्ञान भवन में भेल। मेला में 62,000 से अधिक बेरोजगार के पंजीकरण कराओल गेल। मेला में 10,000 के रोजगार देबाक लक्ष्य है। पहल दिन 2,438 युवा के विभिन्न संस्थान में रोजगार भेटलन। दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के 7 पद के लेल चुनाव आई हैत। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के आलोक में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के देखरेख में पूर्ण प्रक्रिया पूरा कयल जाए। एहि चुनाव के लऽ कऽ

असद के बीच गहमागहमी के माहौल है। सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में दो खेमा मैदान में आए। कवि कोकिल बाबा विद्यापति मिथिला क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत के महानायक छथि। ई पीढ़ी के दायित्व बनित अछि जे हम सब बाबा विद्यापतिक गौरवशाली परंपरा के जीवंत राखी। ई बात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर काल्हि गुरुग्राम में मारुति कुंज में आयोजित बाबा विद्यापति पर्व समारोह एवं विद्यापति भवन के शिलान्यास

0: वृद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा,
3: बुद्धि अपने स्वागत है। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर स्थित एनेक्सी में काल्हि जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के महत्वपूर्ण बैसार भेल। एहिमे जल एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ल अहम मुद्दा पर विस्तार से चर्चा कयल गेल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता कहलनि जे बैसार में विशेष रूप से देश भर के राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य आ वन्यजीव अभयारण्य सहित वन संरक्षण में स्थित नदी, जलाशय, आर्द्रभूमि आ भूजल प्राणी के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन पर गहन विचार विमर्श कयल गेल। जल प्रवाह के निरंतरता, भूजल पुनर्भरण आ पारिस्थितिक संतुलन पर विशेष बल एहिमे देल गेल। बीतल रात भीषण गर्मी और उमस भरल गर्मी से सेहो छुटकारा भेटल है। दरभंगा वासी के बीतल रात मौसम बहुत नमहर राहत दिलक। रात के करीब 9 बजे अचानक उठल अन्हर बिहार के संग झमाझम वर्षा से किछ देर के लेल मौसम अपन मिजाज बदल दलक। आब आई भोर तक सेहो फूही फाही होत रहल है। तापमान में कमी एवा से हल्लुक ठंडा सेहो बुझा लागल है और हवा सेहो आब मनभावन लाग रहल है। अन्हर बिहार के कारण विभिन्न ठाम गाछ वृक्ष खसबाक सूचना सेहो अइ। कै ठाम गाछ खसबा से बाट सेहो बाधित भ गेल है। समाहरणालय सभागार में DDC स्वप्निल के अध्यक्षता में काल्हि जिला स्तरीय समन्वय समिति दरभंगा के बैसार भेल। DDC सब विभागीय अधिकारी के निर्देश देलनि कि लंबित मामला के निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीका से सुनिश्चित कयल जाय। जून मासक प्रथम मंगल के आयोजित हुआ वाला सहयोग शिविर के सफलता सुनिश्चित करवाक उद्देश्य से सदर प्रखंड अंतर्गत शाहबाजपुर एवं सिसो पश्चिम पंचायत के जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं SSP जगन्नाथ रेड्डी औचक निरीक्षण कयलनि। दरभंगा समाहरणालय सभागार में काल्हि जिलाधिकारी के अध्यक्षता में ईद उल जोहा बकरीद पर्व के शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण भाईचारा और हर्षोल्लास के माहौल में संपन्न करेवा के लऽ कऽ जिला संत समिति के बैसार कयल गेल। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर आ रोहतास में लू के ऑरेंज अलर्ट आ सीमांचल के 4 जिला में आए भारी बारिश के चेतावनी देल गेल है। काल्हि रोहतास के डेहरी में सीजन के सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड कयल गेल। मौसम विभाग के अनुसार ई अखन तक 9वां अधिकतम तापमान थिक। मई के ई 5वां अधिकतम तापमान थिक। दरभंगा के MLSM कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काल्हि स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव के अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के अध्यक्षता में काल्हि विभागाध्यक्ष आ शास्त्रीय स्तर के सब कॉलेज के प्रधानाचार्यक बैसार भेल, जाहि में अनेक निर्णय लेल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लेल समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन काल्हि शुरू

0: बदल गेल। ओम्हर राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के समक्ष लोक भवन पटना में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के पीपीटी प्रेजेंटेशन सराहनीय रहलनि। एहि संग आजुक हालचाल सम्पन्न भेल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर है नमस्कार मिथिला में, और नमस्कार मिथिला को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर है 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:33 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 बजे दरभंगा से हैदराबाद के लिए, शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: इच्छा लोकल अपडेट। ट्रेन, बस आ कि हवाई जहाज पकड़वा के लिए जखन अपने अपने घर से निकली छी तो थोड़े समय फाजिल को कर हाथ में लौ कर निकली, जैसे कि अफरा तफरी नहीं हुए, किया तो कतो रास्ता में अहाँ के जाम के से हो सामना करो पड़ सके, ओ कारण से अहाँ के समय बेसी लग सके। और दोसर बात ये हो जे अगर घर से अहाँ निकली छी तो इससे पहले ये सुनिश्चित कर लिया जो अहाँ के ट्रेन आ कि हवाई जहाज समय से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, से अगर बुझ कर चलब तो समय के अपव्यय नहीं हैत अहाँ के, और वही समय के हिसाब से अहाँ सुनिश्चित क के अपना सही गंतव्य पर पहुँच सकै छी। बहुत सुंदर एखन कायम जी अहाँ के अपडेट दऽ रहल छलाह है दरभंगा से संबंधित। आब एतेक अपडेट लेला के बाद अगर गीत संगीत दिस नहीं बढ़ब तो फिर मनोरंजन के जे चर्चा हमरा लोकन करै छलौं से अधूरा रहि जात कि नहीं।
4: जी हाँ बिल्कुल, और गीत संगीत के माध्यम से जो हमारा तनाव है, थकान है, वो दूर होता है। तो श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना, उनके थकान और तनाव को दूर करते हुए हम भी उसमें मजे लेते हैं।
0: आओ सुनी सुंदर सनक की फिल्म संगीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। आप अपने तनाव को, अपनी सारी परेशानियों को दूर करके, थोड़ा सा भूल कर गाने के साथ, गीत संगीत के साथ आप जुड़े रहें तो अच्छा लगता है। और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से आकाशवाणी दरभंगा से हम आपकी का पूरा ख्याल रखते हुए हमने बातें की कि जो श्रोता हैं हमारे, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके तनाव को हम कैसे कम कर सकें, तनाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रहने के लिए एक रणनीति का होना ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को भी काम करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो वहाँ पर आपके आपका जो एक नियम निष्ठा है वो होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें सफल हो पाते हैं।
1: कोनो एकटा एम, एकटा लक्ष्य लऽ कऽ अगर अहाँ बढ़ै छी और ओकर जे व्यवस्थित बात छै तकरा अपना में आत्मसात करै छी तऽ अहाँ कोनो काज में सफल भऽ सकै छी। और अगर भटकाव के स्थिति में रहब, छन्ने ई काज करब, छन्ने ओ काज करब, तखन जे छै से ने हाथे तरक पायब आ ने पैरे तरक पायब। तऽ ओ बात हरदम ध्यान में रहक चाही जे लक्ष्य एकटा हमर कोनो हेबाक चाही, जे हमरा अपना लक्ष्य के लऽ कऽ बढ़बा के, जेना अर्जुन माछ के आँखि में अगर हुनका तीर मारक रहनि तो हुनकर लक्ष्य रहनि, ओ एक टक ओहि पर में केंद्रित छलाह है और तैं ओहि में ओ सफल भऽ गेला। तऽ हमरो सभक लक्ष्य जे, ओहि लक्ष्य के निर्धारण हेबाक चाही, लक्ष्य निर्धारित कोना करी, इहो एकटा महत्वपूर्ण बात छै। की लक्ष्य हमरा निर्धारित करबा के, जाहि लक्ष्य पर हम आगा बढ़ सकै छी। लक्ष्य निर्धारण में एहन भऽ जाइ छै जे दोसरक कहला पर, अभिभावक के प्रेशर में सेहो कखनो काल के लक्ष्य निर्धारित भऽ जाइ छै, जाहि में जे जिनका लक्ष्य लेबाक छनि, लक्ष्य निर्धारण करबाक चाही, ओ ओहिमे सक्षम नहि भऽ पबै छै। तऽ अहु बात पर मे जे छै से हमरा सबके कने ध्यान देबाक चाही जे हमसब लक्ष्यक निर्धारण जे छै से कोना करी, कखन करी, और रणनीति हमर की हेबाक चाही। व्यवस्थित रणनीति जे छै से महत्वपूर्ण छै कोनो चीज में। कोनो काज कऽ रहल छी और अगर रणनीति बना के कऽ रहल छी तऽ ओहिमे अहाँके सफलता हासिल हेबे करत, लेकिन अगर रणनीति के अहाँ ढंग सँ नहीं बना सकलो तो भऽ सकैए जे अहाँ ओहिमे पछड़ि जाएब।
0: जी हाँ, बिल्कुल। और किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो काम है, जो 24 घंटे आपके पास, हमने पहले भी कहा कि उसमें ज़रूरी है कि कौन सा काम पहले करना है, उसकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, ये काम बाद में हम कर सकते हैं। और यूं तो किसी भी काम को हम बाद के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको चुनना होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो क्या है, इस पर हम फोकस करें, इस पर हम लक्ष्य निर्धारित करें। किसी भी काम को अगर हम करते हैं, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जॉब ड्यूटीज़ कुछ भी हो, उसमें आप दिल से करते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यही मानना होता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, यूँ तो खुद का ख्याल रखना बिल्कुल ज़रूरी होता है, अपने सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, नींद का लेना ज़रूरी है, भूख प्यास नींद सब कुछ लगेगी, लेकिन उनके उसके बावजूद भी अगर किसी काम में आप लगे हुए हैं तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना होता है, तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। आप अगर हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद अपने खान पीन का ही ध्यान रखेंगे, नींद का ही ख्याल रखेंगे, आपको बार बार भूख लगेगी, तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे।
1: लेकिन एकटा बात इहो छै, कयाम जी जे कहल गेलै जे भूखे भजन न होइ गोपाला, तऽ शरीर के जे आवश्यकता छै ओहो पूर्ति हेबाक चाही, लेकिन अहाँ ठीक कहलहुँ हँ जे 5 मिनट पर 10 मिनट पर नहि हेबाक चाही। ओकरो एकटा रणनीति छै, ओकरो एकटा टाइम टेबल छै, एकटा रूटीन छै जे अहाँ कखन भोजन करब, कखन जलपान करब, ई तऽ आवश्यक छै। ओना शरीरके जे डिमांड होइ छै, ओकरा जे जतेक खपत छै अहाँके ऊर्जा, जतेक शरीरसँ अहाँ विनष्ट करबै ओतेक ओकरा चाहबो करी, तऽ भऽ सकैए जे जलके कमी अहाँके बुझाए लागत तऽ जल बीचोमे पी सकै छी। ओकरो लेल कोनो टाइम टेबल बना कऽ राखब उचित नहि छै, लेकिन अहाँ जे काज कऽ रहल छी ओहि काजके व्यवस्थित ढङ्गसँ करी, ओ केना ओ सम्पादित हैत, ताहिपरमे अगर रणनीति ओकर बना लै छी, ओकर एकटा तौर तरीका पहिलेसँ निर्धारित कऽ लै छी, तहन अहाँके सहजतापूर्वक

0: छै से ओ काज सम्पादित भऽ जायत, चाहे जीवनके कोनो काज हुए, ओ अहाँके व्यावसायिक क्षेत्रके काज हुए या ऑफिससँ सम्बन्धित काज हुए, अहाँके रोजगारसँ सम्बन्धित हुए, पढ़ाइ लिखाइके काज हुए कि खेतीबाड़ीके काज हुए, काज कोनो हुए, ओकरा व्यवस्थित ढङ्गसँ अगर अहाँ करऽ चाहब तऽ अहाँके सफलता निश्चित रूपसँ ओहिमे जे छै से हाथमे एबे करत।
1: जी हाँ बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें होती है कि बहुत सारी चीज़ों का हम एक रणनीति बनाकर एक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं उसका कि कौन सा काम कैसे करना है। साथ ही साथ जो चीज़ आप घर में घरेलू चीज़ें हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ऑफिस की चीज़ें हैं, जो चीज़ का जगह जहाँ है आप उसको वहीं पर रखें, तो अगले दिन न आपको दिक्कत होगा न दूसरों को दिक्कत होगा। तो इससे जो हमारे लाइफस्टाइल है, जो हमारा जीवन है, दिनचर्या है, वो बिल्कुल संतुलित बना रहेगा ताकि हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है।
0: जना उदाहरण के लिए अहाँ गेट के ताला खोललो आ कुंजी के अगर कतौ धो देलिए तऽ भऽ सकैए जे ताला लगबा कालमे फेर अहाँ कुंजी तकैत रहब, ओ नहि भेटत। आ कुंजी रखबाक जे स्थायी जगह अइ जे अहाँ परमानेंट जतऽ रखै छी, अगर ओहिठाम ओकरा अहाँ राखि देलिए तऽ बेर परमे ओ तुरंत भेट जायत। अगर अहाँ ताला लगेलाके बादे कुंजी कतौ दोसर ठाम धऽ देलिए तऽ आब कोनो हड़बड़ीमे अहाँके ताला गेटके खोलबाके आओर गेट अहाँके खुजि नहि रहल हइ, तऽ ओहू सब बात परमे जे छै से अपना सबके ध्यान राखक चाही। आ जे बात अहाँ कहलहुँ हँ, ओ व्यवस्थित ढङ्गसँ रहब जे छै से जीवनके लेल आवश्यक छै, आओर ओहि व्यवस्थाके मिलाबऽमे अपना सबके गीत सङ्गीत सेहो जे छै से आवश्यक अछि, जे ओकरो व्यवस्थित ढङ्गसँ कखन सुनाबी कखन नहि सुनाबी तहू बातपर ध्यान रखबाके। तऽ आब हमरा लागि रहल अइ जे बेर भऽ रहल हइ फेरसँ एक बेर फिल्म सङ्गीत सुनबाके, आउ सुनै छी सुन्दर सनक ई फिल्म सङ्गीत।

0: वाह, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बहुत सुंदर एखन ई फिल्म संगीत हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ हैं। आ देखियौ कयाम जी, कार्यक्रम 1 घंटा मोटा मोटी अपना लोकनि करै छी, केना निकलि जाइए समय से बुझिते नहि रहै छी। आब होइए जे थोड़ेक और समय रहितै तऽ आओर गपशप करितहुँ अपना सबमे, लेकिन समयके एहन गति छै जे ओ अपना गतिसँ एको पल आगा पाछा नहि होइए। आओर इएह एकरासँ सीख लेबाक चीज छै, समयसँ सीखबाक आवश्यकता छै, जे जेना समय अपना गतिसँ चलित रहैए तहिना मनुष्यके सेहो अपन काजमे ओहिना निरन्तरता रखबाक चाही। आओर अपना निरन्तरताके अगर अहाँ बनेने रहब तऽ जीवनमे सफलता अहाँक सङ्ग चलत। तऽ आब जे छै से हमरा लगैए जे समय बाँचल अइ ताहिमे एक बेर समसामयिक गतिविधिपरमे हमरा लोकनि नजर घुमा ली आओर देश दुनिआमे कतऽ की भऽ रहल अइ से देख ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है, आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने कहा। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित कई राज्यों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया। फुटबॉल में भारत ने गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हराया। IPL क्रिकेट में क्वालिफाई 1 में आज का मुकाबला RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जाएंगी।
0: तो इच्छल समसामयिक गतिविधि आ अपने के बुझल जे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम जे से आकाशवाणी दरभंगासँ हमरा लोकनि सुनै छी आओर आकाशवाणी दरभंगा न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध अइ, DTH पर उपलब्ध अइ आ आकाशवाणी रेडियोके माध्यमसँ तऽ अहाँ सुनिते छी। तऽ ई कार्यक्रम भोरमे 7:05 लऽ कऽ 7:55 तक अपने लोकनिक लेल प्रसारित होइए। ई कार्यक्रम केहन लगैए से जनबाक उत्कण्ठा हमरो सबके बनल रहैए, तऽ पत्र लिखू। हमर पता अइ कार्यक्रम नमस्कार मिथिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड छै 8460004।
1: आब
0: हमरा लगैए जे आजुक जे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम अइ से लगि जा रहल अइ, तऽ आजुक एहि अंकसँ मणिकान्तके
1: आओर कयाम नैयरको
0: देल जाय आज्ञा।
1: नमस्कार मिथिला।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
6: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर के उपरांत आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय

0: इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के मार्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2023 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर

0: पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ

0: ते हुए मैदान अरफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मिना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमांड के तर्जुमान टिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुकाम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और HS प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ़ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी अहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 10 लाख पीपीएल परिवारों के घरों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश। पटना के IGIMS में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग की 3,194 योजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 10 लाख पीपीएल परिवार के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, इससे उनके घरों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को बीपीएल परिवारों के लिए लागू कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं के घरों में सोलर संयंत्र लगाने की योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर भी तेजी से काम करने और इसमें अधिक से अधिक घरों को शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। पटना स्थित IGIMS में आयुष्मान भारत योजना के तहत 45 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। IGIMS के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि काउंटर पर कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने रोगी के फर्जी दावों और नकली मेडिकल बिल जमा कर धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 4 आउटसोर्सिंग कर्मियों समेत अन्य पर शास्त्री नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की 3,194 योजनाओं

0: को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं से विभिन्न जिलों में नहर सफाई, जल निकासी और सिंचाई से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें मनरेगा के अंतर्गत आवंटित राशि के प्रभावी उपयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में नहरों और जल निकासी तंत्र की सफाई के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को गति देने पर बल दिया गया। राज्य सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी सौ परिवार प्रत्येक 3 महीने पर 2 दिन किसी पर्यटन स्थल पर प्रवास करेंगे। राज्य सरकार ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत सरकारी कर्मी अपने गृह जिले को छोड़कर किसी अन्य जिले में 2 दिन और 2 रात के लिए सौ परिवार पर्यटन, इको टूरिज्म या ग्रामीण पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागीय प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल संकट से निपटने और भूजल स्तर की निगरानी को लेकर पटना में हुई समीक्षा बैठक में श्री अमृत ने वर्तमान में बंद पड़े 86,679 चापाकलों की मरम्मत के काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में कार्यरत भ्रमणशील मरम्मत दल को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संभावित सुखाड़ को देखते हुए दक्षिण बिहार के जिलों पर नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने शिवहर परिसदन में वन प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के साथ कृषि वानिकी योजना के 100% लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। राज्य के सभी पुलिस थाने अगले 3 महीने में राष्ट्रीय नेटवर्क इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इससे सभी थाने, न्यायालय, जेल, FSL और अभियोजन प्रणाली का आपस में डेटा का आदान प्रदान आसानी से होगा। ADG आधुनिकीकरण अजिताभ कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी।
1: भारत सरकार की स्कीम है ICJS, जिसे बोलते हैं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम सभी थानों को और भी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें और भी अंग हैं, जुडिशरी है, प्रिजन्स है, FSL है, ये हम लोग सभी ऑर्गन्स एक साथ आपस में नेटवर्किंग से जुड़ रहे हैं और सभी ऑर्गन्स अपने अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। इससे बहुत फायदे हैं। आप लोग जानते हैं जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा, लोगों को उतना जल्दी न्याय मिलेगा, काम में उतनी तेजी आएगी। पहले जो समय लगता था, कोर्ट ने डायरी मांगा, डायरी आ रहा है, कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगा, आ रहा है, अब सभी को रियल टाइम आपको अपलोड कर देना है और इससे वो जो डिलेज होते थे वो रुकेगी।
0: ADG ने बताया कि राज्य के 1212 थाने CCTV से लैस हो चुके हैं। बचे हुए 170 थानों में भी 3 महीने में CCTV लगा दिया जाएगा। एक थाना में औसतन 12 से 13 कैमरे लगे हैं, जिनमें 18 महीने तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना अब आम लोग भी सीधे परिवहन विभाग को दे सकेंगे। विभाग ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और ईमेल ID commandcontrolcenterbihar@gmail.com जारी किया है। प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में 1942 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होगा। इसका उद्देश्य मदरसों को आधुनिक शैक्षणिक तकनीक से जोड़कर छात्रों की समग्र साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ाना है। सरकारी विद्यालय के 5वीं और 6वीं कक्षा के बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी में समर कैंप लगेगा। इनमें भाषा और गणितीय दक्षता में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चे मुख्य रूप से शामिल होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने इस संबंध में पत्र जारी किया है।

0: पत्र में कहा गया है कि समर कैंप समुदाय आधारित होगा तथा प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्र छात्राओं को शामिल किया जाएगा। चिन्हित बच्चों की संख्या और उनके निवास स्थान के आधार पर कैंप स्थल का चयन किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 जून को होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। बीपीएससी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने आज भी राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 26 मई राज्य के अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में कुछ स्थानों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास के टेहरी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का 9वां अधिकतम तापमान है। औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 44.5, कैमूर का 44.4, बक्सर का 43.1 और कयाजी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डेहरी, औरंगाबाद और कैमूर में लू की स्थिति बनी रही। विभाग ने कहा है कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में आज भी तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए शेखपुरा जिला प्रशासन ने 30 मई तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के वर्ग संचालन पर रोक लगा दी है। इधर बेगूसराय में 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित होंगी। स्वच्छता सर्वे के तहत केंद्रीय टीम ने पटना नगर निगम के वार्डों में नगर निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जांच शुरू कर दी है। कल नगर निगम के 5 अंचलों में केंद्रीय टीम पहुंची। यह टीम गंगा किनारे घाटों की स्वच्छता और सफाई के दावों की भी जांच करेगी। गया जी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू पेपरपांती मोहल्ला स्थित एक घर में औषधि विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 50 लाख रुपए मूल्य की नकली और नशे की दवा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर की अदालत ने चर्चित दीपक ठाकुर हत्याकांड में शशि मंडल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 428 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से पुलिस ने ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6,56,000 रुपये, सोने चांदी के आभूषण समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। खगड़िया

0: पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर बर्दह गांव से मिनीगन फैक्ट्री चलाने के आरोपी परवेज चांद को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बल।
1: खेल खबरों में शुरुआत आईपीएल के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पिछले 11 दिनों में पेट्रोल 8.12 रुपये और डीजल 7.87 रुपये महंगा हुआ। दैनिक जागरण लिखता है, मैथिली को मातृभाषा विषय की मान्यता, सीएम ने जताया आभार। प्रभात खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, एनटीए ने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भोजपुरी लोक गीतों के वैश्विक दूत भरत सिंह भारती समेत बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विधानमंडल सचिवालय से बस सेवा का शुभारंभ। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों में होगी फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की पढ़ाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 10 लाख बीपीएल परिवारों के घरों पर लगेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश। पटना के आईजीआईएमएस में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 4 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग की 3,194 योजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
3: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
2: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुने उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

मुन्नी बेगम की आवाज़ में आप इस गज़ल को सामीन समाप्त फरमा रहे थे। और आज की जो छोटी सी गुफ्तगू का मौजू है काजी नज़रुल इस्लाम, सामीन कराम आप लोग इस बात से आगाह होंगे कि काजी नज़रुल इस्लाम जो थे वो बंगाली लिटरेचर के एक उम्दा राइटर थे, पोइट थे और साथ ही साथ म्यूज़िशियन भी थे। और आपकी एक और जो सलाहियत थी वो बतौर जर्नलिस्ट भी थी, हुकूमत अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ लिखने के कारण इन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो तहरीरें थी वो हुकूमत अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ होती थी। यकीनन वो दौर तकलीफ़ दे था और उसमें तमाम लोग अपनी अपनी जानिब से कोशिशें कर रहे थे ताकि हम अपने मुल्क को आज़ाद करवा सकें। यकीनन हमारे मुल्क की आज़ादी ही हमारे लिए अव्वलीन मकसद थी। इसमें हर तबके के लोग हर तरह के ज़रिए अपने अपने हालात की पेश नज़र इसमें अपना किरदार अदा कर रहे थे ताकि जल्द अज़ जल्द ज़िंदगी की जो दुश्वारियां हैं वो ख़त्म हों और हमारी जो हुकूमत है वो अंग्रेज़ों के ज़रिए से हमें वापस हासिल हो जाए। काजी नज़रुल इस्लाम की जो पैदाइश थी वो 24 मई 1899 को चुरुलिया पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये उम्दा पोइट थे, इनकी जो तहरीरें हैं वो अग्निवीणा, विद्रोही और नज़रुल गीति के नाम से शाया हुई हैं। इन्होंने बंगाल में जो तहरीक आज़ादी थी उसमें अपनी इन तहरीरों के ज़रिए नौजवानों में जोश और वलवला का एक नया इम्कान पैदा किया था और लोगों को उससे हौसला अफज़ाई होती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तहरीक जंगे आज़ादी में शामिल हो सकें। हर तरह की चीज़ें इन्होंने लिखी और बिलखसूस जो मकसद था वो यही था कि हम

0: ते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। डॉक्टर जमशेद आलम साहब, आपको आप बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में।
1: तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं आकाशवाणी का और हमारे सारे साथी का जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। ये जो गुफ्तगु हम दास्तान पे जो कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी, एक कदीम ज़माने से चली आ रही है चीज़। दास्तान अमूमन कहते हैं फ़ारसी के एक लफ्ज़ से निकली है जिसके माने होते हैं कहानी। फ़ारसी के ही लफ्ज़ हैं, गोई गुफ्तन से आया है, गुफ्तन। तो गुफ्तन फ़ारसी का एक मुजारा है जिससे हम लोग गोई बनाए हैं। तो दास्तान गोई यानी दास्तान को कहने वाली कोई चीज़। दास्तान हर दौर में बड़ी ही आम और मशहूर रही है। जब लिखने का रिवाज नहीं था,
0: हाँ,
1: तब लोग कह के ही अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे। अमूमन ये वस्ती एशिया, ईरान, खास करके तुर्की और आज़रबैजान में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। तो आप कभी भी कहीं देखती होंगी, आजकल तो बहुत ही आम फैम भी हो चुका है ये सारी चीज़ें, कि लोग दास्तान गोई को पसंद कर रहे हैं। हमारे पुराने ज़माने में दादा, नाना, नानी होते थे जो दास्तान सुनाते थे। आज के वक्त में ये ख़त्म होता चला जा रहा है। दास्तान का सकाफती तारीख जो है वो बड़े ही मालामाल चीज़ों से भरा हुआ है। आप यूं कह लीजिए, पहले जो दास्तान गोई या दास्तान की शक्ल होती थी वो नज़म के तौर में होती थी।
0: मतलब इसकी रवायत कहाँ से शुरू हुई?
1: ईरान से, अमूमन कहते हैं एशिया में ही ईरान से शुरू हुई। क्योंकि मैंने बताया कि ये लफ्ज़ जो है ये फारसी से ली गई है, गुफ्तन से,
0: जी।
1: गुफ्तन कहना
0: कब से शुरू हुई है?
1: कहते हैं कि जब शाहनामा 329 हिजरी के वक्त में,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जब फिरदौसी हुआ करता था,
0: अच्छा अच्छा,
1: तब से ये रवायत चलती चली आ रही है। कहते हैं कि उनसे पहले भी नज्म की शक्ल में हुआ करती थी,
0: गोया अलिफ लैला वगैरह,
1: शाहनामा है, शाहनामे फिरदौसी है। हाँ। चाहे आप अगर रुदकी को देखती हैं, चाहे अलिफ लैला देखती हैं अरबी अदब में, फारसी अदब में,
0: हाँ, अरानी केतकी की कहानी वगैरह,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से ये काफी आम फहम रही। उर्दू अदब में भी इसका बड़ा ही नुमाइंदगी की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। 1649 के आसपास कहते हैं हिंदुस्तान में ये चीज दास्तान की शक्ल में लेना शुरू किया।
0: मतलब उसके बाद ये
1: नसरी शक्ल में आनी शुरू हुई। लिखते थे पहले तो शेर की शक्ल में, शेर की शक्ल में कह देते थे, जैसे कि मान लीजिए कुछ कहना ही है किसी को। फारसी का ही एक बहुत मशहूर कलाम है, आपने सुना भी होगा, कि बसी रंज बुरदम दरिन सालेसी, अजम जिंद करदम बेदिन पारसी, नमीरम अजिन पस के मन जिंदम के तुख में सुखन रा पराकंदम। उस कहना यही चाहता है कि मैंने 30 साल मेहनत किया है इस शाहनामा को लिखने के लिए, और मैंने पूरी कोशिश और जी और जान लगा दिया है इस पूरी दास्तान को लिखने के लिए, लेकिन शेरी शक्ल में,
0: शेरी शक्ल में।
1: बाद में ईरान से जो ये चीज शुरू हुई, ईरान में 1906 के आसपास ये नसरी शक्ल में आई।
0: अच्छा, 1906 के आसपास आई, यानी उससे पहले जो चाहर दरवेश वगैरह जो थी
1: सब, हाँ, अमूमन उसी शेरी शक्ल
0: ने ये किया था, तो वो शेरी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे उमर खयाम को ही अगर आप पढ़ते हैं तो उनका भी वही है, रुबाई लिखते हैं, वो शेर के अंदाज में लिखते हैं ना। वो कहते हैं क्या कि रूजी के गुजश्त हीच अज उ याद मकुन, फरदा के न आमदे अस्त फरियाद मकुन, बर न आमदे वो गुजश्त बुनियाद मकुन, हाली के खुशबाश उम्रा बर्बाद मकुन। कहना वही चाहते हैं कि जो बीत गया है वो चीज़ आने वाला नहीं है, और हमारा जो हाल है वो माजी तो चला गया, हाल तो बहुत बेहतर है, इसको करो, मुस्तकबिल का तो पता नहीं है। कहना यही चाहते हैं, लेकिन शेरी अंदाज हुआ था, हुआ करता था। शेरी अंदाज में कहने का एक ये भी ये खास बात थी कि ये चीज़ों को खूबसूरती से करता है, है ना,
0: हाँ, पेश करने का
1: क्लासिक चीज़ें, थोड़ा क्लासिक चीज़ें करता है ये, कि दास्तान जो है हिंदुस्तान में दास्तान महाभारत और रामायण की शक्ल में रजमिया है। ये क्या कह रहा है? विष्णु शर्मा की किताब अगर उठाती हैं आप, जिसको बाद में ईरान ले जा करके उसको ट्रांसलेट की गई कलीला वद्दमना की शक्ल में,
0: अच्छा,
1: जिसको कर्तक वद्दमना ही बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: ना पंचतंत्रा बोलते हैं हम उसको, क्या है? दास्तान ही तो है। और वो क्या है? नसीहत है, एनेक्डोट्स है, हिकायत है,
0: उस पस मंजर में बात,
1: बिल्कुल। जैसे अरब दुनिया में अलिफ लैला बहुत मशहूर है, है ना, अलिफ लैला वो क्या है? दास्तान ही है, कहने की है।
0: ये भी अगर देखा जाए तो ये खुद एक अपने आप
1: सारी की सारी दास्तान की ही शक्ल में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब दास्तान
1: का, सब कहानी ही बयान करें, शक्ल अलग अलग है और ये सारी चीजें अलग अलग हो रही हैं। दास्तान को अगर हम कह रहे हैं, गुफ्तन कर रहे हैं, गोई कह रहे हैं, तो दास्तान गोई हो रहा है। तो ये रवायत बहुत पुरानी है, पुराने यानी कदीम दौर में आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे या दरख्त के नीचे बैठ करके लोग कहानियाँ सुनाते थे ना, वो हुआ करती थी, वो हुआ करता था, वो दौर

0: हाँ
1: अदब के इसमें कहा जाए तो अदब में ये दास्तानगोई की अहमियत
0: अदब हम आपको बताते हैं, ये जो इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है कि लिटरेचर इज नथिंग बट अ मिरर ऑफ
1: मिरर
0: सोसाइटी
1: ऑफ
0: ना,
1: सोसाइटी बिल्कुल हाँ समाज
0: जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, आईना है वो
1: हाँ
0: माशरा का, वो दिखाता है।
1: तो अदब में इसकी काफी अहमियत है लेकिन दास्तान में और कहानी में कुछ तो फर्क होगा।
0: दास्तान क्या होता है ना, वो दास्तान का जो किरदार है वो
1: हाँ
0: हमारा बाजार से ही उठाया जा रहा है। तो दास्तान तो आप देख रहे हैं क्या कि पहले दास्तान लिखना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था, अब आप भी दास्तान लिख
1: लेकिन
0: सकते हैं।
1: दास्तान पहले दास्तान कहना आसान होता था
0: बिल्कुल, दास्तान कहना इसीलिए आसान होता था क्योंकि लिखने की रवायत नहीं थी,
1: नहीं थी
0: तो दास्तान कहते थे हम लोग।
1: हाँ
0: तो दास्तान गोई की जो रवायत है वो बहुत कदीम जमाने से चलती चली आ रही है।
1: हाँ
0: तो दास्तान गोई और दास्तान नविश्तनी
1: हाँ
0: दो अलग अलग चीजें हैं। दास्तान गोई की जब रिवायत खत्म होने लगी तो जब नविश्तनी नविश्तन करने का वो सिलसिला फिर शुरू हो गया।
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: नविश्तनी
0: बिल्कुल,
1: तो कुछ दास्तान गो जो कदीम दौर के हैं और कुछ अभी के जिससे अपने नाम
0: जी
1: लिया कुछ इन पे भी जैसे रोशनी डाली जैसे मुल्ला वजी वगैरह थे इन लोगों ने किस तरह की दास्तान गोई की और किस तरह आज का वो ये है
0: देखिए
1: ट्रेंड है।
0: हम बेशक इनको कबूल करते हैं और आगे तक कबूल करेंगे क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना
1: हाँ
0: इन्होंने ही दिया है। तो इनकी जो दास्तान लिखने की और कहने की जो रवायत रही है वो
1: हाँ
0: क्लासिक
1: जाहिर है
0: है,
1: कि उन्होंने
0: क्लासिक
1: शुरुआतें
0: है,
1: की है
0: लेकिन मॉडर्न तरीके में हमने उसी चीज़ को अपना बेस और इख्तियार माना है और उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम आगे चीज़ों को लेके जाते हैं। तो दास्तान आ गया
1: दास्तान
0: ना
1: इस
0: वो
1: तरह
0: सारी
1: से
0: चीज़ें में।
1: बल्कि उर्दू अदब में तो कई दास्तानें ऐसी हैं जैसे सबरंग वगैरह हैं या
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सारी
0: बिल्कुल
1: चीजें शहरी अंदाज में थे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और नज़म के तौर पे थे और उसको बहुत अच्छे से पढ़े जाते थे और हम लोगों को ये कहा जाता था कि ये नस्र के अंदाज में लिखा जाए
0: बिल्कुल
1: तो खैर
0: बिल्कुल
1: ये तो होता है इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन आज के दौर में इसे कितना अपनाया जा रहा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि दास्तान गोई पहले से अब में काफी फर्क आया है अब लोग दास्तान गोई की तरफ कम तवज्जो देते हैं।
0: बात तो सही है क्योंकि अब खास करके प्रिंट हो गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में दास्तान अब कोई भी लिख सकता है। हम जिस दानिशगाह में पढ़ाते हैं वहाँ हमने इसको अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है
1: अच्छा
0: कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है दास्तान पे। दास्तान तो बहुत अहम हिस्सा है पढ़ाने के लिए भी, 1000 लफ्ज़ में अल्फाज में लिख करके लाएँ।
1: बहुत अच्छे
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत अच्छा लगा जमशेद साहब आपसे बातचीत करके दास्तान गोई को भी समझा हम लोगों ने और दास्तान गोई की रिवायत को आगे बढ़ाने का जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है ये सब को भी हम चाहेंगे कि हम
0: बिल्कुल
1: लोग भी
0: बिल्कुल
1: अपनी जिम्मेदारी को निभा सके और
0: बिल्कुल
1: हम लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि भाई दास्तान गोई का सिलसिला जारी रखें
0: जारी रखें, बिल्कुल
1: और मुताला करें आप जैसे आपने
0: मुताला
1: कहा
0: करें,
1: कि बस
0: मुताला
1: गहराई से मुताला
0: मुताला
1: करें।
0: करें,
1: बहुत
0: मुताला
1: बहुत
0: बहुत अहम
1: शुक्रिया
0: होता है।
1: और लेकिन आखिर में मैं चाहूंगी कि ये मुअम्मा है समझने
0: एक
1: का ना
0: मुअम्मा
1: फिर
0: है
1: से आप
0: समझने
1: एक
0: का न
1: इस शेर को
0: समझाने,
1: बोल दें
0: एक
1: ताकि इस
0: बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने
1: प्रोग्राम को
0: इंसान
1: इख्तिताम पज़ीर कर सकें।
0: एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का
1: दीवाने
0: है।
1: का बहुत शुक्रिया बहुत
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: सज़राइन फातिमा को भी दीजिए इजाज़त।
2: सामीन ये गुफ्तगू आप समाप्त फरमा रहे थे दास्तान गोई की रिवायत कदीम ता हाल। यकीनन ये हमारी जो दास्तान गोई की रिवायत है वो अहद कदीम की एक खूबसूरत यादगार के बतौर है क्योंकि जिस ज़माने में लिखने पढ़ने का रिवाज बहुत ही कम था उस ज़माने में भी लोगों की जो फ़िक्री और फ़नी खसूसियात थी वो इसके ज़रिए से बहुत ही बेहतर तरीके से उभर के सामने आती है। हम देखते हैं कि जिस ज़माने में इंसान बआसानी सफ़र नहीं कर सकता था, ज़िंदगी के गुजारने में उसको बेहतर बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती थी, यानी गर्ज़ के हर तरह की दुश्वारियों के बावजूद भी उसकी जो ज़हनी कैफियत थी उसमें हर तरह की चीज़ें शामिल थीं और वो उन नज़रियात को भी पेश करता था जिसे वो देख करके महसूस करता था और वो यकीनन हमारे आज के ज़माने के लिए बतौर मशाल राह हैं। इस दास्तान गोई में जो शुरका थे वो जमशेद आलम थे और इनसे गुफ्तगू कर रही थी ज़रीन फातिमा। आइए अब इसके बाद हमारी अगली पेशकश सामीन मौसीकी का वक्त हुआ जाता है, लीजिए आपके समातों के

सामिन हरिहरन की आवाज़ में इस गज़ल को आपने अभी समाप्त किया, और लीजिए अब पेश खिदमत है अगली गज़ल चित्रा सिंह की आवाज़।

चित्रा सिंह को आप समाप्त कर रहे थे सामीन, और अब लीजिए अगली पेशकश में मुलायजा करिए दिलराज कौर की आवाज़ में इस गज़ल को।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म तमन्ना से, आवाज है सोनू निगम की। निदा फाजली के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

फिल्म संदीप के कार्यक्रम में अगली पेशकश है फिल्म अनवर से। किश्चित और शिल्पा राव की आवाज, हसन कमाल गिल के इस गीत को संगीत दिया है मिथुन ने।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनिए बजरंगी भाईजान फिल्म से, आवाज है अदनान सामी की। कौसर मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

कृषि गीत के संग फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फिल्म संगीत का पुनः आप आनंद ले पाएंगे दोपहर के 12 बजे। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अगला कार्यक्रम आपको सुनवाते हैं भजी का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन एवं वाचन विजेता सिन्हा का है और प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्रा।

अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके बज्जिका के साप्ताहिक कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। हम हमेशा के तरह आज भी अपन समय पर उपस्थित हती। देखो, जीवन जिए के लेल, जीवन में खुशी पावे के लेल जीवन रक्षा बहुत जरूरी है। जीवन रक्षा के लेल अनचाहा दुर्घटना से बचना जरूरी है। आ अनचाहा दुर्घटना से बचे के लेल यातायात के नियम के पालन करना बहुत जरूरी है। काहे कि यातायात के नियम हमर जीवन के रक्षा करे के लेल, सड़क दुर्घटना के टाले के लेल आ सुगम यातायात व्यवस्था बनावे के लेल सबसे महत्वपूर्ण साधन है। एकर पालन करे से न सिर्फ हमर सबके अपन जीवन सुरक्षित रहैय, बल्कि सड़क पर चले वाला जितना लोग हतन सब सुरक्षित रहत हतन। देखू, वैसे त समय के कोनो नहीं जानैय, कभी भी कुछ भी हो सकैय, लेकिन जानबूझ के दुर्घटना के आमंत्रण नहीं देवे के चाही। हमर कहे के मतलब है कि जब सड़क दुर्घटना होइय त ओकरा पीछे कहीं न कहीं हम खुद भी जिम्मेदार रहत हती। कोनो कोनो लोग के ई आदत होइय कि ऊ मोटर

0: साइकिल चलावे समय अपन कान आ कंधा के बीच मोबाइल दबा के बात करे थतन, जैसे हुनकर ध्यान बात करे पर ज्यादा आ सड़क पर कम रहैया, जकरा कारण दुर्घटना के संभावना बनैया। तो सड़क पर जब भी मोटरसाइकिल चलाई तो सिर पर हेलमेट होय के चाही आ मोबाइल से बात नहीं करे के चाही, काहे कि कहल जाइया नजर हटी दुर्घटना घटी। तो सड़क पर वाहन चलावे समय हमेशा सतर्क रही, जब भी पैदल चली आ संगे बच्चा रहे तो बाएं से चले के कोशिश करे के चाही। यातायात के नियम समाज में सुरक्षा आ सुव्यवस्थित आगमन के लिए जरूरी है। सड़क पर चलित समय यातायात संकेत के पालन, गति सीमा के ध्यान, हेलमेट आ सीट बेल्ट के प्रयोग करे के चाही। एना करे से सड़क दुर्घटना के संभावना कम बनैया। ट्रैफिक के 3 बत्ती लाल पीला हरा हमरा सबके रुकना सावधान होना आ चलना सिखावैया। अगर तनका ध्यान देल जाए तनका सावधान रहल जाए तो सड़क दुर्घटना के रोकल जा सकैया। जेना कि गाड़ी चलावे समय कान में हेडफोन नहीं लगावे के चाही, केकरो से बात नहीं करे के चाही, गीत बजे तो ओई पर ध्यान नहीं देवे के चाही, कोनो चीज के पढ़े तो नहीं चले के चाही। एना में ध्यान भटकैया आ दुर्घटना के संभावना बढ़ैया। तो जब भी गाड़ी चलाई तो धीरे चलाई, केकरो संगे कंपटीशन नहीं करी कि हमरा आगे निकले के है। नशा में रहला पर गाड़ी नहीं चलावे के चाही। इस तरह के नियम के पालन अगर हम सब करे हती तो हम सब एगो जिम्मेदार नागरिक बन सके हती। यातायात के नियम तोड़े से न केवल स्वयं के जान जोखिम में पड़ैया बल्कि दूसरों के जीवन खतरा में पड़ सकैया। अइला हमरा सबके हमेशा यातायात के नियम के पालन करे के चाही। तनका सतर्क रह के सुरक्षित यात्रा करके आदर्श नागरिक बने के संकल्प लेवे के चाही, तभी सड़क दुर्घटना कम हो सकैया। तो यातायात के नियम के पालन करे के लेल स्वयं भी जागरूक रही आ दूसरों के भी अइला जागरूक करी। यातायात के नियम के बारे में एगो आदमी की कहत हतन, आओ सुनत हती।
1: यातायात नियम के पालन करे के चाहिए, काहे आए दिन दुर्घटना होते रहे कि तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गए। गाड़ी जब चलबे है तो ओकरा ई ध्यान रहे अपन काम पर कि अब जल्दी से जेबे जल्दी से काम करबे, से नहीं काम जे होय के रहते से तो होबे करते। तो गाड़ी चलते वक्त फोन आ गए, मोबाइल आ गए बजे लगल, तो गाड़ी चलते चलते में मोबाइल उठा ले ली, मोबाइल रिसीव करके बात करे लगली, वही चक्कर में की हुए कि एक्सीडेंट कर जाए। और कतनो कॉल आ गए तो गाड़ी के साइड में रोक करके दू लाइन बतिया ले ली आ फिर ओके बाद गाड़ी ड्राइव कर ली, ऐसे की होले अपना भी सुरक्षित रहली आ सामने वाला भी सुरक्षित रहे। और गाड़ी चलबे वक्त ई हमेशा ध्यान रखे चाहिए कि दाया से चलू कि बाया से चलू, जी ओकर साइड पड़े वही साइड से चले के चाहिए। आ कभी कभी की हुए कि जाम के कारण बाया के जगह दाया से भागे लगे, ए कारण की हुए कि जे दाया वाला रहे एक्सीडेंट हो जाए। जिंदगी बड़ा अनमोल हुए है, आदमी ध्यान नहीं दे कि होते नहीं होते, हड़बड़ हड़बड़ में तो गाड़ी चला ले वही जाके एक्सीडेंट कर जाए। हमेशा गाड़ी नियम से चलबे के चाहिए, दाया बाया। अब रात के समय है तो बाया में मोड़े के है तो जो इंडिकेटर हो इंडिकेटर दे के चलबे के चाहिए, दिन है तो इंडिकेटर नहीं उतना पता चले तो अपना हाथ दे करके तब गाड़ी के पीछे देख ले हल्का स्लो करके, कोई गाड़ी तो स्पीड में नहीं आ रहा है। आजकल देखल गए कि अक्सर लड़का है जो गाड़ी में गाड़ी रेस लगावे है कि हम आगे तो हम आगे, आई आगे के चक्कर में की हुए कि स्पीड में गाड़ी नियंत्रण खो दे आ जाकर आगे एक्सीडेंट कर जाए है। स्पीड गाड़ी चलबे लेल हाईवे बनल है, लेकिन वही में भी एक नियम है कि कितना स्पीड में गाड़ी चलबे के चाहिए। अब दो चक्का के जो पावर है वही हिसाब से ना, आगे जा रहा है स्कॉर्पियो बोलेरो तो ओकर स्पीड कुछ और है और मोटरसाइकिल कुछ और है, लेकिन की करे ओवरटेक में ओकर आदमी कंपटीशन करे लगे ओकरा से आगे निकले लगे तो चार चक्का रहे तो निकल जाए, आई दो चक्का जो रहे मोटरसाइकिल वो एक्सीडेंट कर जाए। और हाईवे जैसन लोग शहरों में गाड़ी चलबे लगे है जबकि शहर में तो बिल्कुल नहीं चलाबे के चाहिए, क्योंकि टाउन है, टाउन में एनी टाइम गाड़ी घोड़ा रिक्शा एनी टाइम चलते रहे क्योंकि बिजी जगह भले। अब हाईवे भले सिर्फ वही पर गाड़िए चले है, दोनों में अंतर है, तो इसलिए जगह के हिसाब से गाड़ी चलबे के चाहिए कि कौन जगह पर कितना स्पीड गाड़ी हम चलाओ। ये बात तो खास तौर पर ध्यान रखे के चाहिए कि गाड़ी चलावे वक्त मोबाइल रिसीव नहीं करे के चाहिए।
0: अखनी अपने सब यातायात के नियम के पालन करे के संबंध में एगो आदमी के की विचार रहे उ सुनित रही। त आउ कार्यक्रम में अब आगे बढ़े थती आ अपने सबके सुनवावे थती मणिमाला कुमारी के ई लोकगीत।

तो अखनी अपने सब सुनित रही मणिमाला कुमारी के ई लोक गीत। आओ अब कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ बात अपन धरोहर में आज हम बात करे थती भारत के विश्व धरोहर आगरा के ताजमहल के विषय में, जेकरा प्रेम के प्रतीक कहल जाइए। काहे कि ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपन बेगम मुमताज के याद में बनायल गेल रहे। ताजमहल के प्रेम के प्रतीक ऐला कहल जाइए, काहे कि शाहजहां अपन पत्नी मुमताज से बहुत प्रेम करित रहतन। लेकिन 1631 ईस्वी में अपन बच्चा के जन्म देवित समय मुमताज के निधन हो गेल। अपन बेगम के मृत्यु से शाहजहां बहुत दुखी भेलन आ हुनकर याद में एगो ऐसन भव्य आ अद्वितीय मकबरा बनावे के संकल्प लेलन जे दुनिया में हुनकर प्रेम के निशानी बन सके। ई प्रेम के प्रतीक ताजमहल के उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर बनायल गेल। ई इमारत के पूरा करे में करीब 22 साल लगल रहे। एकरा बनवावे के लेल देश विदेश से 20,000 से ज्यादा कारीगर बुलायल गेल। शाहजहां एकरा खूबसूरत आ यादगार बनावे के लेल हर संभव उपाय कैलन, जेना कि ई स्मारक पूरा तरह से मकराना के सफेद संगमरमर से बनल है। एकर खासियत ई है कि ई दिन के अलग अलग समय पर अपन रंग बदलत प्रतीत होइया। कहे के मतलब है भोर में गुलाबी त दोपहर में चमकीला सफेद आ चांदनी रात में सुनहरा नजर आवैया। यहाँ के दीवार पर कैल गेल कीमती रत्न आ नक्काशी के बारीक कारीगरी दुनिया भर के लोग के अपना तरफ आकर्षित करैया आ देखते देखते ई एगो पर्यटक स्थल बन गेल। आज के समय में दूर दूर से लोग एकरा देखे के लेल आवेत हतन आ मुमताज के लेल शाहजहां के प्रेम के याद कल जाइया। देखो ताजमहल के मुख्य मकबरा मीनार आ उद्यान पूरा तरह से गणितीय समरूपता के आधार पर बनायल गेल है। खास के प्रेम के ई प्रतीक के अपन आँख से देखे के लेल दुनिया भर से प्रेमी जोड़ा आ पर्यटक यहाँ खींचल आवेत हतन। 17वीं आ

0: 18वीं शताब्दी में भारत आयल यूरोपीय यात्री आ व्यापारी सब अपन डायरी में एक जम के गुणगान कैले हतन। आ जब 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरुआती में फोटोग्राफर द्वारा एकर तस्वीर पूरे दुनिया में फैलायल गेल, जेकरा कारण पश्चिम के लोग सब में भी एकरा देखे के लेल उत्सुकता बढ़ल आ ई एगो पर्यटक स्थल बन गेल। साल 1983 में यूनेस्को द्वारा एकरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कैल गेल, जैसे एकर सुरक्षा आ वैश्विक लोकप्रियता बढ़ गेल। साल 2007 में एगो वैश्विक सर्वेक्षण के बाद से यहाँ हर साल 70 से 80 लाख पर्यटक आवेत हतन आ आगरा के ताजमहल के खूबसूरती के अपन आँख में समेट के जायत हतन। तब बात अपन धरोहर में बस इतनी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ित हती आ अपने के सुनबावित हती रेणु सिन्हा के खिस्सा, शीर्षक है प्रतीक्षा।
1: हमर खिस्सा के शीर्षक है प्रतीक्षा। बीए के छात्रा सब के पढ़ा के हम कक्षा से निकल के कार्यालय के तरफ जाइत रही तो दू गो छात्रा आपस में बात करत जाइत रहे। एक के नाम कविता और दोसर लड़की के नाम मेघा रहे। कविता मेघा से कहित रहे, मेघा हमर बियाह तो हो गेल और एगो लड़का भी हो गेल, लेकिन हमर पति जे अमेरिका गेलन नौकरी करे से फेर लौट के अभी तक न अलन हँ। 5 साल हो गेल गेला, बियाह के 6 महीना के बाद ही उ चल गेलन नौकरी करे, लेकिन आज तक कोई खोज खबर न हमरा लेलन आ न बच्चा के। जे बच्चा हमरा गर्भ में रहे कभी ई भी न पूछलन कि कौन बच्चा भेल है, लड़का की लड़की। मेघा पूछलक कविता से, आखिर उ तोहरा साथे ऐसन काहे व्यवहार कैलन। कविता कहलक, ई बात तो हमरो समझ में ना आ रहा है कि उ काहे ऐसन कैलन, लेकिन एक बात हमू कहित हती मेघा तोहरा से कि हुनकर घर हमरा घर से थोड़े ही दूर पर है, कभी तो वो अपना घर पर अहन तो जरूर हम भेंट करब। मेघा हम बूढ़ी भी हो जाए तब भी हम हुनकर रास्ता देखब, हम हुनकर प्रतीक्षा जरूर करब। कविता के बात सुन के हम बूढ़ी भी हो जाए तैयो हम हुनकर रास्ता देखब, हुनकर प्रतीक्षा हम जरूर करब, हमर रोआ सिहर गेल। मन में यह सोचे लगली कि इतना सुंदर लड़की जे लागत है कि भगवान एकरा के अपन हाथ से छुट्टी के समय में बनैले होतन। इतना कम उम्र और इतना बड़ा दृढ़ संकल्प, हमर इच्छा हो गेल कि हम कविता के बुला के ओकरा बारे में पूछत हती। गीत गजल भी उ लड़की बहुत सुंदर गावे, लेकिन ओकरा गीत गजल में भी एक दर्द छुपल रहे, हमर मन न मानलक। कविता के हम कार्यालय में ही बुलैली। संयोग से कार्यालय में हमरा साथे 2-3 महिला प्रोफेसर ही रहथिन, ए लेल ओकरा से बात करे के अच्छा अवसर भी रहे। कविता खड़ा न रह, बैठ जा कुर्सी पर। कविता तोहर बात हम सुनली है मेघा से, जे तू कहित रहलू है कि हम बूढ़ी भी हो जाए तैयो हम हुनकर रास्ता देखब, हुनकर प्रतीक्षा हम जरूर करब। तोहर बात सुन के हमरा बहुत दुख भेल है। आखिर कौन ऐसन बात भेल कि तोहर पति तोहरा ई उम्र में एगो बच्चा के साथ तोहरा के छोड़ के अमेरिका चल गेलन। कविता कुछ सोच में पड़ गेल। हम ओकरा सोचत देखली तो पूछली, की बात है कविता, कौन सोच में पड़ गेलू? कविता सोच से निकल के कहे लागल, 5 साल पहले के बात है, जब हम 9वीं पास करके 10वीं में गेल रही, हमरा गांव के जमींदार के लड़का बादल चाहित रहे हमरा से ब्याह करे के। उ इतना मनचला लड़का रहे कि स्कूल आते जाते रास्ता में लड़की सबके साथे छिड़कानी करे। हमर बाबूजी मिडिल स्कूल के एक साधारण शिक्षक, अपन परिवार के भरण पोषण और हमारा भाई बहन के पढ़ाई लिखाई तो वो कैसहूँ करत रहथिन, तो उ जमींदार के लड़का से कैसे हमर ब्याह करती हथिन। बादल के उम्र भी हमरा से 15 साल बेसी रहे, भले ही बादल इंजीनियरिंग के पढ़ाई पढ़ित रहथिन, लेकिन हुनकर चाल चलन आ बेसी उम्र के कारण हमर बाबूजी न तैयार भेलथिन ब्याह करे के। बादल 2 साल में इंजीनियरिंग पास करके अमेरिका चल गेलन नौकरी करे, लेकिन हम 10वीं के परीक्षा देत रही कि उ अमेरिका से आके हमरा बाबूजी से फिर हमर ब्याह हुनका से करे के कहलन। बाबूजी ब्याह करे के हुनका से फिर न तैयार भेलथिन। तो एक दिन जमींदार साहब अपने से आके हमरा घर पर बाबूजी से कहलथिन कि मास्टर साहब, की परेशानी है अपने के हमरा लड़का से कविता के ब्याह करे में? बाबूजी कहलथिन, जमींदार साहब, इस ब्याह बेमेल ब्याह होत, हमर कविता से अपने के लड़का 15 साल बड़ हतन, तो हम कैसे अपन बेटी के ब्याह बादल से

कर दू। हम ओकर पिता हती ना, हम ना ओकर भला बुरा सोचबै तो के सोचते। लेकिन जमींदार साहेब हमर बाबूजी के एक बात सुनेला न तैयार भेलथिन और कहलथिन कि मास्टर साहेब, अगर कविता के ब्याह अपने खुशी से हमरा लड़का से न करब तो हम जबरदस्ती अपने के आंगन में ही कविता से हम अपन लड़का के ब्याह करके ले जाएब। इतना कह के जमींदार साहेब चल गेलन। लेकिन 8-10 दिन के बाद ही अपन लड़का के ले लेलन। जमींदार तो रहबे करथिन, गांव के भी 10-15 आदमी हुनका साथ में रहे, जबरदस्ती हमरा से अपन लड़का के ब्याह करके विदा करा के ले गेलन। हमर माई बाबूजी मजबूर हो गेल ब्याह रोके से। हमर ब्याह हो गेल, हम ससुराल चल अली। 6 महीना तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहल, इतने दिन में हम गर्भवती भी हो गेली। लेकिन बादल के जब ई बात के पता चल गेल कि 1 महीना के बच्चा हमरा गर्भ में है, तो अचानक एक दिन वो अमेरिका जाए के तैयार हो गेलन और अमेरिका चल गेलन। ओकरा बाद से बहुत दिन तक कोई खोज खबर न लेलन। हम नैहर माई बाबूजी के पास चल अली। समय पूरा भेल तो हमरा लड़का भेल। कुछ दिन के बाद कोई कोई के मुँह से सुनली कि वो कहलन है कि कविता से ओकर बाबूजी जे तैयार न भेलथिन ब्याह करे के, यही लेल हम जबरदस्ती ब्याह करके बदला ले लेली है। अब हम उ लड़की के कहियो न पूछब। हम सब कविता के बात सुन के बहुत दुखी भेली। कविता फिर अपन बीतल दिन के बात कहे लागल कि कैसे हम बच्चा के रात में सुता के पढ़ाई लिखाई करत रही। बच्चा जब रोए लागे तो माई भी हमार कभी कभी खिसियाए लागे कि छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, बच्चा के देख। लेकिन हमहू सोच लेली है दीदी कि जैसे होत दुख काटब तो काटब, लेकिन पढ़ लिख के आ कुछ बन के देखा दे हुनका के हम। वाह कविता, बहुत अच्छा सोच है तुहर। आज के समय में महिला भी पुरुष से कमजोर ना है। तुहर विचार बहुत अच्छा है, भगवान तोहरा सफलता जरूर देथुन। इतना कह के हमू सब कविता के कहली कि जा, तोहर विषय के कक्षा शुरू हो गेल है, पढ़ाई लिखाई जाके कर। हम सब जितना महिला प्रोफेसर सब रहे, सब के सब इतना सुंदर लड़की के दुख भरल बात सुन के दुखी हो गेली। समय बीतत गेल। कविता हमरा महाविद्यालय से प्रथम श्रेणी से ही बीए पास करके चल गेलिन। 4-5 साल के बाद एक दिन हम महाविद्यालय जात रही ऑटो रिक्शा से, तो कविता भी वह ऑटो में बैठलिन। हमरा से पूछलक, दीदी हमरा के पहचान रही है? हमर नज़र जब ओकरा चेहरा पर पड़ल, अरे कविता है तू, भला तोहरा के कैसे न पहचानब, कह अपन हाल समाचार। ठीक है दीदी। हम पूछली कि आजकल की सब करत हत। कविता कहे लागल, हम बीए पास करे के बाद बीएड कैली और हमरा हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्ति भी हो गेल है। अब हम बहुत खुश हती। दीदी हुनका हम ये बात बता देली कि हम भी कोई कमजोर महिला न हती। हमर संकल्प रहे कि हम हुनका से कुछ कमजोर न हती आ कुछ बन के हुनका हम देखा दे। अच्छा ये बताब कि तोहर पतिदेव आयलन अमेरिका से कि ना? हाँ आयलन की, 1 साल पहले वो अपना घर पर आयलन। जैसे ही हमरा पता चलल वैसे ही हम बच्चा के साथे हुनका घर पर जाके भेंट कैली, हुनका के देखा देली कि ई बच्चा अपना ही के है और हम अपन पढ़ाई लिखाई नौकरी के बारे में सब बात बता देली। सुन के बहुत खुश भेलन। लेकिन दीदी एगो प्रस्ताव ऐसन रखलन जे हम न मानली। वो कहलन कि तू नौकरी छोड़ द और चलो हमरा साथे अमेरिका। हम साफ इनकार कर देली आ कहली कि हम बहुत संघर्ष करके ही नौकरी हासिल कैली है, अब हम सब कुछ छोड़ के विदेश चल जाओ, ये हमरा से न होत। हम अपन देश समाज परिवार नौकरी सब छोड़ के न जाए, अपने ही अमेरिका से आके अपना देश में नौकरी करूँ आ परिवार के साथे रहूँ, लेकिन हम न जाए। तब की भेल कविता, उ तोहर बात मान लेलन? कविता हंस के कहलक, हाँ दीदी हमर बात के मानलन आ अमेरिका न जाके दिल्ली में ही कंपनी में नौकरी कर रहल हतन। कविता बहुत खुशी भेल कि तू अपन दृढ़ संकल्प के कारण सफलता पा लेलू। आ मेघा के की हाल है? दीदी मेघा भी हमरे साथे बीएड कैलक आ वो भी हमरा साथे हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी कर रहल हतन। ओकर शादी भेल कि न? हाँ दीदी मेघा के शादी बहुत ही सुखी संपन्न परिवार में भेल है। आकाश नाम के लड़का हतन, वो भी दिल्ली में ही कोई कंपनी में इंजीनियर।

0: रहतन। बहुत अच्छा कविता, तोहरा से भेंट करे के हमरा बहुत मन करित रहे तोहर हाल समाचार जाने के लेल। तो ई अच्छा संयोग भेल है कि तोहरा से भेंट हो गेल आ तोहर सुखी जीवन सुन के मन बहुत खुश भेल। आ मेघा भी सुखी है, ये सब सुन के मन बहुत खुश है। रास्ता भर बात करैत में कविता के मंजिल आ गेल जहाँ ओकरा उतरे के रहे। दीदी अब हम इहे पर उतरब। ठीक है कविता, कभी महाविद्यालय में आके भेंट करी हा। प्रणाम दीदी कह के कविता उतर गेल। हमहू आशीर्वाद देली कि खूब खुश रह कविता, भगवान तोहरा के सफल और सुखी जीवन देथुन। हम रास्ता भर इहे सोचैत रही कि इतिहास गवाह है कि पहले भी महिला पतिव्रता और सशक्त होत रही न, आ आज के आधुनिक परिवेश में भी महिला पतिव्रता और सशक्त हतन। कविता जैसन लड़की एकर उदाहरण है।
1: अखनी अपने सब रेणु सिन्हा के खिस्सा सुनित रही, शीर्षक रहे प्रतीक्षा। अब कार्यक्रम के अंत में आओ सुनित हती शब्द सरिता। शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है फिकीर, जेकर मायने होइया चिंता। जेना कि एगो माई के हरदम अपन बच्चा के खाए पिए के स्वस्थ रहे के फिकिर लगल रहिया, मतलब चिंता लगल रहिया। तब फिकिर के मायने भेल चिंता करना। एगो और शब्द है झनका, एकर मायने भेल बात बात पर गुस्सा करे वाला। जेना कि लोग कहत हतन बाबूजी तो बात बात पर झनकेत रहत हतीन, मतलब बात बात पर गुस्सा रहत हतीन। तो झनका के मायने भेल बात बात पर गुस्सा करना। कुटेब, एकर मायने भेल खराब आदत। जेना लोग कहत हतन कुटेब स्वभाव के कारण कोनो हुनका से बात नहीं करे के चाहिए, मतलब हुनकर खराब आदत के कारण कोनो हुनका से बात नहीं करे चाहत हतन। त कुटेब के मायने भेल खराब आदत। शब्द सरिता में एगो शब्द है कोड़ी, एकर मायने भेल 20 के गिनती, यानी एक कोड़ी। एक कोड़ी यानी 20 भेल। एकर उपयोग बेसी तर कपड़ा के लिए कैल जाइए। जेना लोग कहत हतीन हमरा एक कोड़ी कपड़ा धोवावे के है, मतलब हमरा 20 कपड़ा धोवावे के है। त कोड़ी के मायने भेल 20। एनाहिते एगो औरो शब्द है अरसा, माने लंबा समय। जेना लोग कहत हतन अरसा के बाद अपने से भेंट होइया, मतलब लंबा समय के बाद अपने से भेंट होइया। त अरसा के मायने भेल लंबा समय। अंठियाना, मतलब अनसुना करना। जेना लोग कहत हतन उ लड़का के आदत है कोनो काम अगर कहल जाए तो वो अंठिया देत है, मतलब अनसुना कर देत है। त अंठियाना के मायने भेल अनसुना करना। त ई रहे शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। त अंगना कार्यक्रम अपने सबके कैसन लगैया, अपने सब अपन प्रतिक्रिया, अपन सुझाव एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकित हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004। ईमेल आईडी है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संगे हमरा यानी विजेता सिन्हा के अंगना कार्यक्रम से अनुमति देल जाए। तो एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करित हती।

साप्ताहिक बजे का कार्यक्रम अंगना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दरभंगा है। हमारा अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं शोभा गुर्डू का गायन।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शोभा गुरडू का गायन। उपशास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट।

0: करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है।
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
0: जी।
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
1: जी।
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासत

0: की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जेरापुर जय भारत।
2: जय जेरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, महाराज हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
6: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
6: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज। महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
6: बिल्कुल,
5: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
6: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह कहा जा रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,

0: सारी तैयारियां पूरी है ना?
1: बिल्कुल।
0: देखो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
2: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
0: लेकिन जरा होशियारी से।
2: जो हुकुम सरकार।

0: जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का। आइए आनंद लेते हैं कुछ नए फिल्मी गानों का। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म बनवास के इस गीत से, जिसे आवाजी दी हैं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, विजय प्रकाश, महालक्ष्मी अय्यर, मोहम्मद दानिश और मिथुन ने।

मिर्चा। मैदान फिल्म का ये गीत तभी आप सुन रहे हैं जावेद अली ऋचा शर्मा की आवाजों में। मनोज मुंतशिर का लिखा ये गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गाने के बाद आप सुनेंगे विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म से ये गीत राघव चैतन्य और सचिन जिगर की आवाजों में। प्रिया सरैया का लिखा गीत होगा सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में।

दोस्तों, विशाल मिश्रा, पलक मुच्छल और मिथुन का गाया ये गीत फिल्म बनवास से है। इस गीत को हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं समय के कमी के कारण। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। आइए अब सुनते हैं हेलो जिंदगी का संपादित अंश। ये कार्यक्रम हम आपको पूर्व प्रसारित हेलो जिंदगी के कार्यक्रम से संपादित किए हुए अंश के रूप में सुनवा रहे हैं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: यह मिट्टी की काया सार्थक होती जब कोख में एक नीड़ बनता है। यह कौन सा जप है, यह कौन सा तप है कि माँ को ईश्वर का दीदार कोख में से होना है। अमृता प्रीतम के शब्द। सृष्टि को नई संतति देते हुए प्रसव की अपार पीड़ा झेल रही माँ के हाथों में बेहद कोमल गुलाबी नवजात का जब पहला क्रंदन होता है, ममता की मीठी मुस्कान वातावरण को खुशगवार कर जाती है। मिठाइयां बटने लगती हैं, उत्सव का रंग पसरने लगता है। कहा भी गया है, स्त्रीत्व की पूर्णता मां बने बगैर संभव नहीं। लेकिन मां बनना, 9 महीने तक गर्भ धारण करना, प्रसव पीड़ा के पश्चात स्वस्थ शिशु को जन्म देना किसी कठोर तपस्या से कम भी नहीं। गर्भधारण से लेकर बच्चे को जन्म देने तक एक मां को अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। गर्भ में पल रहे शिशु के समुचित विकास और उसके सुरक्षित जन्म तक कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनकी अगर भूलवश या अज्ञानतावश अनदेखी की गई तो कई बार ऐसी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं जिसमें गर्भपात से लेकर जच्चा बच्चा की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। सवाल यह है कि गर्भावस्था के दौरान आने वाली ये मुश्किलें कौन सी हैं और वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाने पर इन मुश्किलों से उत्पन्न खतरों से बचा जा सकता है। कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी।

0: श्रोताओं को नमस्कार। आज संजय की तरफ से मातृत्व सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू, यह है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और हम ये भी बता दें कि कार्यक्रम के इस अंक में यह विषय इसलिए भी समीचीन है क्योंकि 11 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस भी मनाया है और इसे लेकर पूरे सप्ताह जागरूकता के अनेक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबको जरूरी जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुप्रिया नारायण। डॉक्टर सुप्रिया नारायण एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में, एक बार फिर से हेलो जिंदगी में आपका स्वागत। नमस्कार, कैसी हैं?
1: धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप दरभंगा आकाशवाणी का सहृदय धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बोलने के लिए आमंत्रण दिया है।
0: डॉक्टर सुप्रिया नारायण, एक साहसी जिज्ञासा उनके पास होगी, जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं उनके पास जिज्ञासा होगी कि डॉक्टर सुप्रिया नारायण कहाँ की है, कहाँ से आती है, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई।
1: मैं सहरसा जिला की रहने वाली हूँ और मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने सुपौल नवोदय की टॉपर रह चुकी हूँ।
0: अच्छा,
1: उसके बाद मेरी जो मेडिकल की शिक्षा है, मैं PMCH पटना से मैंने अपना MBBS किया है। मैं 2003 बैच की थी और मेरा जो MS है ऑप्स गायनी में, वो भी PMCH पटना से ही है। और उसके बाद फिर मेरा सीनियर रेजिडेंसी DMCS से मैंने कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रह चुकी हूँ।
0: जी, एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा की बातें हैं, क्या जानना चाहते हैं?
2: इन्होंने
0: 3 सवाल मुख्य रूप से किए हैं। पहला सवाल यही है कि मातृत्व सुरक्षा हो, इसके लिए आधुनिक रूप से अब कौन सी ऐसी सुविधा है जिसका लाभ माताओं को गर्भावस्था और प्रसूति के दौरान और प्रसव के दौरान मिल रही है? ये मूल सवाल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। खान पान को लेकर के और सावधानियों को लेकर पूरा कार्यक्रम ही है। हम समझते हैं मोहन पासवान जी आज इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया से सुनेंगे और सुविधाओं के लिए भी सरकारी स्तर पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं वहां कुछ दिक्कतें हैं, तो इसकी शिकायत वो कर सकते हैं संदर्भित विभाग में भी। आज इस पूरे कार्यक्रम को सुनिएगा, आपके लिए जानकारी की बहुत सारी बातें डॉक्टर सुप्रिया नारायण बताएंगी और अलग अलग पहलू पे बताएंगी, क्योंकि बहुत सारे पहलू जो है ना मातृत्व सुरक्षा को लेकर बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक श्रोता और जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार, नमस्कार संजय बाबू, मैं डॉक्टर सितारे ग्रामीण चिकित्सक हूँ। मैं मरीज के संपर्क में बराबर रहता हूँ और जागरूकता फैलाने के लिए से फोन किया हूँ। बराबर किसी को डिलीवरी नुकसान हो जाता है तो आप मातृत्व सुरक्षा क्या समझे?
0: डॉक्टर सितारे वैशाली से बात कर रहे हैं ना?
1: तो देखिए, एक्चुअली प्रेगनेंसी लॉस जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गर्भावस्था का जो पीरियड होता है ना, इसको 3 पीरियड में बांटा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ये 3-3 महीने का पीरियड होता है। प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन 9 महीना 7 दिन का होता है। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पीरियड होता है ये थोड़ा सा हाई रिस्क जोन होता है क्योंकि इसमें एबॉर्शन होने का चांस रहता है। और बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं अभी, नए आधुनिक तरीके के टेस्ट जो कि डायग्नोज कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है माँ में, क्या दिक्कत है बच्चे में। तो इस तरह से हम लोग प्रेगनेंसी को सही तरीके से आगे कैरी कर सकते हैं और कोई भी

0: कॉम्प्लिकेशन होने से या फिर कोई भी कंजेनाइटली मालफॉर्म बेबी होने से हम उस चीज़ को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जैसे ही प्रेगनेंसी किसी का अगर मेंस मिस होता है, पीरियड मिस होता है, तो उन्हें जो प्रेगनेंसी किट है वो सब जगह अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार आपको इतनी ज़्यादा सुविधा दे रही है कि अगर आपके पॉकेट में एक पैसा नहीं भी है तो भी आप पूरा ANC का लाभ आराम से उठा सकते हैं। उसके बाद फिर जो बेसिक टेस्ट होते हैं CBC करवाते हैं हम लोग, ब्लड ग्रुपिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है, ब्लड शुगर देखना ज़रूरी होता है, VDRL देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है जो मिस हो जाते हैं सुदूर एरिया में, थायराइड प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं आप भी देखते होंगे लोगों की रिपोर्ट को, तो जो ये टेस्ट रिपोर्ट में रहते हैं कि 5 to 5.5 थायराइड नॉर्मल होता है, और आप लोग देखते हुए कि हम लोग 2.7 या फिर 3 पे भी हम लोग थायरॉक्स एडवाइस कर देते हैं, थायराइड की दवाई दे देते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, बट प्रेगनेंसी में जो थायराइड का लेवल होता है वो नीचे आ जाता है, तो हम लोग का जो नॉर्मल लेवल होता है वो अलग होता है, तो जो नॉन प्रेगनेंट में 5 होता है वो प्रेगनेंसी में 2.5 हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3.5 हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 4 हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि थायराइड का लेवल जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हाइपोथायराइडिज्म का एनवायरनमेंट बॉडी में रहेगा तो बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाता है, और बच्चे का फ्यूचर जो है ये 9 महीना में डिसाइड करता है कि आपका बच्चा भविष्य में कैसा होगा, इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जो सारे टेस्ट है, फॉलिक एसिड देना होता है जो प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में नौजिया वोमिटिंग होती है उसके लिए दवाई देना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हमारी महिला बहुत ज़्यादा डिस्कार्डेड महसूस करती हैं कि उन्हें आराम नहीं दिया जाता है, आराम उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल चैलेंज है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसको कि महिला को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसके लिए उनके पति, उनके जो गार्जियन है, जो भी सास ससुर हैं, माता पिता हैं, जो भी हैं, उनको थोड़ा सा उनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, साइंस के हिसाब से उनको 10 घंटा आराम करना चाहिए, 8 घंटे रात में और 2 घंटे दिन में।
1: इस समय हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: हेलो, प्रणाम सर।
1: जी प्रणाम, अपना नाम बताएं।
2: सुमन सिंह है, मैं हम दरभंगा से बोल रही हूँ।
1: जी सुमन सिंह जी, क्या जिज्ञासा है?
2: मेरी एक बाबू है और 8 साल शादी की हो गई है, फिर दोबारा मतलब बाबू नहीं हो रहा है।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो क्यों नहीं मतलब हो रहा है, क्या दिक्कत?
0: एक्चुअली ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस है जिससे आप अभी गुजर रही हैं, तो इसका जवाब जनरली मतलब कि इतने छोटे ड्यूरेशन में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए आपका पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, और हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, और दोनों पार्टनर का टेस्ट होता है, आपके हस्बैंड का भी टेस्ट होगा और आपका भी टेस्ट होगा।
1: एक बात और भी, 8 साल पहले जो डिलीवरी हुई थी, क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ ऐसा हो, क्या उसका भी असर पड़ सकता है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है सर, अगर इनकी पहले डिलीवरी अगर बहुत प्रोलॉन्ग लेवल रही होगी या फिर बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी हुआ होगा तो उससे असर होता है।
1: सवाल ये है कि जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं उनके लिए आगे का समय अच्छा हो, इसमें कौन सी ऐसी सावधानी है जो शुरू में कर लेनी चाहिए, ये बताइए।
0: देखिए, जैसे ही मेंस का डेट मिस होता है, जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, जो बेसिक ब्लड टेस्टिंग है वो करवा लेनी चाहिए, और एक हम लोग अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो अर्ली अल्ट्रासाउंड का ये पर्पस होता है देखने के लिए कि कहीं प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है। एक्टोपिक का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूटराइन ना रह के एक्स्ट्रा यूटराइन रहती है, कहीं पे भी रह सकती है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कंडीशन होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है, तो हम लोग अर्ली प्रेगनेंसी में स्कैन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बेसिकली देखते हैं, और ये देखते हैं कि जेस्टेशन जो है वो सिंगल है कि ट्विन है कि ट्रिपलेट है, इसके लिए देखा जाता है। तो गांव में ये बहुत लोग सोचते हैं कि अभी क्या अल्ट्रासाउंड कराएं, बच्चा 4 महीने का हो जाएगा तब कराएंगे, ये गलत सोचना है इनका। आप अर्ली प्रेगनेंसी में स्कैन कराइए, और एक जो फर्स्ट एनोमली स्कैन होता है जो कि पहला NTNB स्कैन हम लोग कहते हैं, जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं बट करवाना चाहिए, वो 11 सप्ताह से 13.6 वीक यानी कि 11 से 14वें सप्ताह के बीच में ये जांच होता है अल्ट्रासाउंड का, NTNB स्कैन। और ये अभी मतलब कि पहले तो हम लोगों को, अगर हम लोग पेशेंट को कहते थे कि NTNB स्कैन करा लीजिए, तो

0: रिएक्ट करते थे कुछ को छोड़ के, बट अभी ये सीन है कि लोग आते हैं और खुद कहते हैं कि मैडम हमें एंटी एनबी स्कैन करवाना है। तो ये हम लोगों के मतलब कि लगातार प्रयास का ही असर है कि अब लोग भी शिक्षित हो रहे हैं कि उन्हें क्या टेस्ट करवाना है। और एक ड्यूअल मार्कर टेस्ट होता है जो कि 11 से 13 सप्ताह के बीच में कर लेना होता है। तो ये दोनों टेस्ट अगर आपका नॉर्मल है तो मान के चलिए कि 90% चांस है कि आपके बच्चे को कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद पहले ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना होता है, पेशेंट को हम लोग पका हुआ पपीता नहीं कहते हैं खाने के लिए, कॉफ़ी अवॉइड करते हैं क्योंकि कॉफ़ी पीने से दिक्कत हो सकती है उन्हें। वो पीरियड होता है कि नौजिया वोमिटिंग होता है पेशेंट को नींद नहीं आएगी, मतलब कि थकावट महसूस करेगी पेशेंट, और उसके बाद उनको ना खाने का स्मेल लगता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत है, ये सब लगभग सभी महिलाओं के साथ होता है। तो उनको जो पसंद आए वो खाएं, पानी मतलब कि 10 से 12 ग्लास पानी आप एक दिन में पीजिए तो वो बेटर है, क्योंकि हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। और कभी भी वो अपना पेशाब रोक के नहीं रखेंगी, क्योंकि पेशाब रोक के रखने से ना एक तो इन्फेक्शन का चांस रहता है, दूसरी कि उनको पेन एब्डोमेन होने लगता है, और प्लस हम लोग लॉन्ग जर्नी अवॉइड करते हैं कि बहुत लंबी जर्नी आपको नहीं करनी है, बाइक अवॉइड करवाते हैं, हील वाले जो चप्पल होते हैं हम लोग उसको मना करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है। ये सब कॉमन जानकारी है कि जो हर महिला को जाननी चाहिए।
1: हाई बीपी और लो बीपी ये बड़ी समस्या होती है आज की जो लाइफ स्टाइल है।
0: भारत सरकार और अपने बिहार सरकार के द्वारा हर महीने में 3 तारीख को फिक्स किया गया है, 9, 15 और 21। ये तीनों तारीख जो है 9 तारीख, 15 तारीख और 21 तारीख, ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत इन तीनों डेट को फिक्स किया गया है कि जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को देखा जाएगा।
1: ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, बिना पैसे
0: की। जी जी जी निःशुल्क है। और हर बार पेशेंट का वजन देखना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखना है, पेशेंट का पल्स देखना है, सेचुरेशन देखना है, ये सब देखना है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी माना जाता है। बहुत पेशेंट का बहुत मतलब कि जो हमारे इंडियन सिनेरियो में है कि 90/60 तक मरीज को हम लोग देखते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल रहती हैं। अगर उनको हाइपोटेंशन का फीचर आता है फिर हम लोग उसको उनके रिक्वायरमेंट में ट्रीटमेंट देते हैं। और प्रेगनेंसी में बीपी इतना ज़रूरी होता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक तरह से कहिए तो कि माँ और बच्चे दोनों का दुश्मन होता है, और माँ और बच्चे का ना उस पूरे परिवार का दुश्मन होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ती है उससे उनको चमकी आने की शिकायत रहती है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, ये सब का रिस्क रहता है, और ये सब काफ़ी खतरनाक बीमारी है प्रेगनेंसी में, जिसको कि हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करके बचा सकते हैं। तो 140/90 ये मुझे लगता है कि हर लोगों को याद होना चाहिए कि इतना अगर बीपी हो गया तो आपको घर में इलाज नहीं करना है, आप अपने क्लिनिशियन से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका सही इलाज करवाइए।
1: डॉक्टर सुप्रिया, अमूमन डायबिटीज की समस्या, मधुमेह की समस्या पहले नहीं होती थी, लेकिन आज तो घर घर ये स्थिति है। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए प्रेगनेंसी फर्स्ट हो सेकेंड हो क्या कुछ अलग आप मुआयना कराती हैं या कुछ अलग दृष्टिकोण से इसका?
0: नहीं, हम लोग डायबिटिक, सबसे पहले तो डायबिटिक पेशेंट को हम लोग बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, और हर पेशेंट जो ENC के लिए आती है उनका डायबिटीज़ के लिए चेकअप होता है। अगर उनका ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ आता है तो फिर उनके बहुत सारे पैनल्स हैं, उसके अंडर उनका टेस्ट किया जाता है और उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। डायबिटीज़ आप कह सकते हैं कि वो डेवलपिंग बच्चे के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसा बीमारी है कि उसमें सडन IUD होता है। IUD मतलब इंट्रा यूटराइन डेथ, बच्चा पेट में खराब हो सकता है। तो अगर पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी बच्चा ठीक है और अगले दिन बच्चा IUD हो सकता है। तो इसलिए डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
1: HIV की जांच होती है?
0: जी जी जी।
1: हेपेटाइटिस बी की जांच होती
0: है? HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी सब की जांच होती है, VDRL की टेस्ट होती है।
1: ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और ये इसका फ़ायदा होना चाहिए। अगर HIV पॉजिटिव हैं तो फिर गर्भावस्था के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है। यही हालत हेपेटाइटिस बी में भी है। एक और बात, जिन्हें हृदय रोग है या उस तरह की दिक्कतें हैं या फिर किसी अन्य बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, इन सब परिस्थितियों में अगर अब प्रेगनेंसी रह जाती है, गर्भ रह जाता है, तो विशेष सतर्कता बरतनी
0: चाहिए। जी जी, इसमें तो एक कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ है उनका ओपिनियन लेना होता है कि क्या हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
1: सही बात है।
0: तो अगर वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि माँ को खतरा होता है, क्योंकि हम लोगों का देखिए मेन मुख्य मकसद है, ऐसा नहीं है, हम लोगों का मकसद है माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हो, दोनों को बच्चा

0: जाना है, दोनों खुश रहे हेल्दी रहे पूरे समय पे हो, बट अगर माँ की जान को खतरा रहता है तो हम लोग माँ को बचाते हैं।
1: सही बात,
0: ठीक है ना
1: जी। तो एक श्रोता जुड़ गया,
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि हीमोग्लोबिन की स्तर थोड़ा कम है, यानी 8.8 है, तो उसके लिए आगे क्या प्रिकॉशन रहना चाहिए और क्या खान पान रहनी चाहिए जिससे वो आगे जाकर थोड़ा बेहतर हो जाए और प्रेगनेंसी के दौरान कोई कठिनाई ना हो।
1: बढ़िया सवाल है, कौन साहब बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं लर्निया बिहार से बोल रहा हूँ।
1: अखिलेश कुमार जी नमस्कार, ठीक है आप लाइन पे बने रहिएगा। अगर हीमोग्लोबिन जो है 8.8 ग्राम है
0: जी,
1: किसी भी महिला को, तो क्या ये प्रेगनेंसी के लिए तो सही है नहीं, उस समय के लिए, लेकिन अगर प्रेगनेंसी रह गई है तो उस समय क्या किया जाए, ये सवाल इनका है।
0: देखिए अगर हीमोग्लोबिन 8 है तो इसे अनिमिक माना जाए कि पेशेंट को खून की कमी है
1: जी,
0: और सबसे पहले तो हम लोग जो उनका खान पान होता है वो बेहतर करवाते हैं कि उन्हें चुकंदर खाना है, सेब अनार पालक का साग ये सब दीजिए उन्हें खाने के लिए, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो कलेजी खा सकती हैं। तो जनरली प्रेगनेंसी में लोगों को स्मेल आता है तो वो पसंद नहीं करती है, तो हम लोग वेजिटेरियन डाइट से अलाउ करते हैं, या फिर खजूर ये सब खा सकती हैं। और आयरन के टेबलेट्स सरकार की तरफ से आपको पर्याप्त मात्रा में दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसमें 180 आयरन के टेबलेट्स और 360 कैल्शियम के टेबलेट्स सभी प्रेग्नेंट महिला को देना है, ये एक अनिवार्य कार्य है और ये सभी को दिया जाता है। मगर एक सबसे ज़रूरी बात है कि बहुत लोगों को देखा जाता है कि आयरन के टेबलेट देने के बाद भी उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। लोगों में जनरल कॉन्सेप्ट है कि एनीमिया मतलब खून की कमी मतलब आयरन की डिफिशियंसी है, ऐसा नहीं है। अगर आप पेशेंट को आयरन की टेबलेट दे रहे हैं और उनका खून नहीं बढ़ रहा है तो दो कारण हो सकते हैं, पहले तो वो खा नहीं रही है दवाई, दूसरा कारण हो सकता है कि उन्हें आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो दवाई खाए, और अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो फिर इंजेक्टेबल आयरन है मार्केट में। अभी एक बहुत खुशी की बात है कि एक मतलब कि इंजेक्शन FCM फेरस कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन जो है वो सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया गया है, जो कि काफ़ी महंगा इंजेक्शन है। अगर आप प्राइवेट से लीजिएगा तो आपको 4 से 5 हज़ार इसका रेट आता है, जो कि सरकार ने, जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए हैं सभी सरकारी अस्पताल में, सभी PSC पे। तो ये हम लोग इंजेक्टेबल देके फिर टेस्ट करते हैं फिक्स इंटरवल के बाद उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर हम लोगों को प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर एक टेस्ट कराना ज़रूरी होता है कि हम लोग थैलेसीमिया माइनर की जांच करवाते हैं कि सिर्फ आयरन पे अटके नहीं रहना, हम लोगों को आगे भी बढ़ना है। अगर पेशेंट थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर ये एक अलार्मिंग कंडीशन होता है कि आपको अब अलर्ट हो जाना है। अगर पेशेंट अगर थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव है तो उनके पार्टनर का भी थैलेसीमिया का टेस्ट होता है, अगर वो निगेटिव है तो कोई बात नहीं है, बट अगर पॉजिटिव है तो फिर बच्चे को एक हाई रिस्क बीमारी हो सकती है थैलेसीमिया मेजर की, जिसमें कि बच्चे को हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा देखना होता है, अगर थैलेसीमिया माइनर पेशेंट पॉजिटिव हो जाते तो फिर आयरन वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वहाँ पे फिर हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को इसलिए हीमोग्लोबिन टेस्ट होते रहना चाहिए, और आयरन के बाद भी अगर उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है खासतौर से इंजेक्टेबल आयरन के बाद भी, तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं कि अभी बहुत लोगों में थैलेसीमिया माइनर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए जी, नमस्कार।
3: नमस्कार सर, नमस्कार विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार
0: जी। नमस्कार
1: जी, बताइए कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
3: सर मैं हनुमानगढ़ से महाकांत सिंह बोल रहा हूं, राजस्थान से।
1: जी महाकांत सिंह जी, बताइए क्या समस्या है या क्या जिज्ञासा है, ये बताइए।
3: मुझे सर जिज्ञासा है कि गर्मी में गर्भवती बेटी को क्या किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और क्या खान पान करना चाहिए
1: गर्मी के दौरान। लेकिन एक सवाल हमारे तरफ से है कि गर्भवती माता जो है वो कितने महीने की गर्भवती है, उसके मुताबिक खान पान तय होता है पहली तिमाही में?
3: चार महीना है सर।
1: चार महीना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैडम बता रही है। सुप्रिया जी बताइए।
0: देखिए सबसे पहले तो गर्मी में थोड़ा सा पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, तो आराम से पचने वाला खाना दीजिए पेशेंट को, इजीली डाइजेस्टेबल। मसाला तेल बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि मसाला कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मसाला तेल कम करके देना है पेशेंट को खाने के लिए। और एक ही बार में पेशेंट ज़्यादा खाना नहीं खाएगी, जितना खाती है उतना थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर पर खाएगी, और अपने खाने में सलाद ऐड

0: करेंगी। जो भी गर्मी के समय में सलाद के जो आइटम्स हैं वो अच्छे खासे मिलते हैं, खीरा है, ये सब आप खा सकते हैं। तो इससे हाइड्रेशन प्रॉपर रहता है। और खाने के तुरंत बाद इन्हें पानी नहीं लेना होता है, क्योंकि खाने के अगर तुरंत बाद पानी लेते तो दो कारण होता है, एक तो आपका जो एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, और दूसरा है कि पेशेंट को भी थोड़ा सा भारीपन लगेगा। तो खाने के थोड़ी देर के बाद उन्हें पानी लेना है, और खाना थोड़ी थोड़ी देर पे खाना, एक ही बार में भारी खाना नहीं लेना है, जो आराम से पच जाए वो खाना खाना है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेब, अनार, चुकंदर, ये सब हम लोग पेशेंट को कहते हैं खाने के लिए। और गर्मी का दिन है तो खाने में सलाद ऐड करवा दीजिए, पानी अच्छे से लेंगी। और अगर अंडा खाती हैं पेशेंट तो अंडा खिला सकते हैं, अंडा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो आप कोशिश कीजिए एक या दो अंडा उन्हें डेली बॉयल करके खिलाने का, इससे प्रोटीन की उन्हें डिफिशियंसी कमी नहीं होगी।
1: डॉक्टर सुप्रिया नारायण, आपने बताया पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और उसके मुताबिक आप लोग सलाह देते हैं कि किस तरह से रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ कहाँ क्या क्या परहेज करने हैं। कभी कभी रक्तस्राव भी देखा गया है, ये रक्तस्राव क्या खतरनाक हो सकता है?
0: जी, रक्तस्राव अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहे हैं तो इसके लिए ध्यान रखना है। कभी कभी जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है, और कभी कभी स्पॉटिंग एक दो बूंद प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ में होते हैं, तो अगर ब्लीडिंग देखा जा रहा है तो तुरंत आपको अपने कंसल्टेंट से मिलना है, अल्ट्रासाउंड करवा के और ब्लड टेस्ट करवा के देख लेना है कि प्रेगनेंसी का क्या चांसेस है सरवाइव करने का। अगर प्रेगनेंसी सही जा रही होती है और चांसेस रहते हैं तो हम लोग पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करके फिर प्रॉपर मेडिसिंस देते हैं।
1: प्रसव से पूर्व और प्रसव के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, खास करके खतरे के संकेतों को देख।
0: सबसे पहले मैं कहूँगी कि अगर पेशेंट का प्री प्रेगनेंसी पीरियड्स रेगुलर है तो हम लोग पेशेंट का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उससे जो हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करते हैं, हम लोग के लिए वो मायने रखता है। बहुत पेशेंट सोचते हैं कि अल्ट्रासाउंड में इतना डेट दे रहा है मैडम तब तक रुके, तो ऐसा आपको नहीं करना है।
1: सही बात।
0: जो आपके LMP CDD कैलकुलेट हो रहा है उससे आपको बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। कि पहले प्रेगनेंसी है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर सब कुछ सही जा रहा है, कि अंदर में लाइकर सही है, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत बार लगता है क्लिनिशियन को कि शायद CPD का फीचर्स है, नहीं हो सकता है, बट जब लिवर पेन शुरू होता है तो वो पेशेंट प्रोग्रेस करती है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो पूरा प्रयास करते हैं कि हम लोग नॉर्मल का वेट करें।
1: जिनके प्रसव की बातें घर में होती हैं, अभी भी ऐसे इलाके हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो घर पर ही सुरक्षित प्रसव की सारे इंतजाम करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन जब ज्यादा बढ़ जाता है तब हॉस्पिटल की राह देखते हैं।
0: बिल्कुल नहीं, आप घर पे बिल्कुल इंतजार नहीं कीजिए। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आपको सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है कि आपको अगर आप वहां से कॉल कर दीजिएगा तो जो सरकारी अस्पताल है वहां से एम्बुलेंस आके ले जाएंगे आपको, और आफ्टर डिलीवरी आपको घर तक पहुंचा देंगे। आपको वहां पे डाइट मुफ्त मिलेगा, दवाई मुफ्त मिलेगा, और डिलीवरी के बाद भी एक पेशेंट को डाइट किट दिया जाता है खाने के लिए
1: जी।
0: अगर अवेलेबल रहता है उस समय तो वो आपको दिया जाएगा।
1: सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार की तरफ से गर्भावस्था के दौरान पैसे भी दिए जाते हैं ताकि उनका जो है बच्चे का पोषण और उनका पोषण सही तरीके से हो। संभवतः 6,000 की यह राशि होती है, बिहार सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी सुविधाएं हैं।
0: 1400 रुपया अच्छा आफ्टर डिलीवरी दिया जाता है,
1: आफ्टर डिलीवरी 1400। तो ये सारी चीजें हैं, आप पंचायत में मुखिया से संपर्क कर सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में भी सारी सूचनाएं हैं, वो सारी चीजें ले सकते हैं। और ये एक बात तय मानिए कि सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी जा रही है मातृत्व सुरक्षा को लेकर।
0: और अभी सरकार मेरे हिसाब से कि जितनी फैसिलिटी दे रही है गर्भवती महिलाओं को
1: जी,
0: अगर सही से उसका उपयोग किया जाए तो शायद उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि आपको बहुत ज़्यादा संकोच में नहीं रहना है, और अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए, संकोच को छोड़िए और बाहर निकलिए। जो आपके सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा है, प्राइवेट है, सरकारी है, जहाँ भी आप जाइए उसको फैसिलिटी को अवेल कीजिए। और मुझे लग रहा है कि सरकार ने हर गांव में, हर पंचायत में अपना स्वास्थ्य उपकेंद्र दे दिया है,
1: सही
0: वहां तक पहुंच सकती
1: है। तो आज इस कार्यक्रम हेलो जिंदगी का समय अब समाप्त

0: हो रहा है। ये बताते हुए कि आज का विषय था मातृत्व सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू, और मातृत्व सुरक्षा को लेकर जितने भी लोग लगे हुए हैं, आप जैसे डॉक्टर्स लेकर अन्य जो भी लोग लगे हुए हैं, एनजीओज तक भी, उन सबको शुभकामनाएं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल का दिन खास था, राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस था कल, और ये सप्ताह खास तौर से मनाया जा रहा है। डॉक्टर सुप्रिया नारायण, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए अपना समय निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मिलेंगे अगले अंक में रविवार के दिन, तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा और संयोजक असद दाऊद के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो

0: अभी आप सुन रहे थे हेलो जिंदगी का पूर्व प्रसारित 14 अप्रैल 2026 को प्रसारित हेलो जिंदगी के रिकॉर्डिंग का संपादित अंश। ये हेलो जिंदगी का संपादित अंश आपने सुना आकाशवाणी दरभंगा से। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। इसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस सभा के मुख्य कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। मोहम्मद रफी का गाया शहीद फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत के अंतर्गत। समय होगा 1:10, 1:15 समय होगा फिल्म संगीत का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 2 बजे, प्रसारण हमारे पटना केंद्र से किया जाएगा। 2:05 समय होगा इलाकाई खबरों का। रोजगार सूचना हम आपको ये सूचना सुनाएंगे 2:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन पाएंगे। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15 हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। दो बजकर 30 मिनट एक बार फिर से समय होगा फिल्म संगीत का। आनंद आप ले पाएंगे फिल्मी गीतों का। बज्जी का लोकगीत का समय होगा 3 बजे।

अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा के कार्यक्रमों में शुरुआत हम करेंगे कार्यक्रम तरुण कुसुम से, मीडिया और रेडियो में कैरियर, यही होगा चर्चा का विषय। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:40 से, हिंदी समाचार 6:00। 6:05 पर कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप सुनेंगे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। विद्यापति गीत का समय होगा 6:10। मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से प्रसारित, हम आपको सुनवाएंगे 6:25 से। गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नव ऊर्जा, चर्चा का विषय होगा स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी। समय होगा 6:30। 7:00

खेती गृहस्थी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पशुओं के सामान्य रोग एवं उपचार के विषय में। प्रादेशिक समाचार दूसरी सभा में प्रसारित किया जाएगा 7:30 से। जिले की हलचल 7:47 पर।

दूसरी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:52 से एक फनकार के अंतर्गत रात्रि 10 बजे और 10:30 पर फिल्म संगीत के अंतर्गत। सिंगारहार का समय होता है 8:15। विविधा सर्वभाषा का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और 9:45 पर इंस्पायरिंग वॉइस इंग्लिश टॉक हम आपको सुनवाएंगे। ये जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। अभी समय हो चला है हम अब तक पहुंचाएं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं,
3: हिंदी सामान किनना लाए।
1: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
4: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
5: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का, आइए आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का।

0: के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

शान। इस फिल्म में भी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अभी आप सुन रहे हैं खय्याम का संगीत, नक्स लायलपुरी का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म नूरी में।

फर्स्ट लव लेटर, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाजों में, गीत रचना है अनजान की और संगीत रचना बप्पी लहरी की।

फर्स्ट लव लेटर। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान का लिखा ये गीत था बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप आकाशवाणी दरभंगा से अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत। आइए अब जुड़ते हैं हमारे पटना केंद्र के प्रसारण में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज्जा के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के विधि विधान पूरे कर रहे हैं। बिहार के 2,552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।

0: पश्चिमी परिसंचरण के प्रभाव से अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में विभिन्न स्थानों पर आज तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज प्रथम क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर हाट सहित कई स्थानों पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बिक्री रोकने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित मछली जब्त की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भेवड़ा ओवर ब्रिज पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 2,859 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखपुरा, अररिया समेत विभिन्न जिलों में बकरीद के पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि साल 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जिम्मेदारी संभालने के बाद मुल्क ने ज़बरदस्त खुद एतमादी और एक नए सकाफती निशात सानिया का तारीखी लम्हा देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नवीन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की बेहतर हुक्मरानी और कौम अव्वल के जज्बे से मुतासिर गुज़श्ता 12 बरसों की मुद्दतकार को एक तारीखी सफ़र बताया। बीजेपी कौमी सदर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के बुनियादी मंत्र और अंत्योदय के आला उसूलों की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को एक नई सीमत अता की है। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली कोटे से भरी जाने वाली बिहार कानून साज कौंसिल की खाली हुई 9 सीटों के इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन की ऐलानिया के मुताबिक इन सीटों पर इंतखाब 18 जून को कराया जाएगा। उसी दिन शाम को वोटों की गिनती की जाएगी। तफसीली प्रोग्राम के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 जून तक कागजात नामजदगी दाखिल होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। वाज़ह रहे कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौ, सुनील कुमार सिंह समेत 9 अराकीन की मुदत कार 28 जून को पूरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई कौंसिल की सीट के लिए भी ज़िमनी इंतखाब 18 जून को कराए जाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में सालाना हज बैतुल्लाह का आज दूसरा दिन यौम अरफा है। हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए पहुंचे पूरी दुनिया के लाखों मुसलमान आज मैदान अरफात में जमा हैं और मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ हैं। मैदान अरफात में ईमान परवर नज़ारा है। बिहार के 2,500 से ज़ायद आज़मीन इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद हिंदुस्तान के अफसरान ने बताया कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए गए हैं। रियासत के अररिया, किशनगंज, सुपौल समेत शुमाल मशरकी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर आज तेज आंधी के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर जालेबारी की भी खबर है। इधर रियासत के जनूबी हिस्से में

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1230 पदों पर भर्ती के योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.bpsc.bi।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए रोजगार सूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अप्रेंटिस के 7150 पदों पर भर्ती निकाली है। शैक्षणिक योग्यता है स्नातक, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, लैंग्वेज एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर चयन किया जाएगा। अंतिम तिथि 8 जून 2026 है। आवेदन करने के लिए आप sbi.co.in को देख सकते हैं। इंडियन नेवी SSC एग्जीक्यूटिव IT ऑनलाइन फॉर्म 2026, पदों की संख्या है 15, अंतिम तिथि 1 जून 2026, आवेदन शुल्क निःशुल्क है

रेलवे आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के अंतर्गत 11,127 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। 14 जून 2026 अंतिम तिथि है। rrbapply.gov.in पर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ലവ്ലീൻ നിഗം. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की. भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए. गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया. राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं. और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटन्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई. ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया. क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की. सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की. क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा. फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा. उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था. क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए. हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई. बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा.
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई. ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई. हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है. हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं.
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है.
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया. हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है. आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को

0: आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को

0: संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार

0: बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वरकला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे

0: की अध्यक्षता की क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ।

कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है फिल्म दिल के उस गाने से, जिसे आवाजें दी है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने।

चल मेरे भाई। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक को। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत बद्ध किया था आनंद मिलंद ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आनंद लीजिए बच्ची का लोक गीतों का।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा।

राम बालक निराला, कृष्ण कुमार श्याम, मणिमाला सिन्हा, इंद्रुबाला शर्मा और अरुण कुमार अकेला के गाए ये बज्जी का लोकगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त तो होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना
1: सूरत
0: सटीक है ना मंदाकिनी
1: हाँ बिल्कुल
0: जी हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
1: बिल्कुल
0: सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: हाँ। और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है।
0: बिल्कुल, है ना। चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, हमारी सफल

0: महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं।
1: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से MBA की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया
0: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ shopclues की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। shopclues ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
0: जी। और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे shopclues भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब shopclues का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड्स 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। SOCHAM का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले।

0: की यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

होंगे जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: की बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है, फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
1: विश्वास कर लेते।
0: तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास मिले हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है।
0: जी, और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए।
1: हाँ।
0: वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पर जाते हैं।
1: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
0: बिल्कुल,
1: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से। दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
0: जी, और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
1: बिल्कुल पड़ता
0: है। तो सबसे पहले तो इंसान को, मंदाकिनी जी, अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं डिगा नहीं सकते, जिसे कहते हैं।
1: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला, इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
0: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
1: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
0: बिल्कुल
1: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
0: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
1: ऐसे लोग जो होते हैं जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं।
0: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना
1: मतलब
0: निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना, आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसा

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे की उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से

0: ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहाँ ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। वो बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है,
1: सादगी से वो जनवासा होता था। दिखावटी नहीं होता,
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था।

0: कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ, इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: है। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: बिल्कुल, वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से व्यवस्था
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह की भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, बड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत शादी विवाह की जान होते थे।
0: जान होते थे, सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं। तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बरातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था जिसमें से जनवासे में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत चूहलबाजी टाइप की भी होती थी तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
1: सब, अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं।
0: बदल गई, होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठ

0: गीत गाए जाते थे,
1: बिल्कुल
0: पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए
1: सारे
0: जाते थे,
1: कार्यक्रम।
0: तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
1: लेकिन मुझे
0: जिसका
1: तो वो जन्मासे वाले दिन बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल याद
1: तो चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं,
0: हाँ,
1: फिर बाकी
0: फिर बात
1: संदेश
0: करते हैं।
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासी में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आँख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहां बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहाँ आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए। हाँ। कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल। और जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासे के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है तो वो बड़ी समस्या हो।

0: गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते जा रहे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
1: मजा था।
0: मजा था।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनियां गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
0: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
1: अब तो फॉर्मेलिटी ही
0: जी
1: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
0: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी,
1: हाँ।
0: जी तो वो तो किसी और का बगीचा है।
1: हाँ हाँ।
0: अब आम लगे हैं,
1: हाँ।
0: अब बराती लगे तोड़ने में,
1: हाँ हाँ।
0: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
1: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: शबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए। ताजा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती तो हम

0: आकाशवाणी, विविध भारती, हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
1: जी।
0: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
1: क्या
0: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
1: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
0: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
1: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
0: है, बांसुरी वादक
1: जी। बिल्कुल, बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
1: क्या बात है।
0: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग, गाना बजाना ही उसको, उस राग को संभालना ही मुश्किल है
1: जी।
0: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफ़ी है,
1: और इन रागों में वाद्यवृंद
0: बनाना, वो भी उनके चलन के आधार पे
1: जी।
0: अब सारे गामा पदा निजा निदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ,
1: ये मायने रखता है।
0: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने
0: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे
1: गामा पादा। अच्छा, दोनों नोटेशन करते थे वो?
0: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
1: जी जी।
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं, और दो म्यूज़िक में हैं, एक म्यूज़िक में नहीं है
1: जी।
0: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई
0: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी,
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना,
1: हाँ,
0: कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की, कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है,
0: हाँ,
1: वो एक कुटुंबस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है,
1: हाँ,
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
1: जी,
0: तो और भी बदमाश,
1: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
0: हम लोग करते थे बचपन में।
1: शर्मा रहे, बता।

0: हाँ थोड़ा सा शर्मार हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी
0: बहुत
1: से
0: चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
1: थोड़ा
0: इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी,
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी जी जी।
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
1: अच्छा।
0: इसको कर्मा बोलते।
1: वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी,
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: और जमाना भी सख्ती का था,
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
1: कहीं और पहुंच गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या, तो हाल होता।
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
1: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी,
0: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओ हो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह,
0: शहनाई। और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो

0: म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था,
1: जी जी
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी ला बा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के,

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की नींद,
0: चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
1: जी
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है,
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज अनुशासन करते हुए,
0: रियाज करते हुए, अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स

0: के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल,
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद
0: जी,
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: इसको ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी,
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरीके,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का ही नोट है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही,
0: तो हमने तो बचपन से देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात,
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र मां का

0: ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र मां का यहाँ होल है।
1: हाँ है,
0: है ना
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का।
1: जी जी जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे। वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: तो वो बिल्कुल सही,
0: वो
1: है।
0: देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं।
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: लगता है जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं।
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी, अब जैसे ये चल रहा है

0: फर्जी आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी
1: जी।
0: एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: वो वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने उस वक्त। क्या था वो, 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा। अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल पीने जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो,
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना
0: जी,
1: तो तब का सुना हुआ है,
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
0: हुली आई रे कन्हाई।
1: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
0: जी,
1: तो वैसा था, तो फिर आए दिले नादान,
0: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
1: हाँ, रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो,
0: बिल्कुल।
1: ओहो हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो

0: उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
1: जी।
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त की। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक।
1: अच्छा,
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर।
1: अरे वाह,
0: इन द टीम। यस,
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है,
0: था।
1: तो फास्ट बॉलर थे?
0: फास्ट बॉलर, लाइक अ शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस,
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ। तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए
1: जुनून के तहत खेल।
0: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: जैसे मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले
1: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही
1: इशारा किया था
0: कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
0: हाँ, स्टूडियो चलते हैं ना,
1: स्टूडियो चलते
0: हैं, मजा आता है।
1: आकाशवाणी की गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहां पे
1: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ,
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी
1: जी।
0: अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी जी,
0: उसे पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी बातचीत में से। ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है।

0: पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरे एक हमारा चक्कर
1: लगता है।
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के अर्थात शाम के 5 बजे से लेकर के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे कुछ लोकगीत और साथ ही साथ कुछ आपसे हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा का हमारा विषय होगा मीडिया और रेडियो में कैरियर। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं हेमकांत झा के स्वर में ये लोकगीत। कखन है

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में ये लोकगीत। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आए होंगे। और कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे बातचीत की थी, कहा था कि आज हम एक चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है मीडिया और रेडियो में कैरियर। जी हाँ दोस्तों, मीडिया और रेडियो में कैरियर आज के समय में बेहद रोमांचक, रचनात्मक और तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। इसके लिए जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा करना आवश्यक होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भाषा पर पकड़ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सर्वप्रथम कोर्स करने के बाद हमें कहीं इंटर्नशिप के आधार पर काम करना होता है। और जब हम इंटर्नशिप कर लेते हैं तो फिर किसी रेडियो में जाकर के, या चाहे वह सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या फिर प्राइवेट चैनल क्यों ना हो, हम वहां जाकर के अपना कार्य क्षेत्र बनाते हैं। मीडिया और रेडियो क्षेत्र में हमारे लिए कई आकर्षक करियर विकल्प मौजूद हैं, जिनमें

जिन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार चुनना होता है। जैसे रेडियो में करियर के लिए रेडियो जॉकी, जिसे हम आरजे के नाम से जानते हैं, यह सबसे लोकप्रिय पद है। इसमें आपको रेडियो शो होस्ट करना होता है, संगीत बजाना, श्रोताओं से बातचीत करना और चुटकुले या समसामयिक विषयों पर अपने विचार साझा करना होता है। पॉडकास्ट होस्ट या प्रोड्यूसर, ऑडियो कंटेंट की बढ़ती मांग के साथ पॉडकास्टिंग तेजी से उभर रही है और आप किसी खास विषय पर अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं या दूसरों के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, विज्ञापनों, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों के लिए अपनी आवाज देना, चाहे तो आप इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दे सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ साउंड इंजीनियर या ऑडियो प्रोड्यूसर, जैसे रेडियो स्टेशन के तकनीकी पहलुओं को संभालना, ध्वनि की गुणवत्ता सुधारना और शो को एडिट करना भी इसके अंतर्गत आता है। मुख्य मीडिया में करियर का विकल्प हमारा होता है ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट या रिपोर्टर की। टीवी या डिजिटल मीडिया के लिए समाचारों की रिपोर्टिंग करना इसके अंतर्गत आता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूज़ एंकर की भी हमें इस मीडिया के क्षेत्र में अहम भूमिका होती है। टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो समाचार प्रस्तुत करते हैं उसे हम न्यूज़ एंकर के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में भी चाहें तो हम अपना योगदान कर सकते हैं। कॉपीराइट या कंटेंट राइटर के तौर पे विज्ञापनों, शो की स्क्रिप्ट या समाचारों के लिए आकर्षक कंटेंट लिखना भी इसके अंतर्गत आता है। इसके लिए हमारी योग्यता और कौशल की, अर्थात स्किल रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। किसी भी विषय में 12वीं पास करने के बाद आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, अर्थात बीजीएमसी या एमजेएमसी में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री कर सकते हैं। जहां तक आवाज और उच्चारण की दोस्तों बात है, तो आवाज और उच्चारण में हमें साफ साफ, अर्थात शुद्ध शुद्ध और साफ साफ होना निहायत आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो शायद हम इसमें नहीं चुने जा सकते हैं। और दूसरी एक अहम पहलू यह भी है कि व्याकरण का क्षेत्र हो या अंग्रेजी का क्षेत्र हो या स्थानीय भाषा की बात हो, तो भाषा पर पकड़ भी हमारी मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान भी हमारी होनी चाहिए, अर्थात ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे या सोशल मीडिया की समझ हमारी होनी चाहिए। करियर की शुरुआत हम कैसे करें दोस्तों? तो सर्वप्रथम करियर की शुरुआत हम स्थानीय या रेडियो स्टेशनों जैसे ऑल इंडिया रेडियो, रेड एफएम, बिग एफएम में इंटर्नशिप से शुरू कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाएं और अपने पॉडकास्ट या वॉइस ओवर के छोटे वीडियो बनाकर यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। कोर्स की तलाश, भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे IIMC, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इत्यादि विश्वविद्यालयों से हमें पत्रकारिता की जानकारी प्राप्त करनी होगी। मीडिया और रेडियो के प्रतिष्ठित संस्थानों और कोर्सों के बारे में हमें अधिक जानकारी या आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आप शिक्षा रेडियो जॉकी और AAFT रेडियो प्रोडक्शन पर आप चाहें तो लॉगिंग करके भी देख सकते हैं दोस्तों, जान सकते हैं। अस्तु, कार्यक्रम में पुनः हम आगे आपसे फिर बातचीत करेंगे। तब तक आपको सुनवाते हैं ममता ठाकुर के स्वर में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ममता ठाकुर के स्वर में ये लोकगीत। और दोस्तों हम रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद, पुनः हम आपके साथ इस कार्यक्रम में आते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं बोध नारायण सिंह के स्वर में ये लोकगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब वक्त हो चला है कुछ नए फिल्मी गीत सुनवाने का। तो कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं बंदूक और गुलाब फिल्म का यह गीत तान दीवान और राजा सिन्हा की आवाज में। बोल हैं दिलीप वर्मन के और

अभी आप सुन रहे थे एनिमल फिल्म का यह गीत विशाल मिश्र की आवाज़ में, संगीत निर्देशन विशाल मिश्र का था और बोल थे राजशेखर के। एक छोटे से अंतराल के बाद दोस्तों हम पुनः फिर लौटते हैं इस कार्यक्रम में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए, चिड़ियाखाना फिल्म का यह गीत परोमा दास गुप्ता एवं राजीव सुंदरसन की आवाज़ में, संगीतकार हैं विवेक राज गोपालन और बोल हैं अनिल पांडे के।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म का यह गीत अरमान मलिक, जहर एस खान एवं सलमा आगा की आवाज में। संगीत निर्देशन तनिष्क वागजी का था और बोल थे रश्मि भिराग के। इसी गीत के साथ दोस्तों आज के इस फिल्म संगीत कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने ही वाले हैं हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और

0: की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, गाम घर संध्या 6:30 पर तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे इसी सभा में संध्या 7:52 पर तथा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा विविधा, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ईद उल अजहा का पैगाम, इस विषय पर वार्ता। और रात्रि 9:45 पर आप सुनेंगे इंग्लिश टॉक, एक फनकार कार्यक्रम रात्रि 10:00 प्रसारित किए जाएंगे। और फिर पुनः रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे कल अर्थात बुधवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन, विषय होगा कर्म अभाग्य, आलेख होगा आलेख एवं वाचन होगा सुरेंद्र झा का। कृषि चर्चा आप सुनेंगे 5:55 पर, इसके अंतर्गत हमारा चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वार्ताकार होंगे गोपी चंद्र झा। स्वास्थ्य चर्चा आप सुनेंगे प्रातः 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर। रामचरितमानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे और तथा नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत दिन के 11:00 प्रसारित किए जाएंगे, इसमें आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार होंगे रोनू मजुमदार एवं किशन

दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30। दोपहर 12 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। नारी संसार कार्यक्रम 12:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। दोपहर 1:10 पर समय होगा हमारा देशभक्ति गीत का और 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रोजगार सूचना दोपहर 2:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और पुनः 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। तीन बजे आप आनंद लेंगे सुगम संगीत का और शाम 5 आप सुनेंगे युवानी कार्यक्रम। 6:10 पर विद्यापति गीत प्रसारित किए जाएंगे और 6:30 पर आप सुनेंगे काम घर कार्यक्रम। खेती गृहस्थी शाम 7 प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल अर्थात बुधवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं गौतम मिश्रा।

अभी आप समवेत स्वर में ये विद्यापति गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं काशीनाथ झा किरण के स्वर में।

0: अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। कलाकार थे काशीनाथ झा। किरण प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: रेनबो पटना से प्रस्तुत है संवाद, संवादक संग हम छी प्रियंका मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला NDA सरकार 12 वर्ष पूरा कैलक है। एहि अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन कहलनि जे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार सम्हारबाक बाद सँ देश अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एकटा नव सांस्कृतिक पुनर्जागरणक ऐतिहासिक क्षण देखलक अछि। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सरकारक सुशासन और राष्ट्र प्रथमक भावना सँ प्रेरित पिछला 12 वर्षक कार्यकाल सँ एकटा ऐतिहासिक यात्रा कहलनि अछि। भाजपा अध्यक्ष कहलनि जे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयासक मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांतक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एकटा नव दिशा दिलनि अछि। सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहिल कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहल रामकृपाल यादव कहलनि जे श्री मोदी अद्भुत क्षमताक धनी छथि। श्री यादव कहलनि जे एहि 12 वर्ष में प्रधानमंत्री के निर्णय सबसँ देश कठिन परिस्थिति में विकासक पथ पर अग्रसर रहल अछि। निर्वाचन आयोग विधानसभा कोटा सँ भरल जाय वाला बिहार विधान परिषदक रिक्त भेल 9 सीट सब पर द्विवार्षिक चुनावक लेल तिथिक घोषणा कैलक अछि। आयोगक विज्ञप्तिक अनुसार एहि सीट सब पर चुनाव 18 जून के कराओल जायत। एहि दिन साँझ खन मतगणना सेहो कयल जायत। विस्तृत कार्यक्रमक अनुसार 1 जून के अधिसूचना जारी होयत। 8 जून धरि नामांकन दर्ज कराओल जा सकैत अछि, जखन कि 11 जून नामांकन आपसक अंतिम तिथि अछि। उल्लेखनीय अछि जे डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षद सभक कार्यकाल 28 जून के पूरा भऽ रहल अछि। एम्हर आयोग पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक इस्तीफा सँ रिक्त भेल विधान परिषदक एकटा सीटक लेल उपचुनाव सेहो 18 जून के करेबाक घोषणा कैलक अछि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहलनि जे NDA के घटक दल जल्दीए उम्मीदवारक अंतिम फैसला कऽ लेत आ प्रत्याशी सभक घोषणा सेहो जल्दीए कैल जायत। जे जदयूक वरिष्ठ नेता आ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी दावा कयलनि अछि जे विधान परिषदक सबटा 10 सीट NDA के खाता में आओत। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकार सबसँ गपशप करैत ओ कहलनि जे संख्या बल आ नैतिक बल दुनू NDA लग अछि। हिंदुस्तान आवामी के संरक्षक आ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आगामी विधान परिषद द्विवर्षीय चुनावक लेल एकटा सीटक मांग कयलनि अछि। श्री मांझी पत्रकार सबसँ गपशप करैत कहलनि जे हम के पार्षद चुनाव में सीट भेटला से गठबंधन के लाभ होयत। भवन निर्माण सह मधुबनी जिला प्रभारी मंत्री लेसी सिंह DRDA सभागार में जिला में बाढ़ आ सुखाड़क चुनौती सब से निपटवाक लेल पूर्व तैयारीक समीक्षा कयलनि। श्रीमती सिंह अधिकारी सब से बाढ़ सुखाड़ स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना के लऽ कऽ तैयारी पूरा करबाक निर्देश देलनि अछि। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र

0: कुमार सहित कतेको विभागक वरीय अधिकारी उपस्थित छलाह। आई गंगा दशहरा अछि। एहि पावन अवसर पर सिमरिया घाट में हजारों श्रद्धालु सब आस्थाक संग गंगा स्नान कयलनि। भोरै सँ घाट पर श्रद्धालुक भीड़ देखल गेल, जतय लोक सब पूजा अर्चना दान पुण्य आ गंगा मैयाक आराधना में जुटल रहलथि। आईपीएल क्रिकेट में आई प्रथम क्वालिफायर मुकाबला खेलल जायत। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुक सामना गुजरात टाइटन्स सँ होयत। ई मैच धर्मशाला में सांझ 7:30 बजे सँ शुरू होयत। एहि मुकाबलाक विजेताक टीम सीधे फाइनल में पहुँचताह। सहरसा जिलाक पतरघट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर हाट सहित कतेको स्थान सब पर प्रतिबंधित थाई मांगुर माछक बिक्री रोकबाक लेल जिला मत्स्य पदाधिकारीक नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाओल गेल। एहि मध्य भारी मात्रा में प्रतिबंधित माछ सेहो जब्त कयल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

गाम घरक श्रोता लोकनिक गोपी भाई के नमस्कार। आजुक दिन मंगल अच आ मंगल के दिन हम सब नव ऊर्जा कार्यक्रम के प्रसारण करित छी। तो नव ऊर्जा कार्यक्रम के जो युवा श्रोता लोकन छथि उनका एक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। देखियो युवा लोकन, आजुक जे दिन है अहाँ के मंगल है आ मंगल के हम सब बजरंगबली के आराधना करै छी, हुनक छै से पूजा पाठ करै छी। आ जै ठाम स्वच्छता होइत अछि ओहि ठाम ईश्वर के वास होइत अछि। स्वच्छता एकटा पैघ सामाजिक जिम्मेवारी अछि जे एक दोसरक पूरक थिक। व्यक्तिगत साफ सफाई से लऽ कऽ सार्वजनिक स्थान के स्वच्छ रखनाय सब नागरिकक पहिल कर्तव्य थिक। इमे जे ई जिम्मेदारी ने मात्र बीमारी से बचाबैत अछि परंच एकटा स्वस्थ समृद्ध और विकसित समाजक नींव राखैत अछि। साफ सफाई रखला से मलेरिया, डेंगू और डायरिया जेहन संक्रामक बीमारी के खतरा कम भऽ जाइत अछि। एकटा स्वच्छ और हरल

सकैत अछि, परञ्च एकटा स्वस्थ, समृद्ध आओर विकसित समाजक नींव राखैत अछि। साफ सफाई रखलासँ मलेरिया, डेंगू आओर डायरिया जेहन संक्रामक बीमारीक खतरा कम भऽ जाइत अछि। एकटा स्वच्छ आओर हरल भरल वातावरण शारीरिक स्वास्थ्यक सङ्ग सङ्ग मानसिक आओर भावनात्मक तनावके सेहो कम करैत अछि। स्वच्छता मात्र व्यक्तिगत आदत नहि थिक, परञ्च एकटा नागरिक कर्तव्य सेहो अछि। एकर द्वारा समाजमे बीमारीके पसरैसँ रोकल जाइत अछि आओर स्वस्थ, सुरक्षित आओर सुन्दर वातावरणके निर्माण होइत अछि। समाजक सबटा सदस्य, विशेष रूपसँ नेना भुटका आओर बुजुर्गके संक्रामक रोगसँ बचाबैत अछि। कचराके उचित ढंगसँ निपटान हेबाक चाही, ओकर निस्तारण हेबाक चाही। पॉलिथीनक उपयोग नहि केनाइ आओर जल स्रोतके दूषित होइसँ बचेनाइ ई परम कर्तव्य थिक। दोसरके एहि गपके लेल प्रेरित केनाइ कि स्वच्छता अभियानमे सक्रिय भागीदारी करैत, सार्वजनिक स्थान पर नहि थुकनाइ, कूड़ा मात्र डस्टबिनमे डालनाइ आओर खुलामे शौचसँ बचनाइ, स्थानीय साफ सफाईक जे कर्मचारी छथि हुनका सम्मान केनाइ। जँ हम साफ सफाई कर्मचारीके सम्मान करै छी तऽ बुझि लिअ कि हम ईश्वरक सम्मान करै छी। आओर अपन मोहल्ला गलीमे सफाई व्यवस्था बनाके रखने, व्यवसायी वर्ग द्वारा स्वच्छ कार्यस्थल आओर पर्यावरण अनुकूल प्रथाके अपनाकऽ सामाजिक जिम्मेदारी निभाओल जाइत अछि। ई सामूहिक प्रयास हमरा लोकनिके एकटा बेहतर आओर प्रगतिशील समाजक दिस लऽ जाइत अछि, जे स्वच्छताके अपनाकऽ सुख, समृद्धि आओर सर्वांगीण विकासक आधार बनैत अछि। हम कहि सकै छी कि वास्तवमे स्वच्छतेमे ईश्वरके वास अछि। महात्मा गांधी एहि विचारके प्रबल समर्थक छलथि हँ आओर मानै छलथि हँ कि शुद्ध मन आओर स्वच्छ परिवेशके बिना ईश्वरके आशीर्वाद प्राप्त केनाइ सम्भव नहि अछि। आ ई विचार अहाँके अपन दैनिक जीवनमे कई स्तर पर एकटा मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करैत अछि। जँ हम आसपास स्वच्छ राखै छी, अपने आपके स्वच्छ राखै छी, तऽ बीमारीसँ बचै छी। नियमित रूपसँ हाथ धोनाइ, लग पासके सफाई रखनाइ, कचराके उचित निष्पादन अहाँके परिवारके कीटाणु आओर मौसमी बीमारीसँ बचाबैत अछि। सकारात्मक ऊर्जा, एक साफ सुथरा घर आओर कार्यस्थलमे मानसिक शांति आओर सकारात्मक ऊर्जा भेटैत अछि। नकारात्मक ऊर्जा ओहिठुमा टिक नहि सकैए। आ बाहरी स्वच्छता मनके शांत करैमे मदद करैत अछि, जे कोनो आध्यात्मिक साधना आ ईश्वरक आराधनाक लेल बड आवश्यक अछि। तऽ स्वच्छतामे ईश्वरक वास अछि, आ जाहिठाम ईश्वरक वास अछि ओहिठाम शांति, समृद्धि अछि। आ स्वच्छ वातावरणमे रहै छी तऽ विचारो स्वच्छ होइए। हम सबके लेल नीक सोचै छी, नीक करै छी, अदला गपसँ बचै छी। आ जखन विचार शुद्ध होइए, चिंतन शुद्ध होइए, तऽ कर्म निश्चित रूपसँ सकारात्मक होइए। आ एहन कर्म परिवार, समाज आ राष्ट्रके निर्माणमे पैघ योगदान दैए। तऽ श्रोता लोकनि, हमसब आगू गपसप करब, मुदा ओहिसँ पहिने किया नहि एक गोट गीत सुनली।

0: सखी हे करियो मैया के ध्यान, वास्तव में माँ का ध्यान हुनक अर्चना, हुनक प्रति समर्पण, यह जीवन का सकारात्मक दिशा दैया और मानव जीवन का सार्थक करे। ये गीत हम सब कुंज बिहारी मिश्र को स्वर में सुने चलो हैं। अब हम सब छोट छीन विराम ले छी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

छोटछिन विरामक उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई। एखन श्रोता लोकनि देख रहल छी कि पल पल मौसम बदल रहल अछि। राति में कते झमटगर आंधी तूफान आयल आ मौसम आब किछ गर्मी में कम लग रहल ये। एक दू दिन पहले गर्मी खूब छल, तब बदलित मौसम में और तापमान में जो कमी बेसी होइया, इसमें शरीर को कोना रक्षा करी आ शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कोना मजबूत करी, एलेल आवश्यक है कि खान पान आहार विहार जो हुआ वो संतुलित हुआ और मौसम के ध्यान में रखित खान पान हुए। इस समय में वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण से बचवा के लेल बेसी से बेसी जल पीबी, मौसमी फल खाए, संतुलित आहार ली, योगाभ्यास करी आ कम से कम 15 मिनट आधा घंटा टहली और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाकर राखी, हाइड्रेटेड रही, पर्याप्त मात्रा में जल पीबी। मौसम ए मौसम या ना कोनो मौसम हुआ शरीर में जल का कमी नहीं होती। जो भोर में जल का किछ गर्म कह के आ में 5 बूंद नींबू दौ के पीबे छी तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो आ शरीर में अपूर्व ऊर्जा का संचार हो। और टटका फल निश्चित रूप से खेबा के चाहिए, मौसमी फल आ अपन आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जेना नेबू भेल, संतोला भेल, आंवला भेल, हरियर तीमन तरकारी भेल ओकरा शामिल करी। मौसमी ताजा फल और संतुलित भोजन से स्वास्थ्य नीक रहिए। और दोसर गप ई अछि कि तनाव के दूर राखी, सकारात्मक सोच और चिंतन राखी। कहलो गेल अछि कि परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। दोसर के हित करे से बेसी कोनो धर्म नहीं अछि। आ दोसर के जे हम अदला करे छिए, दोसर के बारे में जे हम अहित सोचे छिए, तो अइ से पै कोनो पाप नहीं अछि। तो जो हम अपने खुश रह चाहे छी, प्रसन्न रह चाहे छी, स्वस्थ रह चाहे छी, तो जे आसपास का वातावरण अछि ओकर साफ सफाई के संग संग जे अपन विचारक शुद्धता अछि, जे विचार के साफ सफाई अछि ओहो रखबा के चाहिए, ओहो करबा के चाहिए। जेना लोटा के माजे छी तो लोटा में चमक चलि आबै छै, ओनाही विचार के जो हम नीक विचार सब ओकरा माजबे तो शुद्ध चिंतन हैत, शुद्ध विवेक जागत आ जे अहाँ के जीवन के सर्वांगीण विकास का आधार बनत। बदलित मौसम में बरसात और उमस में बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण का खतरा बेसी रही है। बाहर से एला पर हाथ का साबुन से नीक जना धोबा के चाहिए और निश्चित धोबा के चाहिए। खान पान में सावधानी, घर के बनल टटका और सुपाच्य भोजन करी, बाहर का कटल फल या स्ट्रीट फूड खेबा से बचवा के चाहिए। अब प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम योग अभ्यास केला से शरीर का रक्त संचार बेहतर होइया आ ऊर्जा का जे स्तर अछि वो बनल रहिए। और पर्याप्त नींद लेबा के चाहिए। अब जब रात में भोजन कोकस भोजन करे छी तो कम से कम आधा घंटा निश्चित रूप से टहलबा के चाहिए। ओकर बाद अहाँ घर आबू आ घर में तलवा में कम से कम छे से अहाँ के 5 मिनट छे से करवा तेल से दोनों तलवा का मालिश करवा के चाहिए। आ ओकर बाद भगवान का ध्यान करे जहाँ चल जाए छी बेड पर आ तखन छे से नींद अहाँ के नीक आबी। एक व्यस्त का स्वस्थ रहे लेल कम से कम 7 से 9 घंटा के नीक नींद हेबा के चाहिए, जैसे इम्यून सिस्टम मजबूत होते छे। तो बदलित मौसम में अहाँ के तेज बुखार, लगातार खांसी या कोनो आन गंभीर लक्षण दिखाई दे तो घर पर रहे के बजाय तुरंत चिकित्सा, तुरंत जो विशेषज्ञ चिकित्सक छथि हुनका से सहायता ली। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के सलाह के लेल अहाँ निश्चित रूप से हुनक फोन नंबर राखी आ हुनका से भेंट कऽ के अपन जे अहाँ के परेशानी अछि वो बतबियौन आ ओकर

से वो दवाई करता, ओकर इलाज करता। आ ओनाही अछि कि अहाँके तन मन के स्फूर्त करे लेल, तन मन में ऊर्जा जगाबे लेल, तन मन के शांत करे लेल गीतनाद बड़ आवश्यक अछि। आजुक जे समय अछि ओहिमे तऽ म्यूजिक थेरेपी के द्वारा गंभीर बीमारी के इलाज कयल जाइत अछि। तऽ किया न हमसब शारदा सिन्हा के स्वर में एक गोट झूमर सुनी।

शारदा सिन्हाके स्वरमे ई झूमर सुनै छलहुँ हम। श्रोता लोकनि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकारके एकटा प्रमुख कौशल विकास योजना अछि। एहि योजनाके उद्देश्य थिक युवा लोकनिके मुफ्त उद्योग, प्रासंगिक प्रशिक्षण आओर प्रमाणन प्रदान कऽ हुनक आजीविकामे सुधार केनाइ। ई योजना विद्यालय छोड़ैवला आओर बेरोजगार युवकके रोजगार योग्य बनाबैत अछि। हमसब जानै छी कि युवा लोकनिमे अथाह ऊर्जा होइत अछि आ भारत देश जे अछि ओहिमे तऽ 65% बेसी जे छै ओ युवा छथि। हम कहि सकै छी कि भारत युवा लोकनिके देश अछि। तऽ युवा लोकनिके ऊर्जाके केना छै से ओकर सदुपयोग कयल जाय, एहि लेल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जे अछि एकटा पैघ योजना अछि। एहिमे अहाँके मुफ्तमे विभिन्न उद्योगक मांगक अनुसार युवा लोकनिके मुफ्त अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान कयल जाइत अछि। आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा केला पर उम्मीदवार के औसतन 8,000 के मौद्रिक पुरस्कार छात्रवृत्ति टका देल जाइत अछि हुनका, आर संगे संग प्रमाण पत्र सेहो देल जाइत अछि। प्राप्त कौशल का आधिकारिक प्रमाण पत्र देल जाइया जे देश भरि में मान्य होइया। प्लेसमेंट सहायता के माध्यम से युवा लोकनि के नौकरी खोजे में मदद कयल जाइत अछि। आर एकर जे पात्रता मानदंड अछि, आवेदक के भारतीय नागरिक हेबाक चाही, आयु सीमा 15 से 45 वर्ष के बीच हेबाक चाही, आवेदक या तो बेरोजगार युवा हेबाक चाही या स्कूल कॉलेज के पढ़ाई बीच में छोड़े वाला हेबाक चाही, आधार कार्ड, बैंक खाता और आन वैध पहचान पत्र अनिवार्य अछि। आ ए योजना के अंतर्गत जे प्रमुख अहाँके कोर्स अछि ओ अछि कि हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म, दोसर अछि रिटेल, तेसर अछि प्लम्बिंग, ओकर बाद अछि अहाँके लाइफ साइंसेज, ओकर बाद अछि एंटरटेनमेंट और मीडिया। आवेदन एहि प्रकारे करी, सबसे पहले आधिकारिक जे ओकर वेबसाइट अछि स्किल इंडिया डिजिटल पर जाय, अपन मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उपयोग कर अपन पंजीकरण करी। एक बेर फिर से सुन लिया, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट जे एकर अछि स्किल इंडिया डिजिटल पर जाय, अपन मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उपयोग कर अपन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा ली, अपन नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र का पता लगाबी, अपन रुचि और उद्योगक मांग के अनुसार एकटा कोर्स चुन ली। योजना और एकर जे प्रशिक्षण जे मॉड्यूल अछि एहि के बारे में बेसी जानय लेल अहाँ ओकर वेबसाइट पर जाकर जान सकै छी। आ संगे संग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में मुफ्त में ट्रेनिंग तो भेटबे करैया, आ 8,000 का जे स्टाइपेंड छात्रवृत्ति सेहो भेटैया, जाहिसँ जे बेरोजगार युवा छथि उनका उत्साहवर्धन होइ छन्। आ परीक्षा उत्तीर्ण केला पर मौद्रिक पुरस्कार रिवार्ड सेहो देल जाइए। आ कोनो कोर्स के लेल कोनो फीस सेहो नहि लेल जाइए। कोई कोनो विशेष शॉर्ट टर्म और आधुनिक कोर्स जेना AI भेल, ड्रोन भेल, रोबोटिक्स भेल, ओकरा सफलतापूर्वक पूरा केला पर, परीक्षा पास केला पर सरकार द्वारा 500 से लेकर 8,000 तक के इनाम और छात्रवृत्ति देल जाइत अछि। आ जँ अहाँ अपन नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र कोर्सक सूची और अपना लेल उपलब्ध आर्थिक लाभ के पूरा जानकारी प्राप्त करय चाहै छी, तऽ अहाँ स्किल इंडिया डिजिटल के जे आधिकारिक वेबसाइट अछि ओहि पर जाकर चेक कऽ सकै छी।

तो ऐसे की है कि यहाँ अपन प्रशिक्षण प्राप्त करो, आप प्रशिक्षण प्राप्त करो तखने छे से बेसी उत्पादन को के देश के दो सके छी। मानवीय संसाधन बड़ पैघ संसाधन है। जापान एकटा एहन देश है जैठाम कोनो प्रकार का प्राकृतिक संसाधन जे बहुत कम मात्रा में है। प्राकृतिक आपदा बेसी आबत रही, बाढ़ आयल, भूकंप आयल, संगे संग सुनामी बराबर आबत रही है। ओय के बावजूदो जापान जे है वो विश्व में सबसे विकसित देश में एकटा है। तकर कारण ये कि ओकरा पास जे 10 करोड़ का आबादी छे ओहिमे युवा लोकन जे छथि मानवीय संसाधन पर वो बड़ बेसी जोर देने है, मानवीय संसाधन के विकसित करे पर। कमे उम्र से 8 साल 9 साल से बच्चा के जे प्रतिभा है ओकर पहचान क ओकरा चिन्हित क ओकरा चिन्ह क ओकरा से विशेष कोर्स कराएल जाइए, ओकर खान पान आहार विहार पर विशेष ध्यान देल जाइए ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, आ ओकरा शिक्षित प्रशिक्षित क क अय योग्य बनाएल जाइए कि वो बेसी से बेसी उत्पादन क क देश के दिए। परिणाम स्वरूप जापान एकटा छोट द्वीपीय देश है मुदा उत्पादन में वो विश्व में अहाँ के प्रथम स्थान रखिए। तो कहबा का अभिप्राय ये कि मानवीय संसाधन तखने विकसित हैत जखन कि ओकरा ओकर खान पान पर ध्यान देल जात, ओकरा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ आरोग्य शक्तिशाली बनाएल जात आ संगे संग ओकरा शिक्षित और प्रशिक्षित कयल जात। जब वो शिक्षित भ जाइए प्रशिक्षित भ जाइए तो वो अपन समय का सदुपयोग करत और ओकरा में तकनीकी कौशल चल लेते कि वो बेसी से बेसी उत्पादन क के देश और समाज को दे सकिए। और देश समाज पर श्रोता लेकिन वो बोझ नहीं है बल्कि कि देश और समाज के लिए वो वरदान है। वो बेसी से बेसी उत्पादन क के देश और समाज का आवश्यकता का पूरा कर सकिए और समाज और देश का आगू बढ़ा सके। संगे संग कि युवा लोकन का शिक्षण और प्रशिक्षणक संग संग व्यावसायिक प्रशिक्षणक संग संग नैतिक शिक्षा सेहो देबाक चाहिए, किछु जे अहाँके मोरल लेसन अछि ओ निश्चित रूप से देबाक चाहिए ताकि हुनका ई बुझाए कि हमरा लेल हमर समाज लेल हमर राष्ट्र लेल कोन गप अदला अछि आ कोन गप नीक अछि, कोन गप में छै से समाज के विकास हैत, हमरा हमर विकास हैत सर्वांगीण, परिवार के विकास हैत, राष्ट्रक विकास हैत, आ कोन काज नहीं करी जैसे कि समाज का परिवार का राष्ट्रक के क्षति नहीं हुए। तो एहिलेल कि अहाँ के नैतिक ज्ञान बड़ आवश्यक है। हम सब बच्चा में पढ़ी नैनपन में नैतिक ज्ञान के किताब हमरा सब के पढ़ पड़े छला। तो नैतिकता का जैसे अहाँ के आरोपण युवा लोकन में बड़ आवश्यक है। एक संगे आजुक जे गाम घर के समय है वो सम्पन्न भ रहा है और हम सब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली। तो किसान भाई लोकन का खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। किसान भाई लोकन हम सब किसान छी आ अदो काल से खेती बाड़ी के संग संग माल जाल का पोषण सेहो करैत आबि रहल छी। आ ई खेती बाड़ी केनाई आ माल जाल का पोषण केनाई ई एक दूसरक पूरक थी। जो खेती बाड़ी में आय किछ कम भेल तो माल जाल का आय से क्षतिपूर्ति भ जाइए। तो माल जाल में होय वाला सामान्य रोग जे जेना खुरपका, मुँहपका, थनैला, गलघोटू, मिल्क फीवर, ए बीमारी सबसे बचावक लेल समय पर टीकाकरण करेबाक चाहिए। जो माल जाल बीमार हुए तो घाव के पोटास या फिनाइल से साफ करी, ओकर थन के साफ राखी आ तुरंत लग पास में कोनो पशु चिकित्सालय से संपर्क करी। खुरपका और मुँहपका जे रोगक लक्षण अछि ओहिमे माल जाल के तेज बुखार भ जाइए, मुँह से लार टपक लागे गिरय लगैए, खाना वो माल जाल छोड़ दैए आ खुर में घाव और सूजन भ जाइए। एकर उपचार अछि कि पैर के घाव के लाल पोटास या नीम के पात के काढ़ा से धोकर धो दी, माछी से बचावक लेल एंटीसेप्टिक मलहम लगा दी, मुँहक छाला के लिए फिटकिरी के

शब्दक उपयोग करी। दोसर बीमारी अछि थनैला, थनमे सूजन और करापन, दूधक रंग बदलनाय और दूधमे थक्का जमनाय। थनके पहिले तऽ साफ सुथरा कयल जाइत अछि आ संगे संग साफ सुथरा केलाके बाद ओकर जे अछि कि ओकरा साफ सफाई हेबाक चाही और ओकर दवाई के जे छै ओकर दवाई हेबाक चाही ताकि छै से ओ जल्दी से जल्दी स्वस्थ भ जाय। आ लग पास में जँ कोनो अहाँके पशु चिकित्सालय अछि तऽ पशु चिकित्सालय से संपर्क निश्चित रूप से करबाक चाही। ऐसे की हैत कि अहाँके मालजाल जे अछि ओ एहि रोग से बचत। आगू हम सब गपशप करब मुदा ओहिसँ पहिने एकटा गीत सुनि ली।

0: सखी है रुसल छे बंभोला हुनका कोना मनायब न। ये सुंदर नचारी नंदशंकर झा के स्वर में सुने छलो हैं। बड़ नीक नचारी छल। वास्तव में भोला बाबा जे छथि हुनका मनावे लेल बेसी जतन नहीं कर पड़ी है। जँ शुद्ध मन से हुनक ध्यान करे छी, हुनक भजन करे छी, तो निश्चित रूप से ओ मान जाय छथि। आ देखियो किसान भाई लोकन, जो हम सब खेती बाड़ी जे करे छी, तैसे पहिने मौसम के जे पूर्वानुमान अछि ओ निश्चित रूप से हमरा सबके जानबाक चाही। मुदा ओहिसँ पहिने हम छोट छिन विराम लेब।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: छोटसिन विराम के उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई। तो किसान भाई लोकन, हम चर्चा करे छलो हैं कि जे हम सब खेती बाड़ी करे छी तो जे मौसम पूर्वानुमान अछि ओ हमरा सबके खेती बाड़ी काज में बड़ छै से सहायता करैए। तो हम सब मौसम पूर्वानुमान सुनी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग दिस जारी 23-27 मई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान के अवधि में उत्तर बिहार के जिला में गरज वाला मेघ बन सकैए। एकर प्रभाव से 24 सब

25 मई के लगपास बहुत रास स्थान पर हल्क वर्षा भ सकय। वर्षा के समय तेज हवा चलवा के संभावना है, जो कतौ कतौ बिजली गिरबा के अनुमान है। अवधि में सामान्य से बेसी तापमान रह सकय, जैके चलते एक दू दिन तक हीटवेव जेहन स्थिति बनि सकय। पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकय, जखन कि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के लगपास रह सकय। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75 प्रतिशत आ दुपहरिया में 35 से 40 प्रतिशत रहबाक अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि में औसतन 1822 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के अनुमान है।

आ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करवा के चाहिए। आम का जो फसल है एहि लेल सलाह देल जाइए किसान भाई लोगन के कि आम के बगीचा में लाल बेड कैटरपिलर के संक्रमण के नियमित रूप से निगरानी करें। संक्रमण के स्थिति में इनोमेक्टिन बेंजोएट एट 2 मेगाग्राम लीटर या लैम्डा साइहेलोग्रीथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर जल का घोर दी और बाद छिड़काव करी। ऐसा क्या कि बगीचा में पर्याप्त नमी बन रही है। आ लीची के लेल अच्छ किसान भाई के सलाह कि वो लीची के फल का परिपक्वता के आधार पर तोड़ित शाही किस्म कोनो छिड़काव नहीं करे के साथ सलाह दिल जाइए। तो जो हम इस सब गपशप को ध्यान में रखे तो निश्चित रूप से अहाँ के खेती बाड़ी निक जने हैत, उपजा निक जना हैत आ उपजा जो निक हैत तो ओकरा बेच के कैचा निक कमायब, टका निक कमायब आ जखन कैचा टका रहत तो अहाँ के अपने सब जैसे गीतना सुनै छी। मुदा ओहिसँ पहिने तो ये गीतना सुनल जाए।

0: विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT अजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एखन हम सब गीत सुने चलूँ महल पर कागा, शारदा सेना का स्वर्म। देखो किसान भाई लोग, गर्मी के मौसम में गाय और महिष का पाचन तंत्र कमजोर भ जाइए। जैसे ऐ समय में हीट स्ट्रेस लू से बचेबा के लिए ठंडा सुपाच्य और संतुलित आहार दाना चैर चारा और जल देवा के चाहिए। गर्मी के मौसम में माल जाल का आहार प्रबंधनक लेल जे किछ जरूरी गप अछि वो एहि प्रकारे अछि कि हरियर और सूखा चारा प्रबंधन में संतुलित अनुपात हेबाक चाहिए। गर्मी में कुल चारा के 2/3 भाग माने 2/3 भाग ओकर भूसा सूखल चारा और 1/3 भाग हरियर चारा हेबाक चाहिए। 2/3 भाग सूखल चारा और 1/3 भाग हरियर चारा हेबाक चाहिए। हरियर चारा के महत्व, हरियर चारा पशु के जे डिहाइड्रेशन है जलक कमी से बचाबे। गर्मी में जई मकई लोबिया या अहाँ के बाजरा के हरियर चारा दी। चराबे के समय माल जाल के दोपहर के डकहा रोद में चिचिलाइत रोद में बाहर नहीं निकाली, हुनका भोर में आ साँझ के ठंडा समय में चारागाह में लौ जाए। दाना मिश्रण और पौष्टिकारक आहार में जे भिजल दाना या अनाज के खली के ओकरा बराबर मोटगर पिसवाबी और कम से कम 2-4 घंटा जल में भिजा कर आ तखन खुआबी। ऐसे दाना की हो जाए कि मालजाल का आसानी से पच जाए। दलिया और ठंडा आहार में गर्मी में पाचन में आसान दलिया जना जौ गहूँ मकई चोकर और बूटक छिलका उत्तम रहिए। गर्म तासीर वाला अनाज का मात्रा सीमित रखी। खनिज और नमक में आहार में मिनरल मिक्सचर जिया और सादा नून वो नियमित रूप से मिला भी। नून से पशु के बेसी प्यास लगैया और वो बेसी जल पीबे। पीबे के जे जल है वो ताजा और ठंडा हेबा के चाहिए। गर्मी के दिन में माल जाल के दिन में कम से कम 3-4 बेर साफ टटका और ठंडा जल पिया भी। जल के टंकी के बराबर छायादार स्थान पर रखी। आ नून और मैदा का घोल जौ पशु कम खा पी रहा तो ओकरा पीबे के जल में कनिये नून और मैदा घोल का ओकरा पियाबी। हीट स्ट्रेस लू से बचाव करे लेल ओकरा ठंडा जगह पर राखी। माल जाल के सोझे रौद से बचावे के लेल हवादार और छायादार शेड में ओकरा बांध कर राखी। शेड में पंखा और कूलर के व्यवस्था करी। जलक छिड़काव दूध दे वाला पशु विशेषकर महीस जकरा गर्मी बेसी लागैया के दिन में 3-4 बेर ओकरा नहाबी। महीस के जल के कुंड या पोखरि में रहे के ओकरा सुविधा दी। तो ई सब जे गप के ध्यान में राखब तो निश्चित रूप से जे माल जाल के पोषण अछि वो अहाँ के नीक जना

हैत, माल जाल के रक्षा हैत, आ जँ ओ सुरक्षित रहता तो निश्चित रूप से अहाँ के बेसी से बेसी दूध उत्पादन क के देता छे। आखिर देखे छे कि बाजार में कते दूध के मांग है, जतेक मांग है ओते के आवश्यकता हम पूरा हम सब नहीं कह पाबे छी, ताहि लेल जरूरी है कि माल जाल के देखरेख करी। अही गप के संगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबाक अछि। खेती गृहस्थी कार्यक्रम से गोपी भाई के आज्ञा दिया, नमस्कार।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष किए पूरे। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं समेत विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किया। पुस्तक में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर निर्णय देश की प्रगति और विकास के लिए लिया है।
1: आज 26 मई

0: ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर निर्णय देश की प्रगति और विकास के लिए लिया है।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहे रामकृपाल यादव ने कहा कि श्री मोदी अद्भुत क्षमता के धनी हैं। श्री यादव ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के निर्णयों से देश कठिन परिस्थितियों में विकास पथ पर अग्रसर रहा है।
2: कोरोना के काल से निकाल करके हिंदुस्तान की आवाम को आगे ले जाने का काम, पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत और क्षमता रखने का काम, ये मोदी के कुशल नेतृत्व का ही तो परिणाम है जो 12 साल का है। एक नहीं अनेकों काम किया है, तो कई ऐसे इशू थे जिस इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया है और देश आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए उनको बहुत सारी शुभकामना, बधाई, स्वस्थ रहें और देश के सेवा करते रहें।
0: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश की बड़ी ताकत है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहली बार शपथ लेते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया था, उसी संकल्प को वे पूरा करने में जुटे हुए हैं।
3: 12 वर्ष हुए हैं, ठीक 12 वर्ष पूर्व 26 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शपथ लिया था और उस शपथ को पूरा होते देख, उस संकल्प को पूरा होते देख हम आज देख रहे हैं। 12 वर्ष पूर्व हमारे देश को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज हम टॉप 5 की ओर तीव्रता से अग्रसर होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 12 वर्ष का जो वर्षगांठ है, ये हमें एक मौका देता है, समय देता है कि हम इसका मूल्यांकन करें और इन बातों को जन जन तक लेकर के जाएं।
0: केंद्र सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री शाह ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति देश भर में घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से जनसांख्यिकीय बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को ही कराए जाने की घोषणा की है। जदयू की वरिष्ठ नेता और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने दावा किया है कि विधान परिषद की सभी 10 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संख्या बल और नैतिक बल दोनों एनडीए के पास है।
4: जिस तरह से हम लोग के एनडीए की गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से बंगाल का जो रिजल्ट आया उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लें।
0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए के घटक दल जल्द ही उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला कर लेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी।
5: एनडीए मिलकर जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और एनडीए एकजुट है और जल्द ही प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए 1 सीट की मांग की है। श्री मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमको परिषद चुनाव में सीटें मिलने से गठबंधन को फायदा होगा।
6: हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है, हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा

0: होगा, इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें।
1: राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री सरावगी ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के मुख्य रस्म को पूरा कर रहे हैं। बिहार के 2552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 175,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकतर स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
5: दिनांक 27 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि आंधी के कारण अलीगंज स्थित आकाशवाणी का टावर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। हालांकि FM और न्यूज ऑन AIR ऐप से समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण सुना जा रहा है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। एक रिपोर्ट।
6: रोजगार मेले का आयोजन 25 मई से शुरू हुआ है, जो 27 मई तक जारी रहेगा। मेले के पहले दिन कल 13,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। इनमें 1,876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया। मेले के दूसरे दिन आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मेले में आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार की यह अच्छी पहल है।
7: भरोसेमंद

0: मिला है के तहत हम लोग को काफी सारे रोजगार के अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई भी कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई आईटीआई किया है वो उसको भी जॉब मिल रहा है, और कोई अगर कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे हमें काफी अच्छा अनुभव हो।
1: रोजगार मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने से खुशी का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से प्रियंका मिश्रा।
2: पटना ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेंस T20 ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। मोइनुल हक स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पटना की टीम ने बेगूसराय को 23 रन से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीयूष सिंह के धुआंधार 92 रन की बदौलत पटना ने 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। जवाब में बेगूसराय की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना के गांधी घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है, ऐसी घटना फिर से ना हो इसके लिए घाट पर एक विशेष टीम तैनात कर दी गई है। भवन निर्माण मंत्री सह मधुबनी जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने आज DRDA सभागार में जिले में बाढ़ और सुखाड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को बाढ़ सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
1: सीतामढ़ी जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सीतामढ़ी जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। जिला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली, जहां लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान राज्य की उद्योग मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह भी सहयोग शिविर में शामिल होने पहुंची। उनके आगमन पर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रून्नी सैदपुर प्रखंड के अथरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का उद्घाटन करते हुए

0: ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सीधे सहयोग शिविर में आएं, ताकि प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इधर जिले में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद ठाकुर के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा तथा विपक्ष पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड स्थित महुआबा पंचायत ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है। पंचायत को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और सौर ऊर्जा आधारित नवाचारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। महुआबा पंचायत की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए इसे अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक बताया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जिले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नगर परिषद जनकपुर रोड पुपड़ी के जेई विजय शर्मा को निगरानी विभाग की टीम ने 1,45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एग्री स्टेक परियोजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी रिचि पांडे को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सम्मानित किया गया। फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत जिले में अब तक 1,80,000 से अधिक किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। सीतामढ़ी जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक जिले की 50,000 से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र

जयपुर से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं शेहरा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत निर्देशन राम लाल का है।

अभी आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म का यह गीत मुकेश एवं कंचन की आवाज में। बोल थे इंदिवर के और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म मधुमति से। गायक कलाकार हैं मुकेश, बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत निर्देशन सलील चौधरी का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म है पत्थर का सनम। गायक कलाकार हैं, बोल हैं मजरूल सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पत्थर के सनम का यह गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म एक नारी दो फूल का यह गीत। सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, बोल हैं असद भोपाली के और संगीत निर्देशन गणेश का है।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार श्रोतागण, मैथिली कार्यक्रम सिंगरहाड़क आजुक अंकक संग हम नीतू। एहि कार्यक्रमक माध्यमे आधा घंटा धरि अहाँ सबसँ गप करब। गप केलासँ विचारक आदान प्रदान होइत अछि। एक दोसरके गप केलासँ इहो होइत अछि मोनक भावना बुझैत छी, ओ की कहि रहल छथि एक दोसरके खूब नीकसँ बुझि पबैत छी। जेना कही पशु पक्षी के बोली जखन सुनै छी अपना सब, ओकरा बीच रहै छी तऽ धीरे धीरे बुझऽ लगै छै ने, पशुओ पक्षी बुझऽ लगैए हमर सबक गप आ हमहूँ सब बुझऽ लगै छी। तऽ निश्चित रूपसँ प्रकृतिके बीच रहलासँ बहुत रास चीज अपना सब सीखै छी। प्रकृति सदिखन दैते अछि, लैत नहि अछि किछु। हमहीसब ओकरा ओतेक ध्यान नहि दै छियै, ओकर पूरा गतिविधि क्रियाकलापसँ परिचित भऽ पबैत छी तखन जखन प्रकृतिके सङ्ग डेगसँ डेग मिलबै छी, ओकरा सङ्ग समय बितबै छी। मनुखक जीवन मूल रूपसँ एकटा यात्रा अछि, जन्मसँ मृत्यु धरिक यात्रा।

आर एहिमेथी कतेको पड़ावसँ होइत ई बीतैत अछि, मुदा जे यात्रा हमरासभके प्रतिदिनक जीवनसँ बाहर निकालि कऽ प्रकृतिके सान्निध्यमे लऽ जाइए, ओ यात्रा साधारण नहि होइए, ओ भीतरसँ रूपांतरित कऽ दैए, कहि सकैत छी पूर्ण रूपसँ ओ बदलि दैए अपनासभके। मोन अछि ने जे नेनपनमे अपनासभके कतेक मोन लगै छलै चिड़ै चुनमुन्नीके पकड़बाक इच्छा रहै छलै, तितलीसभके पकड़बाक इच्छा रहैत छलै। नेनपनमे प्रकृति हमरासभ लेल एकटा खेल जेना होइ छलै। कोयली आ चिड़ै चुनमुन्नीक बोली, तितलीक रंग बिरंगक पाँखि, पोखरिमे हेलैत पैघ छोट माछ, चंद्र तरेगन, भगजोगनीक इजोत, नेनपनवला अवस्थामे प्रकृतिके बुझबाक नहि ओकरा स्पर्श करबाक इच्छा होइत रहल छल, होइत रहैत छलै एना जे होइत जे ओकरा मुट्ठीमे बंद कऽ ली भगजोगनी, एतेक इजोत केना होइए एहिसँ। मतलब जिज्ञासा अतबा बढ़ि जाइत छलै जे जाबे तक केओ नीकसँ फेर छा कऽ नहि बुझबै छलथि ता धरि हमरसभक मोन नहि शान्त होइ छलै। जेना जेना बयस बढ़ैत गेल तेना तेना प्रकृतिसँ संवाद जे छै से गहीर आ स्थापित होइत गेल। ई यात्रा जीवनक हिस्सा बनि गेल। देवी देवताके रूपमे गाछ वृक्षक पूजा तऽ अदो कालसँ होइत रहल अछि, अपन सभक संस्कृति आ परम्परामे ई सम्मिलित अदो कालसँ रहल अछि। आ प्रकृतिके चित्रण कवि आ रचनाकार लोकनि अपन रचनासँ चित्रित कयलनि। प्रकृतिके वर्णन, प्रकृतिके सौन्दर्य, कोनो फूलके सुन्दरता देखि कऽ एतेक नीकसँ ओ वर्णन करैत छथि जे होइत रहैए जे ओ रचना बेर बेर पढ़ी। काव्य अपन छोट आकार आ गे हेबाक कारणे सुनबा आ स्मरण रखबामे आसान होइत अछि। ओ एहन चित्रण करैत छथि जाहिसँ कि दृश्य उपस्थित भऽ जाइत अछि। रचनाकार लोकनि अपन रचनासँ एहन तरहक रचना करैत छथि जाहिसँ कतौ अहाँ रही अहाँके ओ कल्पनामे अपनासभ डूबि जाय, ओ दृश्य अहाँके समक्ष आबि जायत। काव्यक विषय वस्तु आ रचना विधान अपन युगक प्रयोजनक अनुकूल निर्धारित होइत रहल अछि। काव्यक माध्यमसँ कविक भाव आ विचार व्यक्त होइत अछि, गीतक माध्यमे सेहो होइत अछि, ओहो अपन भाव व्यक्त कयल जाइत अछि, स्पष्ट कयल जाइत अछि। आ कोनो गीत जखन अपनासभ सुनै छी तऽ ओ गीतकारके विशेष रूपसँ ओहि रचनाकारके मोन पाड़ै छी जे कतेक नीक ई गीत लिखल गेल अछि। आ जखन वास्तवमे जखन माँ भगवतीके वा देवी देवताके अपनासभ ध्यान करै छी तऽ ध्यान करबाक क्रममे हुनका जखन घुरबै छी तऽ भजनसँ नीक तऽ किछु नहि भऽ सकैए, तऽ हुनकर आराधनामे, भगवतीक आराधनामे अपनासभ मोन एकदम समर्पित भऽ कऽ भगवती गीत सुनै छी। तऽ कार्यक्रममे सुनी अपनोसभ ई भगवती गीत।

हाँ तो श्रोतागण, अखन जे भगवती गीत सुने छलहुँ ओ समवेद स्वर में सुने छलहुँ, तऽ माँ भगवती के आराधना आ पूजा तऽ सदिखन करैत आबि रहल छी अपना सब। आ हुनकर पूजा के बिना, हुनकर आराधना के बिना कोनो टा संकल्प सिद्ध नहि भऽ सकैत अछि। तऽ कार्यक्रम में जखन अपना सब अपन भगवती

0: गीत के मनबै छी तऽ इएह आशा करै छी जे कार्यक्रममे अहाँ सब बनल रही आ कार्यक्रम सुनैत रही तऽ कार्यक्रम केहन लगैत अछि ओहो अपन सुझाव अपन प्रतिक्रिया अवश्य पठाबी। तऽ जखन गीतनाद बिसरि जायब तऽ संस्कृतिके ह्रास भऽ जायत, क्षरण भऽ जायत, पहिचाने लुप्त हुअ लागत। हमरा लोकनि जखन नैना छलहुँ तखन मातामही पितामही वर्गक स्त्रीगणके सब अवसर पर विशेष प्रकारक गीत गबैत सुनियनि। भोर होइते प्राती सुनी, साँझ होइते साँझ गीत सुनी, एकरा बिना भइए नहि सकैत अछि कोनो मांगलिक काज। आब तऽ अवसर पर वला गीत गेनिहारि बड़ कम छथि, किनको सँ पूछब तऽ कहती जे हमरा गीत कहाँ अबैए। इएह स्थिति अखुनका बेरमे भऽ गेल अछि, तैँ अपन संस्कृति आ परम्परासँ जुड़ल रहनाइ बड़ आवश्यक अछि। भारतीय संस्कृतिमे संगीत मात्र कला नहि अपितु भक्ति ध्यान आ दैवीय ऊर्जाक माध्यम सेहो अछि। मिथिला क्षेत्र भारतीय संगीत परम्पराक बड्ड पुरान आ समृद्ध केन्द्र रहल अछि। एतबे नहि, साहित्य सेहो अपन योगदानसँ समाजके हित केलक, उन्नति आ समृद्धिक बाट देखौलक। काव्य रचना कला अछि, साधना अछि, तपस्या अछि। एकटा तपस्या जे छै से स्त्री लोकनि सेहो करैत छथि, बेटी सेहो करैत छथि। समाजमे स्त्री सब दिनसँ त्याग आ बलिदानक प्रतिमूर्ति बनल रहली, अपन शौख मनोरथके त्यागैत अपन कर्तव्यक निर्वाह करैत रहैत छथि, सदिखन बलिदान करैत रहैत छथि। एक परिवारसँ एक घरसँ दोसर घरमे जा कऽ खूब नीकसँ सामंजस्य बैसा कऽ चलैत रहैत छथि। ओहिसँ कि परिवारमे समृद्धि बनल रहय, सुख शांति बनल रहय। तऽ आब कार्यक्रममे अपनो सब सुनी ई काव्य पाठ, विषय अछि बेटी आ कवित्री छथि डॉक्टर रानी झा। तऽ सुनी अपना सब ई काव्य पाठ।
1: हमर पहिल कविताक शीर्षक अछि बेटी। एक घरसँ दोसर घर जाइत अछि बेटी, जेना हो कोनो छोट छीन तुलसीक पोछ। एकठामसँ उखाड़ल जाइत अछि, दोसर ठाम रोपल जाइत अछि। जड़िमे रहैत अछि ओकरा नहिरक माटिक अंश, जड़िमे रहैत अछि ओकरा नहिरक माटिक अंश। जे लऽ जाइत अछि ओ अपना संग, जँ जोरगर छै ओकर कपार, निश्चय भेटतै ओकरा विस्तार। दोसर स्वस्थ माटिक संग अपन माटिक अंश, दुनू मिल पबैत अछि आकार। दोसर स्वस्थ माटिक संग अपन माटिक अंश, दुनू मिल पबैत अछि आकार। होइ छै ओकर चारू भर पसार, स्वच्छ हवा आ भोरका रौदक संग, स्वच्छ हवा आ भोरका रौदक संग। एक लोटा अछिंजल आ साँझक दीप, सनेह ओ भऽ जाइत अछि झमटगर, हरियर गदरायल आ रमनगर। मुदा एहनो होइ छै कोनो कोनो तुलसी माने बेटी जाइत अछि उत्साहक संग, मुदा भेटैत अछि ओकरा मात्र एकटा कोन। अपन जड़िक माटिक अंशक संग ओ करै छै संघर्ष, तरसि जाइ छै एक चुरुक जल लेल अपना विस्तारक हेतुए, जगह लेल हवाक सिहकी आ रौदक कनियोटा टुकड़ी लेल। हवाक सिहकी आ रौदक कनियोटा टुकड़ी लेल संघर्ष करैत करैत तोड़ि दैत अछि अपन सांस, मौला जाइ छै तुलसी। संघर्ष करैत करैत तोड़ि दैत अछि अपन सांस, मौला जाइ छै तुलसी। तैँ तऽ तुलसी कतौ रहै छै झमटगर आ कतौ पिलपिलायल। हमर दोसर कविताक शीर्षक अछि सीख। सिखौने रहय माय बाउ छी भलू मानुषक बेटी, बाउ छी भलू मानुषक बेटी। सेरो भरी अरवा चाउर, पाओ भरी उलुआ राहरिक दालि, एको कनमा घी, पाओ भरी सरसोक तेल, राखब घरमे जोगा कऽ सदिखन।

0: पाहुन परक लेल सिखौने रहे माय। राखब घर में जोगा कर सदिखन पाहुन परक लेल सुघर घरे तीन जका। कहत हमर अजिया सास
1: बहुआसिन कुल आ वस्त्र
0: जतेक ओरिया का राखी ततेक नीक। कुल आ वस्त्र जतेक ओरिया का राखी ततेक नीक। बान्ह लेल एकरा गिरह जेका। बान्ह लेल एक

राखी ततेक नीक, कुल आ वस्त्र जतेक ओरिया कर राखी ततेक नीक, बान्हि लेल एकरा गिरह जकाँ, बान्हि लेल एकरा गिरह जकाँ। सिखबैत छियै एक बेटीके, सिखबैत छियै एक बेटीके, बौआ बौआ जमाना कतबो बदलि जाए लाज पर्दा उठि जाए, जमाना कतबो बदलि जाए लाज पर्दा उठि जाए, कपचि लेब बड़ू माथक घोघकेँ, कपचि लेब बड़ू माथक घोघकेँ, मुदा कपचब नहि आँखिक लाजकेँ, कपचब नहि आँखिक लाजकेँ। लाज थिक स्त्रीगणक गहना, लाज थिक स्त्रीगणक गहना, राखब सुरक्षित आँखिक लाजकेँ आँखिक पानीके, आँखिक लाजकेँ आँखिक पानीके। हमर तेसर एकटा गीत

0: समृद्धि हे बेटा करत। यह आस जे ए विश्वास जे ए से जीवन में सदखन आगू बढ़ित रहत। ता आब कार्यक्रम में छोट छीन विरामक बाद फिर उपस्थित हुई छी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: हाँ, तो आप फिर अपना सब अपन श्रोतागण सब जुड़ गए हैं, तो कविता के माध्यम से जखन जुड़े छी वा बुझै छी त कवि समाजक विविध रूपक वर्णन त करिते छथि, संगहि प्रकृति के चित्रण एहि प्रकारे करै छथि जे भावनात्मक रूप सँ प्रकृति सँ अथाह स्नेह अपना सब करऽ लगै छी। कोनो तरहक समस्याक निराकरण सेहो कविताक माध्यम सँ भऽ जाइत अछि। एकर महत्ता पर दृष्टि दैत छियै तऽ सबटा चीज अपना सबके सहज भाव सँ ओ एकदम स्पष्ट भऽ जाइत अछि। कवि अपन सहज भाषासँ अपन रचनासँ सबके मनोभावके पढ़ि लैत छथि, तखन अपन भाव व्यक्त करैत छथि। अहाँ सबसँ एक गोट आग्रह, जे कोनो प्रचलित शब्द बुझल हुए तऽ पत्रक वा ईमेल के माध्यमसँ अवश्य पठाबी। तऽ कार्यक्रमक जे पता अछि आ पहिनहो कहने छलहुँ जे सुझाव आ प्रतिक्रिया पठाबी, तऽ कार्यक्रमक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004 आ ईमेल के पता अछि akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ श्रोतागण, शब्द विमर्श करब मुदा ई गीत सुनलाके बाद।

हाँ तऽ अखन अपना सब ई काव्य पाठ सुनै छलहुँ। कवित्री छली डॉक्टर रानी झा। तऽ भोर हेबे करत यह आशा के दीप जरेने राखी आ अपन कर्म के पथ पर चलैत रही, जाहिसँ जीवन में उन्नति आ

0: हाँ तऽ श्रोतागण, एहि गीतक सङ्ग ई एखन स्वर छलनि सरिता पराशरके। तऽ एहि गीतक सङ्ग आप चलै छी शब्द विमर्श दिस। मुदा कार्यक्रममे जे समय लगचा गेल हँ तऽ समेटबाक आब हड़बड़ी भऽ गेल अछि। तऽ अगला भेंट धरिक लेल हमरा दिअ आज्ञा। नमस्कार।
1: अभी आप नमस्कार। अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंहहार सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के

0: सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4,000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Sai Ramujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stalks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said, now the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The High-Level Committee will

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर नस्ब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुलकाहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज़ कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फ़ी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमीका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्क की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मंसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने

0: प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फिन की उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फिन की फेडरेशन एनसीसीएफ के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिल शुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का अहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी हुक्काम जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और यह दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फ़रोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है।
1: 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का आयोजन भारत में अहमदाबाद में हो रहा है। 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदराज कराया है और दुनिया भर से 5,000 से ज्यादा शुरका किस हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमी ने हज अहम तरीन मनासिक हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमी ने हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतबे हज की समात की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज कराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रमी जमरात के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, जहां कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमी जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हुज्जाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन बेबुनियाद हवालों से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुतालिका फरीकैन के लिए भारत का मौकिफ कतई, वाजह और अच्छी तरह जाना पहचाना है। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल पर तबसरा करने का किसी भी दूसरे मुल्क को कोई हक नहीं है। आज वियतनाम के दनांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सुनिए वार्ता। वार्ता का विषय है ईद उल अजहा का पैगाम। वार्ताकार हैं मोहम्मद शकील।
1: कुर्बानी अबुल अंबिया सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है, जिसको हम हर साल ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। ईद उल अज़हा का दिन सिर्फ़ खुशियां मनाने, नए कपड़े पहनने और दावत खाने का नहीं, बल्कि ये दिन हमें एक अजीम पैगाम देता है। ये बंदगी, इताअत, ईसार और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी महबूब तरीन चीज़ को क़ुरबान कर देने का पैगाम देता है। क़ुरबानी अबुल अंबिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अज़ीम सुन्नत और यादगार है। वो अजीम हस्ती जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के सामने झुककर गुजारी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। कभी उन्हें आग में डाला गया, कभी वतन छोड़ने का हुक्म मिला, कभी अपने अहलोयाल को बेआबो गया मैदान में छोड़ने का इम्तिहान आया, और फिर वो मरहला भी आया जब अल्लाह ताला ने उनसे उनके बुढ़ापे का सहारा, उनके लख्तजिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तलब की। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश में सब्र, वफ़ादारी और इताअत का ऐसा नमूना पेश किया कि रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मिसाल बन गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जब इब्राहिम को उनके रब ने चंद बातों के ज़रिए आजमाया तो वो उन तमाम आजमाइशों में पूरे उतरे। तब अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। ये महज एक फ़र्द को दिया गया एजाज़ नहीं था, बल्कि ये ऐलान था कि जो अफराद और कौमें क़ुरबानी, ईसार, सब्र और वफ़ादारी के रास्ते पर चलती हैं, अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त, क़ियादत और दवाम अता फरमाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिशात, अपना आराम, अपना वतन, यहाँ तक कि अपने बेटे तक को अल्लाह के हुक्म पर क़ुरबान करने के लिए आमादगी ज़ाहिर की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें इमामुन्नास बनाया। इससे पता चलता है

करते हैं तथा उनके रूप जीवन और जीवन की संभावना निर्धारित करते हैं। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। पर्यावरण के अजैविक संघटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व आदि। मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जो कि पृथ्वी के तमाम संसाधनों का बेहतर तीव्र तरीके से दोहन करता है। एक वक्त ऐसा था जब इस पृथ्वी पर मानव तो थे, पर वे एकदम सीमित संख्या और स्थान पर निवास करते थे, जिसके कारण पृथ्वी का समन्वय बना हुआ था। परंतु समय के साथ खेती की खोज हुई और इंसानों ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया और उद्योगों आदि की स्थापना की। विभिन्न धातुओं के खोज के साथ ही मनुष्य की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और मनुष्यों ने पृथ्वी का दोहन शुरू किया। इसी दोहन के कारण मौसम के कई परिवर्तन आए, जिसने हजारों बीमारियों को जन्म दिया। इन्हीं बीमारियों ने महामारी का रूप ले लिया। उद्योगीकरण और वैश्वीकरण ने खाद से लेकर जल तक को अशुद्ध कर दिया, जिसने बीमारियों को निमंत्रण देने का काम किया। पिछले वर्ष से हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई है, लाखों लोग बीमार हुए। इन सब पर एक नए विषाणु कोरोना का कहर टूटा और जो लोग इस विषाणु से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी बदल गया है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार कोरोना वायरस सामने आया था। वर्तमान में कोरोना ने पूरे विश्व में एक घातक महामारी का रूप ले लिया। इसके चलते पूरी दुनिया में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। प्रकृति में मनुष्य का दखल बंद हो गया। नतीजा, प्रकृति खुलकर निखरकर अपने नैसर्गिक रूप में आ गई। कोरोना वायरस से मानवता को तात्कालिक नुकसान हुआ, लेकिन प्रकृति को दीर्घकालीन फायदा हुआ। लॉकडाउन की वजह से कारखाने और यातायात के साधन बंद हुए। अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा, मगर अच्छी बात यह हुई कि कार्बन उत्सर्जन कम हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 40-50% कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। यूरोप की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि उत्तरी इटली, ब्रिटेन और स्पेन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो रहा है। लॉकडाउन के कारण हवा और नदियां साफ हुई। धरती के सतह पर निरंतर बढ़ते ध्वनि तरंग और शोर में कमी आई। मानवीय गतिविधियों में कमी के साथ ही धरती पर शोर का स्तर कम हुआ। भारत में लॉकडाउन होने के कारण देश के कई हिस्सों में इंसानी गतिविधि की रफ्तार थमी है। भारत में कई राज्यों से नदियों के साफ होने की खबरें आई। प्रदूषण को दूर करने के प्रयास दशकों से चल रहे हैं। कई झीलों का पानी साफ और पारदर्शी दिखाई दे रहा है। मौसम साफ रहने से पहाड़ों की चोटियां स्पष्ट दिखने लगी। हवा में मौजूद एरोसोल नीचे आ गई। यह लिक्विड और सॉलिड से बने ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनके कारण फेफड़ों एवं हृदय को नुकसान होता है। एरोसोल से ही विजिबिलिटी घटती है। भारत में एरोसोल पिछले 20 वर्षों में निम्नतम स्तर पर है। भारत में

0: नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में भी कमी आई। यह दमा जैसी बीमारी का कारण बनती है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आदि महानगरों में भी प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, वर्षा समय पर हो रही है। संक्षेप में यदि कहें तो जंगलों, नदियों, पहाड़ों और जीव जंतुओं को बचाना है तो हमें प्रदूषण कम करना होगा, वरना कोरोना जैसी विनाशकारी महामारी पुनः आ सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति मनुष्य का पेट भरने में सक्षम है, लेकिन लालच की पेटी भरने में नहीं।
1: अभी आप हिंदी वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था पर्यावरण। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम आकाशवाणी के तिरंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है अंग्रेजी वार्ता, विषय है इंडियन इकोनॉमी।
2: नमस्ते इंडिया, दिस इज अभिनय खेरिया। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल इंडिया रेडियो फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ टू इन्वेस्ट अर्निंग्स एंड इंक्रीज द सेविंग्स। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाई नॉमिनल GDP एंड द थर्ड लार्जेस्ट बाई परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडियाज इकोनॉमी हैज बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। The agriculture sector is the largest employer in India economies and contributes high share of GDP. India ranks second worldwide in farm output. Whereas agriculture is an important part of India economy, in 2008, a New York Times article claimed that with the right technology and policies, India could contribute to feeding not just itself but the world. However, agriculture output of India lags for behind its potential. The low productivity in India is result of several factors. The average size of land holding is very small, with 70% of holdings being less than 1 hectare in size. Farmers' incomes are low also in part because of lack of food shortage and distribution infrastructure. Technology used by the farmer not adequate. Mobilization of capital is also one of the major problem, and etc. GDP is commonly used as an indicator of the economic health of a country, as well as to gauge a country's standard of living. For example, a firm buys chemical and add values to it by producing a cloth material. Double counting would occur if GDP added together

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म आदमी का यह गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत निर्देशन नौशाद का है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब सुनिए पालकी फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत निर्देशन नौशाद का है।

अब सुनिए धरती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म काला पानी का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल थे मजरूल सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन SD बर्मन का था। इसी गीत के साथ दोस्तों आज के एक फनकार कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं हमराज फिल्म का यह गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का यह गीत। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः हम आपको सुनवाएंगे कुछ और फिल्म संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: महेंद्र कपूर की आवाज में एक और गीत सुनिए, फिल्म का नाम है निकाह।
2: अभी अलविदा मत कहो।

अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल थे शकील बदायूनी के और संगीत निर्देशन नौशाद का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म जाल का यह गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल है राजा मेहदी अली खान के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल थे रविंद्र जैन के और संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का था।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। अभी
1: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं तीसरी फिल्म का यह गीत। गायक कलाकार हैं मुकेश और शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मुकेश के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

0: The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।